किया है। तुम अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पर हैरान हो और ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। समझाया जाता है तो समझ कर नहीं देते, कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो सरीह जादू है। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके हों और मट्टी बन जाएं और हड्डियों का पंजर रह जाएं, उस वक्त हम फिर जिंदा करके उठा खड़े किए जाएं? और क्या हमारे अगले वक्तों के आबाओ अजदाद भी उठाए जाएंगे? इनसे कहो हाँ, और तुम खुदा के मुकाबले में बेबस हो। बस एक झिड़की होगी और यकायक ये अपनी आंखों से वो सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे। उस वक्त ये कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये तो यौमुल जजा है। ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे।

हुक्म होगा, घेर लाओ सब जालिमों और उनके साथियों और उन माबूदों को जिनकी वो खुदा को छोड़कर बंदगी किया करते थे, फिर उन सबको जहन्नुम का रास्ता दिखाओ और जरा इन्हें ठहराओ, इनसे कुछ पूछना है, क्या हो गया तुम्हें, अब क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते? अरे आज तो ये अपने आप को और एक दूसरे को हवाले किए दे रहे हैं। उसके बाद ये एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम तकरार शुरू कर देंगे। पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे, तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। वो जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले न थे, हमारा तुम पर कोई जोर न था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। आखिरकार हम अपने रब के इस फरमान के मुस्तहक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं। सो हमने तुमको बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। इस तरह वो सब उस रोज अजाब में मुश्तरक होंगे। हम मुजरिमों के साथ यही कुछ किया करते हैं। ये वो लोग थे जब इनसे कहा जाता, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, तो ये घमंड में आ जाते थे और कहते थे, क्या हम एक शायर मजनून की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें? हालांकि वो हक लेकर आया था और उसने रसूलों की तस्दीक की थी। अब इनसे कहा जाएगा कि तुम लाजिमन दर्दनाक सजा का मजा चखने वाले हो और तुम्हें जो बदला भी दिया जा रहा है उन्हीं आमाल का दिया जा रहा है जो तुम करते रहे हो, मगर अल्लाह के चीदा बंदे इस अंजामे बद से महफूज होंगे। उनके लिए जाना बूझा रिस्क है, हर तरह की लजीज चीजें और नेमत भरी जन्नतें जिनमें वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे। तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, शराब के चश्मों से सागर भर भर कर उनके दरमियान फिराए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी, न उनके जिस्म को उससे कोई जरर होगा और न उनकी अक्ल उससे खराब होगी। और उनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली।

0: एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर हालात पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक हमनशीन था जो मुझसे कहा करता था, क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो? क्या वाकई जब हम मर चुके होंगे और मट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें जजा और सजा दी जाएगी? अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहब अब कहाँ हैं? ये कहकर जूं ही वो झुकेगा तो जहन्नुम की गहराई में उसको देख लेगा और उससे खिताब करके कहेगा, खुदा की कसम, तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला था। मेरे रब का फजल शामिल हाल न होता तो आज मैं भी उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा, तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई आजाब नहीं होना। यकीनन यही अजीम शान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। बोलो, ये ज़ियाफ़त अच्छी है या ज़क़ूम का दरख्त? हमने उस दरख्त को ज़ालिमों के लिए फितना बना दिया है। वो एक दरख्त है जो जहन्नम की तह से निकलता है। उसके शगूफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नम के लोग उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे, फिर उस पर पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा और उसके बाद उनकी वापसी उसी आतशे दोजख की तरफ होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चले, हालांकि उनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और उनमें हमने तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि उन तंबीह किए जाने वाले लोगों का क्या अंजाम हुआ। इस बद अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें उसने अपने लिए खालिस कर लिया है। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक

उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। अमीन कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाई, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो सामने किराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए हर वक्त हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत यही हो सकती है कि उनके लिए हम रहमत व मग़फ़रत की दुआ करते रहें, सेहत व आफ़ियत की दुआ करें, और मग़फ़रत के हवाले से वालिदैन के लिए काफ़ी सारे ऐसी दुआएं आई हैं क़ुरान में जहां मुख्तलिफ क़िस्सों में मुख्तलिफ तरीक़े से वालिदैन के लिए बिलख़ुसूस दुआ का ज़िक्र है। तो सामने किराम, इस दुआ का जो तरबियती पहलू है, इस पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कुरान ने इंसान को उसकी तफूलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था, वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, तो यहाँ हर एक के लिए बचपन की याद दहानी है ताकि हम अपने बड़ों के साथ सही मामला करें। जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए, उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए, तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है, ख़ुसूसन उनके बुढ़ापे के ज़माने में इसकी अहमियत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, हुस्न सलूक करना, तो ये दुआ हमें कई कीमती सबक देते हैं। इसमें वालिदैन की खिदमत की बात आई है, कुरान ने बराह रास्त दुआ के ज़रिए उनकी अजमत को उजागर किया। इसी तरह औलाद के फ़र्ज़ के हवाले से भी यहाँ बताया गया कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दी, ऐसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। इसी तरह रहमत की दुआ, ये सबसे बड़ी खिदमत है। वालिदैन के हुकूक़ सिर्फ दुनिया में नहीं, मरने के बाद भी उनके लिए दुआ करना और ये उनका हक है, लाजमी तौर पर हम उनके लिए दुआ करें, और रहमत की दुआ ये तो सबसे बड़ी खिदमत हम इसे कह सकते हैं। मज़ीद इस दुआ में आजिज़ी और शुक्रगुज़ारी का एक पैगाम है, चूँकि ये दुआ इंसान के दिल में वालिदैन की क़ुरबानियों को याद दिलाकर शुक्र और आजिज़ी का जो जज्बा इसे पैदा करती है। मज़ीद नस्लों की तरबियत के हवाले से भी इस दुआ की अपनी अहमियत है कि नेक औलाद वालिदैन के लिए दुनिया व आख़िरत में सबसे कीमती सरमाया है। नेक औलाद होगी तो यही औलाद जो है ना आगे

0: आप सुन सकते हैं, ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस, फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आपको लेके चल रही हूँ आज कतर ग्रीन बीट्स के एक नए नवेले एपिसोड में। तो जनाब, जब आज मैं स्टूडियो आ रही थी तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और सिर्फ एक मिनट के लिए बाहर खड़ी हुई। सूरज की वो पहली किरण जब चेहरे पर पड़ती है ना, तो उसमें एक अजीब सी ताकत, एक वो कहते ना शक्ति महसूस होती है। आज की रोशनी सिर्फ चमक ही नहीं रही है जनाब, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कह रही है, जैसे ये कतर की मिट्टी से कोई पुराना वादा निभा रही हो। यस, सदियों से इस मुकद्दस सरजमी के लोगों ने एक रिश्ता निभाया है इस आसमान के साथ। हमारे बुजुर्गों ने

0: उन दरिया दिलों ने सितारों और सूरज की मदद से रेगिस्तान के टीलों या यूं कहें ड्यून्स और समुंदर की लहरों में अपना रास्ता ढूंढा है. द सन वॉज देयर कंपस और उनका गाइड हुआ करता था. लेकिन आज वक्त बदल गया है. वही आसमान, वही पुराना सूरज आज हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहा, वो हमें एनर्जी दे रहा है, वो हमें ताकत दे रहा है हमारे घरों को रोशन करने की और हमारी गाड़ियों को चलाने की. हमारे पूर्वजों ने सूरज को देखकर रास्ता तय किया था और आज हम सूरज की बदौलत अपना फ्यूचर तय कर रहे हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल साइकिल, डोंट यू थिंक? ऐसे नेविगेशन से शुरू होकर जनरेशन तक का ये सफर वाकई में बेमिसाल है.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. हम एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहां सोलार इरेडियंस दुनिया में सबसे ज्यादा है. अगर मैं सच कहूं तो एक वक्त था जब हम गर्मी से बचते थे. समर मंथ्स मतलब ये हमें बस ऐसा एहसास कराते थे कि बस शेड ढूंढना है. सूरज को एक एडवर्सरी, एक दुश्मन की तरह हम देखने लगे थे कि अरे मतलब क्योंकि सूरज के आते ही हमें थकान हो जाती है, गर्मी बहुत लगती है, तपिश हो जाती है, मतलब अच्छा नहीं लगता. पर आज ट्रांजिशंस हो रहे हैं. अंडर द कतर नेशनल विजन 2030 हमने अपना नजरिया बदल दिया है. हम इस गर्मी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा साथी, अपना एलाय बना रहे हैं. आपने कभी सोचा था कि वो धूप जो हमें चुभनी चाहिए थी, वही धूप अब कतर के सस्टेनेबल फ्यूचर की बुनियाद बन रही है. वी आर गोइंग बियॉन्ड द ऑयल एंड गैस. हाँ जी, और ये बहुत जरूरी है समझना कि सिर्फ हमारा कतर एक मैग्निफिसेंट स्काई स्क्रेपर्स की जगह नहीं है. यहाँ हम अब उन छोटे छोटे फोटॉन्स की बात करेंगे, यूं कहे कर रहे हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ माइल्स ट्रैवल करके आते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को ग्रीन बना सके. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता, क्या कतर वाकई ग्लोबल सोलर लीडर बन सकता है? क्या एक ऐसी इकोनॉमी जो हाइड्रोकार्बन्स पर खड़ी है वो सूरज की रोशनी पर शिफ्ट हो पाएगी? बल मेरा जवाब हाँ नहीं है. मेरा जवाब है कि ये तो शुरू हो चुका है. यस, लुक अराउंड यू. अल खरसा से लेकर हमारी इलेक्ट्रिक बसेस तक, कतर इज नॉट जस्ट ड्रीमिंग, कतर इज डिलीवरिंग. हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं. ये जो रेडिएंट रेवोल्यूशन है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करती, ये हमारी लेगेसी की बात करती है. हम अपने आने वाली नस्लों या यूं कहें अपनी जनरेशंस को क्या देकर जाएंगे? एक ऐसा कतर जो कुदरत की दी हुई हर नेमत को शुक्रगुजार करता है और उसका सही इस्तेमाल करना जानता है, या फिर ऐसा कतर जो बस बढ़ना जानता है और जनरेशन का ख्याल नहीं रखता? भाई देखिए, मैं तो कहूंगी हमारा कतर ऐसा है जो हर एक छोटी चीज का ख्याल रखते जा रहा है. आज कतर ग्रीन बीट के इस एपिसोड में हम सूरज की इस अजीम शक्ति, इस अजीम पार को डीकोड करेंगे. हम बात करेंगे उस अल खरसा मावल की जो स्पेस से भी दिखाई देता है. हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर के बिल कम कर सकते हैं तशीद के टिप्स के साथ. और हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइलेंट और क्लीन हो रही है. तो कहीं नहीं जाना है, आपने बने रहना है हमारे साथ ऑन FM 107. दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. वेलकम बैक टू कतर ग्रीन बीट्स. मैं हूँ अमिता आपके साथ. टाइम हो चला है हमारे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट का, द ग्रीन वायर का. और आज का डेटा वाकई बहुत ब्राइट है. यस, कतर एनर्जी की जो अपडेटेड सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी है उसका मकसद पता है क्या है? 2035 तक 5 यानी कि 5 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी हासिल करना. ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ मैसिव लीप. अब सिर्फ एक छोटा प्लान नहीं बल्कि कतर एनर्जी रिन्यूएबल सॉल्यूशंस ने आईसी

सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। रास लफान और मेसईद इंडस्ट्रियल सिटीज में दो बड़े सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, यस, जो हमारे सोलर फुटप्रिंट को डबल कर देंगे। और सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं, अगर आप दोहा की सड़कों पर देखें तो आपने बदलाव देखा ही होगा। यस, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। 800 यानी 800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस, वर्ल्ड कप के दौरान तो ये था ही, पर आज भी ये बसेस साइलेंट और क्लीन एनर्जी के साथ हमारे शहर में चल रही हैं। इन्हें सपोर्ट करने के लिए कारामा और तर्शीद ने ग्लोबल ईवी चार्जिंग इनिशिएटिव के तहत 1000 यानी 1000 स्टेशन का टारगेट रखा है। हम एक नेशन को रियल टाइम में प्लग इन होते देख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, ये पूरा का पूरा एक्शन है। तो आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स और यहाँ हमारी बातें बड़ी कमाल की हो रही हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट की। यस, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहती हूँ जो दोहा की चहल पहल से थोड़ा दूर है पर हमारे फ्यूचर के लिए सबसे करीब है। तसव्वुर कीजिए कि आप दोहा से निकलते हैं और तकरीबन 80 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ड्राइव करते हैं। शहर पीछे छूट रहा है और चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत है। तभी अचानक होराइजन पर आपको कुछ चमकता हुआ दिखता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान के बीचों बीच एक नीला समुंदर लहरा रहा है, पर ये पानी नहीं है। ये है अल खरसा सोलर पीवी प्लांट, एक ऐसा अजीम लैंडमार्क जो इतना बड़ा है कि शायद आप इसे स्पेस से भी साफ देख सकते हैं। अल खरसा सिर्फ एक सोलर फार्म नहीं है, ये कतर का गर्व है या यूं कहे प्राइड है। 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये प्लांट 800 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। 800 मेगावाट, इसका मतलब समझते हैं आप? पीक टाइम पर ये कतर की टोटल पावर डिमांड का 10% तक पूरा कर सकता है। लेकिन जो चीज इसे वाकई मार्वलस बनाती है वो इसकी टेक्नोलॉजी है। वहाँ 2 मिलियन सोलर मॉड्यूल्स लगे हैं, जी हाँ, पूरे 20 लाख पैनल्स। जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ कांच और सिलिकॉन की चमक दिखती है। और ये कोई आम पैनल्स नहीं है, इन्हें कहते हैं बाइफेशियल सोलर मॉड्यूल्स। बाइफेशियल मतलब दो चेहरों वाला। इनका डिजाइन इतना स्मार्ट है कि ये सिर्फ ऊपर से आने वाली सीधी धूप को ही नहीं पकड़ते, बल्कि हमारे रेगिस्तानी मिट्टी जो धूप रिफ्लेक्ट करती है ना, उसे भी ये पैनल कैच कर लेता है, उस रोशनी को बिजली में बदल देता है। इट्स लाइक डबल द पावर फ्रॉम द सेम सन। हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसी जगह पर सोलर पैनल लगा है तो कतर में जब डस्ट स्टॉर्म वगैरह होते हैं तो धूल धक्कड़ बहुत हो जाती है, तो ये पैनल्स साफ कैसे रहते हैं? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर पैनल्स पर मिट्टी की एक बारीक परत भी जम जाए तो उनकी एफिशिएंसी गिर जाती है। और इतने बड़े एरिया में इंसानों का जाकर साफ सफाई करना, इट्स नॉट इजी। तो इसका सलूशन क्या निकाला गया? अल खरसा में रोबोटिक क्लीनिंग आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तसव्वुर कीजिए, रात के सन्नाटे में जब पूरा कतर सो रहा है, ये रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं। ये पैनल्स के ऊपर बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म की तरह ग्लाइड करते हैं। और सबसे कमाल की बात, ये वाटरलेस क्लीनिंग है। हमारे खुश्क या यूं कहें ड्राई इलाके में पानी की कीमत हम सबसे बेहतर जानते हैं। ये रोबोट्स बिना एक बूंद पानी खर्च किए सिर्फ अपनी रोबोटिक ब्रशेस से सारी धूल साफ कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल प्योर क्लीन एनर्जी, जहां हम एनर्जी बनाने के लिए भी कुदरत के रिसोर्सेस को बर्बाद नहीं करते। लेकिन जनाब, ये सब मेहनत क्यों? सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। अल खरसा प्रोजेक्ट अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 26 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को रोकेगा। 26 मिलियन टन्स, ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम इसे ट्रीज से कंपेयर करें तो हमें करोड़ों पेड़ लगाने पड़ेंगे इतना कार्बन ऑफसेट करने के लिए। ये है कतर की वो तरक्की जो हमारी आने वाली नस्लों को ध्यान में रखकर की जा रही है। इट्स अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी,

तो कतर ग्रीन बीट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह की बातों को आपके सामने लेकर आए। वैसे अभी तक हमने बात की अल खरसा के अजीम सोलर प्लांट की, अब ये काफी इंस्पायरिंग है, इजंट इट? लेकिन अभी एक तरफ वो लाखों सोलर पैनल्स हैं जो देश की तकदीर बदल रहे हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि ये तो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के काम हैं। मैं अपने छोटे से फ्लैट में या अगर मैं अपने विला की बात करूं तो वहां मैं ऐसा क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं जिससे हम हमारे कतर के एनवायरमेंट में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। याद रखिए, वो कहते हैं ना कि दरिया या रिवर हमेशा छोटी छोटी बूंदों से बनता है। सुकारमा और तशीद मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर के किचन और बेडरूम से इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कमांडर बन सकते हैं। मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ बड़े ही कमाल के गोल्डन रूल्स जो आपकी पॉकेट और हमारे प्लैनेट दोनों को खुश रखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले रूल नंबर वन, इसे मैं कहती हूँ द 24 डिग्री रूल। हाँ जी, तो कतर की गर्मी में एसी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और ये सब हम जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारे घरों में जो बिजली खर्च होती है उसका 60% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कूलिंग में चला जाता है। हम अक्सर घर आते हैं, गर्मी लगती है और सीधा एसी को 16 या 18 डिग्रीज पर सेट करके चला देते हैं, पर जनाब हम सोचते हैं कि इससे कमरा ठंडा हो जाएगा। नहीं, ये एक मिथ है। एसी का कंप्रेसर तब तक फुल स्पीड पर चलता है जब तक वो टारगेट टेम्परेचर अचीव ना कर ले। 18 डिग्रीज तक पहुंचने में कंप्रेसर पर जो बोझ या यूं कहें लोड पड़ता है वो ना सिर्फ बिजली खपाता है बल्कि मशीन की जिंदगी भी कम कर देता है। वेल, एक्सपर्ट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस ये स्मार्ट जोन है। इस टेम्परेचर पर आपको बेहतरीन ठंडक मिलेगी और आपका कंप्रेसर ओवरड्राइव में नहीं जाएगा। सोचिए, सिर्फ 2-3 डिग्रीज का फर्क आपकी मशीन के बिल में कितनी बचत कर सकता है। इट्स अबाउट बीइंग कूल और साथ में स्मार्ट भी। दूसरा रूल है द स्मार्ट मीटर रेवोल्यूशन। हाँ जी, क्या आपने अपने घर के बाहर वो नया डिजिटल मीटर देखा है? अगर कारमा ने आपके यहाँ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिया है तो समझिए आपके हाथ में एक एनर्जी फिटनेस ट्रैकर आ गया है। पहले क्या होता था, महीने के आखिर में बिल आता था और हम हैरान हो जाते थे कि इतना खर्चा कैसे हुआ, लेकिन अब इस कारमा ऐप के जरिए आप लाइव कंजम्पशन देख सकते हैं। मैं इसे फिटनेस ट्रैकर भी कहती हूँ। हाँ जी, क्योंकि जैसे आप अपने स्टेप्स काउंट करते हैं वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि किस वक्त आपका घर सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो फिर इसे आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। रूल नंबर 3 इज सोलर रेडी लिविंग। यस, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना घर बना रहे हैं एंड रेनोवेट करने जा रहे हैं। कतर की धूप मुफ्त है और ये हमेशा रहेगी, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठा लें? आपने सोलर वाटर हीटर्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो कतर में ये पूरी तरह ऑथराइज्ड और सपोर्टेड है। हम अक्सर सर्दियों में या किचन के काम के लिए बिजली से पानी गर्म करते हैं, लेकिन सोचिए जब बाहर सूरज इतनी गर्मी दे रहा है तो हम बिजली क्यों खर्च करें? सोलर वाटर हीटर्स लगाना एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो सालों तक आपको मुफ्त में गर्म पानी देगा। ये वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमारे फ्यूचर को महफूज बनाते हैं। तो भाई क्या करना है, 21st सेंचुरी है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। वैसे अब वक्त हो चला है कि मैं कहूँ कि भाई आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। और आज जब कतर सोलर इनोवेशन की बात हमने की तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे थे, हम ये इंश्योर कर रहे थे कि हमारी तरक्की हमेशा कायम रहे, बिल्कुल इस सूरज की तरह जो हर रोज बिना छुट्टी मारे निकलता है, है कि नहीं? तो जनाब, आज का कतर ग्रीन बीट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और छोटे छोटे कदमों को हमें लेकर एक बड़े गोल को अचीव करना है, तभी जाके हम अपने कतर को क्लीन, ग्रीन और हेल्दी बना पाएंगे। वेल, आज के एपिसोड में हमारे कतर ग्रीन बीट्स में इतना ही था, और अगले एपिसोड में कुछ खास होगा जिसके लिए मैं कहूंगी कि

0: ना भूलें। पर अभी के लिए आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर 6622107 पर। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर FM 107 के और अपनी अमिता को भी वहीं ढूंढ सकते हैं। तभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और इसी के साथ मैं अब लेती हूँ इजाजत। स्टे ब्राइट, स्टे ग्रीन एंड कीप द बीट। स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
5: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
4: गेम ऑन,
5: वॉल्यूम अप,
4: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
5: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
4: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। क्रिकेट हो,
6: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स 4 रन,
4: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
7: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
7: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

0: 여 여한이 생각
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, हमारे जॉइंट्स जो कि बहुत ही अहम हैं, और जॉइंट्स की सेहत और उन्हें मजबूत रखने के लिए बहुत ही आसान तरीकों से हम उन्हें अच्छा रख सकते हैं, यानी सही आदत और जो एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे जॉइंट्स को दर्द और बीमारी से बचाती हैं। जैसे कि स्ट्रेचिंग है और जो मोबिलिटी है, यानी डेली स्ट्रेचिंग, तो उससे हमारी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से हमारी नेक है, शोल्डर्स हैं, बैक है या नीज हैं, वहाँ की तमाम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो आप ज़रूर कीजिए। सिंपल स्ट्रेचेस मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में आप कीजिए। और इसी तरह से ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि वेट बेरिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी करनी बेहद ज़रूरी हैं अपनी जॉइंट्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। उसमें वॉकिंग है या बहुत ही लाइट जॉगिंग है वो आप कर सकते हैं। बॉडी वेट स्क्वाट्स हैं या फिर लेजेंजीज हैं। स्ट्रेंथन जो ट्रेनिंग है वो जॉइंट्स को सपोर्ट भी करती हैं। इस तरह जो हमें अपनी डाइट पर भी ख़ास तवज्जो देनी है, और जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, उसमें ओमेगा 3 है, उसमें फिश है, वॉलनट है, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो अपनी खुराक में शामिल कीजिए। टर्मरिक है यानी हल्दी है, तो वो जो स्वेलिंग हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में जो कि दर्द का बायस बनती है, तो वो कम करती है। और शुगर तो आपको कम करनी ही करनी है। और अपनी जो पोस्चर है, जैसे आप बैठते हैं, वो आपने बहुत ही सही रखना है, यानी करेक्ट पोस्चर जो है वो आप रखिए। उसमें ये कि जब आप बैठे हों या आप खड़े हों तो आप

वहीं बैठना वो सही नहीं है। आप कुछ कुछ देर के लिए आप उठ सकते हैं, हर घंटे के बाद अगर आप दो मिनट भी उठते हैं तो वो आप देखेंगे कि आपके हेल्थ के लिए, स्पेशली जो जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो आम जो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें नी पेन है और ये है कि आर्थराइटिस है।

0: सबसे अहम ये है कि डायग्नोस हो और ये है कि जो रेगुलर चेकअप्स हैं वो हों। इसी तरह मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी वो आप जरूर कीजिए। तो रोज़ाना छोटी छोटी बातें अपना कर यानी एक्सरसाइजेस करके और सही आदत जो है वो आप अपनाइए तो फिर उससे होगा हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत होंगे और आप और हम दर्द से महफूज रहेंगे। हेल्थ फॉर ऑल
1: Qatar National Health Strategy Health for All FM 107 Dil Se Desi
2: Number one hits music station
3: Anytime, anywhere
4: Yes, anytime, anywhere
3: Kabhi bhi aur kahin bhi Aap sun sakte hain FM 107
1: FM 107
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now

0: Welcome to the world of technology.
1: काश मैं ये आवाज ढंग की और निकालता, पर आप समझ गए ना टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. काफी सस्ता साउंड इफेक्ट मैंने आपको सुनाया है. और क्या करूं. अस्सलाम वालेकुम दुनिया, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड. और आज जो है हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में वापस चलते हैं, जहां पर हर वक्त हर सेकंड कुछ ना कुछ बदलता रहता है. एंड उनमें से मोती चुनकर मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं आज फिर से. तो आप जानते हैं फॉर्मेट बड़ा सिंपल है. सबसे पहले कुछ एप्स या फिर कुछ काम की चीजें इन एप्स दिस वीक, एंड देन गैजेट जो आपके काम आ सकते हैं, और फिर खबरें जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जलजला लाई हुई हैं. तो सबसे पहले शुरू करेंगे विद एप्स दिस वीक, क्योंकि बहुत कुछ है आपको बताने के लिए. इस हफ्ते मैंने सोचा कि आपको वो AI टूल्स बताए जाएं जो आपके लिए इमेज और वीडियो जनरेट कर सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल. मैं पहले बता दूं, दीज एप्स वर्क फ्री एज वेल, बट दे आर बेटर इन देयर पेड वर्जन्स. ओके, ज्यादा महंगे नहीं है. एक ऐप है थोड़ी सी, मगर आई विल एक्सप्लेन. लेट्स गो ऐप दिस वीक. ट्रेंडिंग ऐप्स. तो नंबर वन ऐप जो है ऑन द लिस्ट जो मैं बताना चाहूंगा, AI तो है ही एंड अपना काम करने में बहुत आगे भाई. इसके जरिए अगर आप वीडियोस बनाने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया जो काम कर रही है आपको हैरान कर रही है. आप कुछ वीडियोस देखते हैं AI की और सोचते हैं अरे बाबा इतना आगे निकल के AI. तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप अपने इमेजिनेशन को रन कीजिए इस AI पे एंड यू विल गेट द वीडियो. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको यूज करते करते यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसका नाम है C Dance 2.0 AI. इट लेट्स यू क्रिएट वीडियो एंड इमेज एज वेल. सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आपको कैमरा एंगल से खेलना आता है तो अब बहुत ही बढ़िया है. नहीं आता है तो आपकी कोई भी दिमाग में स्टोरी है, मान लीजिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए आपकी स्टोरी ऐसी है कि एक बंदा जो है वो अपने गांव गया है ट्रेन पकड़ के, या फिर वो यहां से एयरपोर्ट गया है, एयरपोर्ट से जहाज पकड़ के अपने होम टाउन गया है. तो इस पूरे सीन को आप किस तरीके से शूट करेंगे, अगर आप चाहते हैं इसका एक AI वर्जन बनाना, तो आप जो है ये सेम सीन ChatGPT को बताइए, वहां से प्रॉम्प्ट लीजिए, उसे प्रॉम्प्ट मांगिए, वो प्रॉम्प्ट C Dance

2.0 में डालिए, फिर आप देखिए कितना कमाल होता है. आपको क्योंकि एक्सप्लेन करने करना और सीखना है अगर एआई मूवीज कैसे बन सकती हैं, तो दिस कैन बी योर स्टार्टर पैक सी डांस 2.0. इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, पर पेड वर्जन में हाईली हाईली आपको रिकमेंड करूंगा इफ यू आर मेकिंग वीडियोस और मार्केटिंग वीडियोस ऑन डेली बेसिस एंड आपके काम आ सकता है. सो गो फॉर इट. गोइंग ऑन टू अनदर वन. अब अगला जो है ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्योंकि ये बहुत ही फ्लूइडली काम करता है, बहुत फ्लूइड ऐप है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. ये है क्लिंग, KLING, क्लिंग 3.0. इसके बारे में आपने बहुत सारे एड्स अपनी स्क्रीन्स पे देखे होंगे जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या आपने किसी सुना होगा, आई डोंट नो, मगर क्लिंग AI works amazingly well. ये वैसा काम करता है जैसे किसी जमाने में ग्रॉक किया करता था. मैं ग्रॉक पे भी आऊंगा, उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत सिंपलर वर्जन हुआ करता था ग्रॉक एक टाइम पे, और वैसा ही क्लिंग काम करता है. मगर इसकी वीडियो में जो वीडियोस में जो क्रिस्प है वो कमाल का यार. इट कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्टर वीडियोज. अगर आपको एक शॉर्ट किसी किस्म का एक मार्केटिंग आइडिया इसको देना है, मार्केटिंग वीडियोस बनाने हैं, तो इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता. आज के ज़माने में जहाँ पे हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आएंगे आपका सामान बेचने के लिए, उस जमाने में यू कैन यूज दिस AI टू मेक अ लॉट ऑफ स्टफ मच मच ईजियर एंड मोर क्रिएटिव. तो अगर आप चाहते हैं कि AI भी इस बहाने सीख लें एंड यू गेट टू जनरेट वीडियोज एज वेल, दिस कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड. सो क्लिंग 3.0 ये AI है, मैक्सिमम आउटपुट देता है. अगर आपको एक पेड ऐप से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, दिस कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एप्स दैट यू हैव यूज्ड. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. अगला, जैसे मैंने कहा मैं ग्रॉक की बात करूंगा, तो ग्रॉक की बात करी मैंने लास्ट में क्योंकि ग्रॉक बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया इमेजिनेटिव वीडियो बनाता है. ग्रॉक इमेजिन जो फीचर है बहुत कमाल का है. ग्रॉक का कैजुअल वे ऑफ रिप्लाइंग थिंग्स, ग्रॉक का इमेज जनरेशन, Everything is wonderful. एक शिकायत है मेरी, ग्रॉक सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल हाईली हाईली हाईली प्रोफेशनल बन के यूज करना चाहते हैं, बिकॉज ग्रॉक चार्जेस अ लॉट ऑफ मनी. ग्रॉक का एक महीने का सब्सक्रिप्शन इज 99 रियाल्स. अभी रिसेंटली उसका एक ऑफर आया था, बट आई थिंक दैट शुड बी लोअर डाउन क्योंकि ग्रॉक 99 रियाल के बाद भी काफी लिमिटेड चीजें देता है और कहता है कि अब और जनरेट नहीं हो पाएगा. सो इफ दैट इज फिक्स्ड, ग्रॉक बहुत कमाल का है. बट स्टिल आप इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं. अभी भी इसका जो चैट वर्जन है, जो चैट करता है, वो बहुत अच्छे रिप्लाईज देता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको बाकी जो फॉर्मल रिप्लाईज मिलते हैं थोड़ा कैजुअली रिप्लाई करता है. एंड ग्रॉक इज अमेजिंग विद वीडियो एडिटिंग एज वेल. हाँ, वो ऑफकोर्स लिमिटेड है, मगर आप एक दिन में कम से कम 3-4 फोटोज अपने एडिट कर ही पाएंगे. समटाइम्स इस पर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा आ जाता है, एटलीस्ट ये कहता है क्योंकि पेड वर्जन नहीं है, बट स्टिल काफी काफी काफी काफी अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ फोटो एडिटिंग एंड एवरीथिंग. अगर आप फ्री वर्जन देख रहे हैं, पेड वर्जन सिर्फ उनके लिए जो बिल्कुल डेली वीडियोज बनाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, दिस कैन बी रियली हेल्पफुल. तो ये थी एप्स दिस वीक. अब जरा आगे बढ़ेंगे towards the gadgets. Cool gadgets. By number one on gadget on the list, number one as in ranking नहीं, सबसे पहले बात करूंगा मैं almond oak backpack की. almond बादाम oak backpack. ये backpack ऐसा है कि आपने एक मर्तबा खरीद लिया, दुनिया भर की छुट्टी. आपको इसके बाद कोई बैग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इस पे पानी फेंकने दें, कोई दिक्कत नहीं है. पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर रुकेगा, एकदम सूख जाएगा. ये बैग इतना कमाल का है. मैं जानता हूं मैं गैजेट में बैग की बात कर रहा हूं, मगर मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस. ये बैग सच में बहुत बढ़िया है भाई, आमंड ओक बैकपैक. मैं अभी इंशाल्लाह जब छुट्टी पे जाऊंगा तो मैं यही कतर लेके आने वाला हूं. एंड आई सजेस्ट कि आप इस बैग पे नजर बनाए रखें. अगर आपके बैग में भरी रहती हैं चीजें और आपको लगता है कहां क्या रखा है और आप हाथ डाल डाल के टटोल रहे हैं, दिस कैन बी वन बैग सिंपल सॉल्यूशन. एवरीथिंग कैन बी कैप्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल. आई लव्ड इट. तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं. अगर आपको खुद एक बार देखना है, ऑफकोर्स आंखों देखी बात की बात ही कुछ और होती है. तो आमंड ओक बैकपैक एक बार ले लिया आपने, फ्यूचर में बैगों की जरूरत ही नहीं है भाई, देख लो आपने आप. एंड नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. और हाँ, सॉरी, ये बजट में भी है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगला जो है एक टैक बैग है. ये भी एक बैग है लेकिन एक छोटा वाला बैग है. आपके पास वायर्स हैं,
चार्जर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैग सेफ चार्जर होगा, या आपके पास पावर बैंक्स होंगे, यूएसबी होगी, ये सब जो है ना बैग में आप रख देते हैं, फिर आपको हाथ डर लगे टटोलना पड़ता है, अगेन वही चीज़, ये छोटे से बैग में एवरीथिंग कैन बी केप्ट नीटली। देखो क्या है कि वायरों में वायर जब उछल जाते हैं ना, उलझ जाते हैं, तो बहुत चिड़ छूटती है और सही करने का मन भी नहीं करता है। ये छोटा सा टैक बैग, इसके अंदर सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आप रख सकते हैं। वायर्स को रखने के लिए अलग से कंपार्टमेंट है जो बहुत बहुत अच्छे से इस छोटे से बैग में बनाया गया है, एंड इसी के साथ यूएसबी के लिए अलग से जगह है, आपका पावर बैंक, आपके चार्जर्स, इवन आपके ग्लासेस। ये बैग आपने ले लिया तो काम हो गया। ये मैं जो बैग्स आपको बताए मैंने दोनों, आमंड ओक बैकपैक और ये, तो ये दोनों के दोनों बहुत कम बजट में है। इस बैग का नाम, जो टैग बैग है, इसका नाम है यू ग्रीन। यू जो अल्फाबेट यू है, फिर ग्रीन जी आर डबल ई एन, यू ग्रीन टैग बैग। ये दोनों आप देखिएगा, आई एम प्रीटी श्योर आपको एक बजट में लगेंगे दोनों के दोनों, पहली बात, और दूसरी बात आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं। तो उन फैंसी बैग्स पर खर्च मत कीजिएगा जिनमें लगे होते हैं चार्जर, लगा दिए चार्ज कर लो, दे आर कॉस्टली एंड दे डोंट वर्क एज वेल दैट as well as compared to what you think ke wo aisa kaam kare waisa kaam karega, ye dono aap dekh sakte hain. Now moving on to another one. अगला जो गैजेट है उन लोगों के लिए जो स्मार्ट वॉचेस को लेके बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, क्या सिर्फ महंगी ही वॉचेस काम करती हैं? नो ब्रो, सिर्फ महंगी वॉचेस काम नहीं करती हैं, कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं जो बजट में होती हैं, स्मार्ट वॉच होती हैं, अच्छी काम कर अच्छा काम करती हैं, लैग्स भी नहीं होते। एक एग्जांपल है नथिंग का, नथिंग की जो स्मार्ट वॉच है, मैं उसके हक में हूँ, आई थिंक 250-300 रियाल की अभी भी आ जाती है। एंड एक और है जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ, वो है अमेज फिट स्मार्ट वॉच, AMAZ FIT स्मार्ट वॉच, अमेज फिट स्मार्ट वॉच, चीपेस्ट बेस्ट वॉच अपने ग्रुप में, सबसे स्ट्रॉन्ग वॉच, कोई लैग नहीं, बढ़िया टच स्क्रीन है, बढ़िया फंक्शन करती है, एंड वेरी वेरी एक्यूरेट, एंड दिखती भी अच्छी है भाई, सस्ती भी नहीं दिखती है। सो अगर आप एक बजट में एक स्मार्ट वॉच देख रहे हैं, दिस कैन बी अ वेरी गुड आइडिया, अमेज फिट स्मार्ट वॉच, AMAZ FIT, अमेज फिट स्मार्ट वॉच, गो फॉर इट। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बजट पे ये कोई स्मार्ट वॉच देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग, तो आप ये जरूर इस पे नजर बनाए रखें। एंड ये हर जगह मौजूद है वैसे तो, Amazon पे मैंने देखा था, Amazon इंडिया पे अवेलेबल है, Amazon UAE पर भी अवेलेबल होगा, और यहाँ भी लोकली आई एम नॉट श्योर, अगर किसी के पास है तो वो आप, वो आप पर है, आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द खबरें इन टेक न्यूज। तो सबसे पहले भाई साहब, ये जो स्टीम की मशीन आ रही थी, आपको पता ना PlayStation का कंपटीशन जो है वो बहुत हाई चल रहा है, Xbox कंसोल्स, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का Xbox, उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दिए, क्यों भाई, खैर वो एक कंपटीशन है, और स्टीम पे जो लोग गेम्स खेलते हैं पीसी वालों, अब इसका भी कंसोल आ रहा है, लेकिन स्टीम ने डिसाइड किया है, जो मेन पेरेंट कंपनी है Valve, उन्होंने कहा है कि इसका प्राइस टैग होगा $1,050। बाप रे, $1,050 का कंसोल लॉन्च करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आई एग्री कि एक पीसी है, एक मुकम्मल पीसी है, आप पीसी वाले गेम भी खेल सकते हैं, सारे गेम खेल सकते हैं विद अ कंट्रोलर, बट दैट कैन बी डन ऑन द पीसी इटसेल्फ, नो? $1,050 मुझे रेट थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, बट इफ दैट इज व्हाट दे वांट एक नीश ऑडियंस, तो ठीक है, इट्स अप टू देम। क्या ये कॉम्पिटिशन है PlayStation का या एक्सबॉक्स का? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज PlayStation और एक्सबॉक्स अभी भी बजट में आते हैं, वो अभी भी इतने महंगे नहीं है। तो $1,050 का प्राइस टैग इज काइंड ऑफ टू मच। एंड अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो चाइनीज टेलीकॉम और फाइबर ऑप्टिक्स कंपनीज ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाली है, एक माइलस्टोन नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन में। उन्होंने सक्सेसफुली अभी एक रिसेंट इवेंट में डिमॉन्स्ट्रेट किया, जिसको कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे पहला फील्ड ट्रायल ऑफ हॉलो कोर फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसकी कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि 1.2 टीबी पर सेकंड वेवलेंथ के इंटरनेट को वो डिलीवर कर सकता है आपको, 1.2 टीबी, समझ रहे हैं आप, पर सेकंड, विच इज इतना फास्ट कि आई डोंट थिंक कि आपको पता भी लगेगा आप इंटरनेट यूज करें, इट्स लाइक ओपनिंग फोल्डर्स। तो ये जो है बहुत बहुत बड़ी खबर है, विच इज कमिंग फ्रॉम चाइना। ऑफ कोर्स आई हैव नो डाउट कि उन्होंने कर लिया होगा, पर ये दुनिया
तक कब तक पहुंचेगा, कैसे होगा, आई डोंट नो. अभी हम इंटरनेट से खुश हैं क्या? बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये जब आ जाएगा मार्केट में तब देख

0: लेंगे। Now moving on to the gaming news.
1: Game and entertainment.
0: देखो गेम की दुनिया में हलचल एक गेम ने बना रखी है और बहुत ही ज्यादा हलचल बना रखी है। सो रिसेंटली GTA 6 का प्री ऑर्डर जो मैंने कर दिया है मजबूर, मेरे हाथ नहीं रुके, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हैं। $100 का इन लोगों ने गेम जो है अल्टीमेट एडिशन रखा है और एक स्टैंडर्ड वर्जन है जो कि $80 का है। प्री ऑर्डर्स आर ऑन, यू कैन बुक नाउ क्योंकि नवंबर की 19 तारीख को गेम रिलीज हो जाएगा। एक जो बड़ी खबर रही वो ये रही कि अल्टीमेट एडिशन के पीछे बहुत सारे फीचर्स छुपा दिए हैं, पता नहीं क्यों रॉकस्टार ने ऐसा किया। एंड दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रॉकस्टार ने कहा कि कोई भी फिजिकल कॉपी यानी डिस्क नहीं मिलेगी। अगर आप इसकी फिजिकल कॉपी खरीदेंगे तो एक बड़े से रॉकस्टार के डब्बे में आपको अंदर कोड मिलेगा। और इसका मजाक उड़ाते हुए इंसोमनियाक जो गेम्स हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाया है, जिन्होंने वुल्वरिन अभी उतारना है मार्केट में, उन्होंने मजाक बनाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमसे गेम खरीदिए, हमारे बड़े से बॉक्स में आपको फिजिकल कॉपी भी मिलेगी। तो आई डोंट नो इफ इट इज अ डायरेक्ट डिस एट रॉकस्टार गेम्स या फिर वो ऐसी फ्रेंडली बैंटर है, आई डोंट नो। मगर ये सीडी ना रखने की चॉइस रॉकस्टार की बहुत गलत है, बिकॉज उनकी वजह से अगर ये ट्रेंड सेट हो गया तो फिजिकल कॉपीज मिलना ही बंद हो जाएंगी। Myself as a gamer, I want a physical copy in my hand. And अगर वो नहीं होती है, it just kills the vibe, you know. We all want to collect things. We are still old school. हमें चाहिए भाई। पर ठीक है, Rockstar game खर्चा का तो करवाने ही वाला है इस साल, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी on that note, social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद हैं। And this is Doha वाला कभी signing off। आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं social media handles पे। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्सलाम।
2: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi. Aap sun rahe hain FM 107.
1: Dil se Desi.
2: Aap sun rahe hain Health Check.
3: Assalamu alaikum rahmatullah. Aaj hum वैक्सीन के बारे में बात करेंगे और वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के अफराद के लिए क्यों ज़रूरी है। अक्सर अफराद समझते हैं कि वैक्सीन सिर्फ बचपन में ही लगवानी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ वैक्सीन उम्र भर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, जबकि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं कि वक्तन फ़क्तन बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है। वैक्सीन ख़तरनाक बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद देती हैं। वैक्सीनेशन की बदौलत चेचक जैसी बीमारी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, जबकि पोलियो जैसे अमराज में नुमाया कमी आई है। जब लोग वैक्सीनेशन लगवाने में ताखीर करते हैं या उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो बीमारियों के फैलने के इम्कान ज़्यादा होते चले जाते हैं। इससे ख़ास तौर पर जो नौजायदा बच्चे हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं और ऐसे अफराद जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उनको ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता है। वैक्सीन सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि मईशत के लिए भी फायदेमंद है। बीमारियों की रोकथाम से हॉस्पिटल्स के अखराजात, इलाज मुआलजे की खर्च और काम या तालीम से गैर हाजिरी में कमी आती है। सफ़र करने वाले अफराद को भी चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क जाने से पहले ज़रूरी वैक्सीन के बारे में मालूमात हासिल करें, ताकि वहाँ मौजूद बीमारियों से खासतौर पर इन्फेक्शियस डिजीज़ से महफूज रह सकें। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को कौमी जो हिफाजती जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक बर वक्त वैक्सीनेशन लगवाएं और उनका वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो बिल्कुल महफूज रखें। चंद बहुत ही अहम बातें जो हमें अपने जहन में रखनी है कि वैक्सीन मुकर्रा वक्त पर लगवाइए, वैक्सीनेशन कार्ड महफूज रखिए, किसी भी सवाल की सूरत में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने ख़ानदान और दोस्तों को भी वैक्सीनेशन की अहमियत से आगाह कीजिए। वैक्सीन बीमारियों से बचाव का एक महफूज मौसर और आजमूदा जरिया है। ये न सिर्फ हमारी बीमारी बल्कि पूरी कम्युनिटी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। याद रखिए, हर वैक्सीन एक सेहतमंद और महफूज फ्यूचर की तरफ एक अहम कदम है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
1: दोस्तों, कल हमने बात की थी AI की और किस तरह से AI cities जो हैं वो हमारा फ्यूचर होने वाली हैं. फिर हमने AI की बात की थी ट्रैफिक के हवाले से, AI की बात की थी हॉस्पिटल्स के हवाले से. पर अब हम बात करेंगे कि AI सिर्फ हॉस्पिटल्स या फिर ट्रैफिक्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे शहर को मैनेज करेंगी. देखिए, ये अपने आप में सुन के थोड़ा सा भी शायद उस तरह से इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं. बट या फ्यूचर तो ये इन सारी चीजों का है ही. इन सब पे काम हो चुका है, तकरीबन ये अपनी फाइनलाइजिंग स्टेज पर है. और हो सकता है कुछ शहरों में तो सारी प्रोसेस जो है वो ट्रायल बेसिस पे कुछ कंट्रीज में तो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गए हैं. अब बारी है आपकी हमारी कंट्रीज की. देखिए, जब हम बात करते हैं अर्बन मैनेजमेंट और गवर्नेंस की, तो किस तरह से AI का रोल होगा ये समझना इम्पोर्टेंट है. AI इलेक्ट्रिसिटी यूज को कंट्रोल करेगा आने वाले वक्त. जब डिमांड ज्यादा हो तो सिस्टम एनर्जी को इफिशियंटली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑटोमेटिकली. वही वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो AI वाटर सप्लाई और गार्बेज सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज करेगा. वेस्ट को रिसाइकिल करना इजी हो जाएगा. वहीं AI पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करता रहेगा. अगर एयर क्वालिटी खराब हो जाए तो सिस्टम फौरन ऑटोमेटिकली एक्शन ले लेगा. अगर हम सिंपल जिंदगी मैनेज करेंगे AI गवर्न सिटीज में, अगर हम इसको समझना चाहेंगे सिंपल वर्ड्स में, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, दिलचस्प है हमारे और आपके लिए जानना कि सुबह अलार्म AI स्केड्यूल के हिसाब से बजेगा, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा होगा, ऑफिस का रूट AI सजेस्ट करेगा, खाना AI न्यूट्रिशन के मुताबिक रेकमेंड किया जाएगा, हेल्थ कंटिन्यूसली मॉनिटर होती रहेगी AI के थ्रू. यानी जिंदगी ज्यादा इजी और शायद ऑर्गेनाइज्ड हो जाए. यहाँ मैं शायद इसलिए भी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि इस तरह की जिंदगी क्या वाकई हमारी ऑर्गेनाइज्ड है या हम और बहुत सारी चीजों का शिकार हो जाएंगे. नोबडी नोज दिस. बट हाँ, कुछ ना कुछ तो ये तो कह ही सकते हैं कुछ हद तक कि हमारी लाइफ थोड़ा सा शायद कंपेरेटिवली आसान हो. और एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस जो हम यूजुअली कहते हैं कि सी वी ऑल आर सो बिजी वी डोंट हैव टाइम, ये शायद कहने के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त होगा. आई मीन टू से फिर हमारा टाइम बचेगा तो शायद हम खुद को बिजी कह नहीं पाएंगे, ये पता नहीं कुछ और चीजों में हम खुद को ऑक्यूपाइड कर लें. नोबडी नोज. वेल, AI गवर्न सिटीज के बेनिफिट्स भी हैं. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बल्कि समझा भी रही हूँ कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं. एक तो जैसे मैंने कहा, टाइम सेविंग, लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, ट्रैफिक कम होगा, सर्विसेज फास्ट आपको मिलेंगी, तो ज्यादा टाइम आपका बचेगा. वहीं पर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगी. हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, एनवायरमेंट है, सब इम्प्रूव होंगे जिससे लाइफ कंफर्टेबल होगी. वहीं अगर मैं इफिशेंसी की बात करूँ, ओहो, हर सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड होगा. एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट सब इफिशेंटली यूज्ड होंगे, मतलब यूज किए जाएंगे, तो ये भी अच्छा ही है. वहीं पर अगर सेफ्टी को लेकर बात की जाए तो यस ऑफकोर्स, क्राइम कम होगा और इमरजेंसी रिस्पॉन्स फास्ट होगा. भाई, ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ बेनिफिट्स ही होंगे, इसके जो है वो काफी चैलेंजेस भी हैं और रिस्क भी होंगे. देखिए, हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क होते हैं और जो सबसे बड़ा रिस्क जिसके चलते मैं इस टेक्नोलॉजी पे इतनी एक्साइटेड नहीं हो पा रही हूँ, वो है प्राइवेसी. AI सिस्टम लोगों का डेटा कलेक्ट करता है और इससे हमारी और आपकी प्राइवेसी का इशू हो सकता है. वहीं पर साइबर सिक्योरिटी, जी हाँ, अगर सिस्टम हैक हो जाए, फॉर एग्जांपल सोचिए, तो पूरा शहर उफ ठप पड़ जाएगा, पूरा शहर अफेक्ट हो सकता है. और जो बड़ा डर पता नहीं कहीं ना कहीं हमारे और आपके जहन में है, दिल में है, वो है जॉब लॉस को लेकर. ऑटोमेशन से कुछ लोगों की जॉब्स तो खत्म होंगी ही होंगी, जैसे ड्राइवर्स हैं या फिर मैनुअल वर्कर्स हैं. पर हाँ, कुछ नई तरह की जॉब्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी. वही हमें और आपको जो डर एक सता रहा है वो है ओवर डिपेंडेंसी का, ओवर डिपेंडेंसी ऑन AI. लोग AI पर ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे और अपनी उनकी खुद की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हैं वो तो एकदम खत्म ही सी हो जाएंगी ना. आई डोंट नो, बट हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ एथिकल इश्यूज भी लगते हैं, जैसे AI गवर्न सिटीज में एथिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं क्या एआई को इतना पावर देना ठीक है क्या एआई हर डिसीजंस जो भी लेगा वो फेयर होंगे अगर एआई गलती करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा उसका इसलिए रिस्पांसिबल एआई डेवलपमेंट बड़ा जरूरी हो जाता है वहीं पर फ्यूचर में एआई गवर्न सिटीज तो होंगी एडवांस्ड होंगी टैक्सी जो फ्लाइंग टैक्सीज का कांसेप्ट है ये आएगा ड्रोन डिलीवरी सिस्टम होगा फुली ऑटोमेटिक बिल्डिंग्स होंगी स्मार्ट होम्स जो खुद डिसीजंस ले रहे होंगे वहीं पर एआई सिटीज स्लोली इवॉल्व कर रही हैं ये कल्चर भी इवॉल्व कर रहा है पर आने वाले शायद 10 से 15 या चलो मैक्सिमम 20 से 25 सालों में ये पूरी तरह से रियलिटी बन जाए इसमें कोई डाउट ही नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि AI गवर्न सिटीज फ्यूचर का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जहां टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद के लिए काम करेगी ट्रांसपोर्ट हो हेल्थ केयर हो सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स हो इन सभी सेक्टर्स में AI ऑलरेडी चेंजेस ला रही है और फ्यूचर में ये और पावरफुल हो जाएगी लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं जैसे मैंने कहा प्राइवेसी का चैलेंज सिक्योरिटी इश्यूज होंगे जिन्हें सॉल्व करना भी बड़ा जरूरी होगा अगर AI को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया जाए तब तो अच्छा है फ्यूचर सिटीज ज्यादा सेफ होंगी एफिशिएंट होंगी कंफर्टेबल होंगी पर अगर इसे उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज नहीं किया गया और इसके हाथ में एक पावर चली गई क्या हमारी प्राइवेसी को बहुत बड़ा खतरा है क्या AI हर डिसीजन जो भी लेगा वो फेयर ही होगा और जो सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में आया जो मैंने कहा भी आपसे अगर कोई गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन पता नहीं चलिए फिलहाल के लिए तो मुझे आपको डराना नहीं है बस की बताना है तैयार करना है मेंटली अभी से कि आने वाला वक्त किस तरह का है वन स्टेप टू 2030 हमें और आपको जो है ना मेंटली फिजिकली स्ट्रैटेजिकली हर तरीके से प्रिपेयर कर रहा है जानने समझने के लिए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा और आज से किस तरह से हमें हमारी स्किल्स को लेकर खुद को लेकर किस तरह से काम करना है जो हम भी फ्यूचर में एफिशिएंट साबित हो सकें नॉट दैट कि वो पुरानी ऑर्थोडॉक्स स्किल्स पर ही काम करते चले आ रहे हैं ठीक है जो एथिकल वैल्यूज है लाइफ में ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ नई स्किल्स को एड ऑन करना ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों मुझे यहाँ पर ना एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है मेरी जो दादी है ना वो हमेशा एक बड़ी प्यारी सी बात कहती थी वो कहती थी कि बेटा हर 10 से 15 सालों में ना चीजें बदल जाती हैं नजरिया लोगों का बदल जाता है नई चीजें आ जाती हैं नई सोच आ जाती है नया स्टाइल आ जाता है काम करने का लेकिन दो चीजें जो जिंदगी में ना कभी बदली है और ना कभी बदलेंगी और वो है अच्छाई और सच्चाई और इन दोनों चीजों का ताल्लुक पता है किससे है इंसानों से मशीनों से नहीं बस कहीं ना कहीं ये लाइन ही मुझे थोड़ी सी तसल्ली देती है बाकी आपका और हमारा फ्यूचर कैसा होगा नोबडी नोज दिस वेल लेकिन हाँ खुद को अभी से तैयार करना दिस इज इन आवर हैंड अभी सच्चाई से और अच्छाई से फिलहाल मैं नाजिया और शकीब अहमद अब हम दोनों आपसे यहाँ इस टॉपिक पे इजाजत लेंगे ना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए देखते हो संतरे एफएम 107 दिल से देसी One step to 2030.
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी एक एहसास उनकी जबानी हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
0: आप सुन रहे हैं एफएम 107
4: दिल से देसी

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं छोटी छोटी आदतों की जो एनवायरनमेंट पर बड़ा असर डालती हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एयर ड्राई क्लोथ्स, यानी कपड़ों को ड्रायर मशीन के बजाय हवा और धूप में सुखाना। ये एक बहुत ही सिंपल सी हैबिट लगती है साथियों, लेकिन इसका इम्पैक्ट एनर्जी सेविंग और कार्बन रिडक्शन दोनों पर बहुत पावरफुल होता है। देखिए, अक्सर हम ये सोचते हैं कि ड्रायर यूज करना सिर्फ एक कन्वीनियंस है, लेकिन इको स्विच हमें बताता है कि कन्वीनियंस कभी कभी एनवायरमेंट के लिए हैवी कॉस्ट बन सकती है। जरा सोचिए ना, वीकेंड है और आप क्या करते हैं, आप लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकाल लेते हैं। आप कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल कर सीधा ड्रायर में डाल देते हैं, क्योंकि भाई जल्दी काम खत्म करना है ही है। कपड़े 40 मिनट में ड्रायर में रहते हैं, लेकिन उस एक साइकिल में लगभग अच्छी खासी आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाती है। अब अगर एक घर में एक हफ्ते में 3 से 4 दफा ड्रायर यूज हो रहा हो, तो सिर्फ कपड़ों को सुखाने के लिए ही आप कह लें कि सिग्निफिकेंटली आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। इको स्विच अप्रोच ये कहता है कि अगर वही कपड़े हवा में सुखाए जाए तो एक हाउस होल्ड अपनी एनर्जी आप कह लें कि 5 से 10% तक रिड्यूस कर सकता है एनर्जी यूजेज को। अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपको सरप्राइजिंग लगेंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक क्लोथ ड्रायर होते हैं, ये एक एवरेज साइकिल में इतनी एनर्जी यूज करते हैं जितनी कि एक एलईडी बल्ब 24 घंटे चलने से यूज करता है। एयर ड्रायर कपड़ों की लाइफ स्पैन को 20 से 30% तक कम कर देता है, क्योंकि हाई हीट फैब्रिक्स फाइबर को डैमेज करते हैं। ग्लोबली अगर सिर्फ 1 out of 3 हाउसहोल्ड ड्रायर यूज कम कर देना, तो एनुअली CO2 इमिशंस मिलियंस ऑफ टन्स रिड्यूस हो सकती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि धूप में कपड़े सुखाने से नेचुरल डिसइंफेक्शन होती है, क्योंकि यूवी रेज बैक्टीरिया को रिड्यूस करती हैं साथियों। अच्छा, अब आप कहेंगे हाउ इको स्विच हेल्प्स, तो भाई इसका जवाब सिंपल है, एनर्जी सेविंग मेड सिंपल। यानी कि साथियों, इको स्विच का यहाँ सिंपल सा आइडिया है, मशीन को कम और नेचर को ज्यादा इस्तेमाल करें। जब हम एयर ड्राइंग अडॉप्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर देते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक एवरेज फैमिली ड्रायर को हाफ यूज करे, मतलब उसका यूजेज हाफ कर दे, तो वो अपनी कार्बन फुटप्रिंट को 100 किलोग्राम तक रिड्यूस कर सकती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप हर वॉश साइकिल के साथ एनवायरमेंट को एक स्मॉल सा एनर्जी ब्रेक दे रहे हो। भाई सोचिए, कतर जैसी जगह पर जहाँ धूप और हीट ऑलमोस्ट आप कह लें कि ईयर अराउंड अवेलेबल होती है, आप कपड़े वॉशिंग के बाद बैल्कनी या ड्राइंग रैक पर रख देते हैं, सिर्फ 1 से 2 घंटे में कपड़े नेचुरली ड्राई हो जाते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। साथियों, इको स्विच के मुताबिक ये रीजन नेचुरल एडवांटेज यूज करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ नेचर ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी दे रही है, वहाँ मशीन यूज करके अननेसेसरी क्यों खर्चा लगाना भाई। चले अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स की जगह पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला इको स्विच टिप ये है कि कपड़ों को अच्छी तरह स्क्वीज करें, निचोड़ें और फिर उन्हें वॉश के बाद एक्स्ट्रा पानी निकाल कर, उन्हें अगर आपने जल्दी सुखाना है तो एक्स्ट्रा पानी निकाल कर फिर उन्हें ड्राइंग के लिए डालें, उन्हें जो है वो आप डालें सुखाने के लिए बाहर। दूसरा, कपड़े

0: प्रॉपरली हैंग करें ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छी हो और उनसे अच्छी चीज खुशबू भी आए। तीसरा, शेडेड आउटडोर स्पेसेस यूज करें भाई। अगर डायरेक्ट सनलाइट, आप कहते हैं ना कि कपड़ों को खराब कर देती है या कुछ होता है, तो शेडेड आउटडोर स्पेसेस यूज करें। जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, वहां पर हार्श सनलाइट आपके कपड़ों को खराब नहीं करेगी। चौथा, थिक फैब्रिक्स जैसे टॉवल्स को पहले वॉश करके एक्स्ट्रा स्पिन साइकिल दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रायर सिर्फ इमरजेंसी या रेनी कंडीशंस में ही यूज करें, रूटीन में नहीं। साथियों, इको स्विच का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम स्पीड को बैलेंस करें सस्टेनेबिलिटी के साथ। ड्रायर हमें 30 से 40 मिनट में सॉल्यूशन देता है, लेकिन एयर ड्रायर हमें फ्री एनर्जी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये कि जब लोग एयर ड्राइंग हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नोटिसेबली डिक्रीज हो जाता है। मतलब एनवायरमेंट और वॉलेट दोनों खुश। साथियों, आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर मशीन का अल्टरनेटिव नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। हवा, धूप, थोड़ा सा पेशेंस, ये तीन चीजें मिलकर कपड़ों को सुखा भी देती हैं और प्लैनेट को सेफ भी रखती हैं। तो भाई, अगली बार जब आप लॉन्ड्री करें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन करें। कैन आई ट्राई इट इन द एयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग माय मशीन ड्राइंग। इसी के साथ साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहां हर ब्रीज एक सेविंग बन सकती है और हर कपड़ा एक ग्रीन चॉइस। सुनते रहिए हमारे साथ FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती हैं कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: लिसनर्स, प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी का मौसम है और अपना ख्याल हमें रखना है, छोटे छोटे मैयस अपना कर हम सेहतमंद रह सकते हैं। जैसे कि पानी का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो हाइड्रेशन है वो पूरी हो, 8 से 10 ग्लास पानी कोशिश कीजिए। मगर इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि आपका जो लिविंग स्टाइल है वो क्या है। सब्जियाँ फल अपनी खुराक में ज़रूर शामिल कीजिए। आप अपने इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपने सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं 4434377 पर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं 6622107। और अगर आप ऐप QMC नाउ डाउनलोड करेंगे तो फिर हमारे साथ साथ होंगे। जलसेस, जिसके आपको मालूम है मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करते हैं, तो आज भी एक बहुत अहम मौजू अपनाने जा रहे हैं और वो ये है कि कभी जो कमर में दर्द है, कभी शोल्डर में दर्द है, कभी नेक में दर्द है, तो ये बहुत आम है। मगर ये कि इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं, और ये कि क्यों है और क्या क्या वजूहत हो सकती हैं उनकी, इन सब पर बात करेंगे। और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहिबान, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, जो कि आर्थोपेडिक कंसल्टेंट हैं वक्रा हॉस्पिटल में HMC में। तो मैं अपने तमाम लिसनर्स के साथ डॉक्टर को वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, और हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही अहम मौजू है और हमें उम्मीद है कि हमारी मालूमात में बहुत इजाफा होगा और बहुत सारे नए पॉइंट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। जी जी, और लिसनर्स आपको बताती चलूँगी कि शोल्डर पेन और इसके अलावा नेक पेन पर भी हम बात करेंगे। शोल्डर पेन की हम बात करें तो ये अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो 4th जो है मेजर जो कॉज है डिसेबिलिटी की, तो ये भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ऐसा क्यों है और इन सब पर बात होगी। जी डॉक्टर साहब।
1: जी, शोल्डर पेन तो बहुत कॉमन है
0: जी
1: कम्युनिटी में। अब एक उसमें हम कैटेगरी बनाएंगे कि एक तो ट्रामेटिक होगा, एक पोस्ट ट्रामेटिक होगा।
0: जी,
1: ट्रामेटिक ऐसे कि अगर कोई चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, या कोई बचपन में चोट लगी हो, फ्रैक्चर हो पुराना, तो उसको ट्रामा से रिलेटेड करेंगे। तो उसमें फ्रैक्चर्स भी होंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी होंगी, लिगामेंटल इंजरीज भी होंगी, डिसलोकेशन सब।

0: बड़ी हैरानगी होती है कि बच्चे खुद हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं
1: जनरलाइज जॉइंट उसकी वजह से।
0: अच्छा अच्छा, मगर ज्यादा शोल्डर का ही देखा।
1: शोल्डर का होगा, और भी जॉइंट्स होते हैं उसमें। अच्छा। सब जॉइंट होते हैं।
0: ठीक ठीक है, इसमें ये हो सकता है डिसलोकेशन जो है वो है, और आम भी है जैसे।
1: जी
0: जी ठीक है, इसके अलावा और क्या, जैसे
1: और जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का, क्लेविकल का, ठीक है, तो वो हम जो ट्रीट करते हैं कंजर्वेटिव या ऑपरेटिव।
0: जी जी ठीक।
1: उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि फिजिकल थेरेपी करनी है, तो कभी कभी वो मिस कर जाता है या हो भी जाती है, उसके बाद भी फिर स्टिफनेस आ जाती है।
0: अच्छा।
1: तो पेशेंट कहता है मेरा जो है शोल्डर हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर अगर इस कंडीशन में फिर हम उसको फिजिकल थेरेपी करते हैं या कभी कभी एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया।
0: अच्छा ठीक।
1: वहाँ करके कुछ मैन्यूवर्स होते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, वो करके फिर स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया इसको कहते हैं।
0: ठीक है।
1: ये फ्रोजन शोल्डर में कहते हैं या स्टिफ शोल्डर में, उसकी वजह से भी पेन होता है, तो लोग अभी हम काफ़ी कर रहे हैं तो बड़ा पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है।
0: जी जी, फ्रोजन शोल्डर की थोड़ी हम बात करें, तो इसमें किस किस जो है, जैसे डायबिटिक्स में हो जाता देखने में
1: मोस्ट कॉमन, तो डायबिटिक्स में,
0: तो इसमें क्या उसके ये लिगामेंट्स और क्यों उसकी क्या वजह होती है
1: उसमें, वही आपको बताया कि शोल्डर जॉइंट उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है।
0: जी,
1: कैप्सूल उसको जैसे चिपक जाता है।
0: जी ठीक है,
1: तो ये इसको कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस।
0: जी ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन होगी।
1: हाँ,
0: मतलब अगर
1: इन्फ्लेमेशन हो के और वो उसको टाइट कर लेगा उसको, तो वो हिल नहीं पाएगा, कुछ मूवमेंट्स वो कर पाएगा, कुछ नहीं कर
0: पाएगा,
1: पेनफुल होंगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएंगे।
0: और कुछ जैसे वो आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे रात में जो जॉइंट है वो बिल्कुल उनका स्टिफ हो जाता है, जैसे शोल्डर, तो बस वो ये भी फ्रोजन शोल्डर है या कोई और टाइप?
1: फ्रोजन शोल्डर।
0: अच्छा ठीक। और बाजू का ऐसे होता है कि वो अपनी टर्न नहीं कर पाते।
1: जी वही टर्न, इसी तरह के कुछ मूवमेंट्स उसमें जाना शुरू हो जाएंगे, तो आएगा पेशेंट तब जब पेन उसको ज़्यादा होगा, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होंगी, कहता है मैं हाथ उठा नहीं सकता हूँ या कोई चीज़ पकड़ता हूँ तो फौरन से गिर जाती है, ठीक है, तो ये उसकी अलामतें होंगी। उसको पहले हम उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि हम उसको पहले कहेंगे कि शुगर पे कंट्रोल करो।
0: अच्छा।
1: फिजिकल थेरेपी करो, उसमें इंट्राटिकुलर इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं लिडोकेन लोकल एनेस्थीसिया के साथ। अगर उसके साथ सही नहीं हुआ तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करा के या MRI करा के वही आपको बताया कि उसको कहते हैं कि एग्जामिनेशन एनेस्थीसिया, और उसमें फिर मैन्यूअल्स कुछ होते हैं उस वो आप जैसे ही वो करते हैं ना अंडर एनेस्थीसिया तो ओपन हो जाते हैं, ठीक, और फिर इनको इंट्राटिकुलर स्टीरॉयड लगाते हैं, पेन भी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके।
0: अच्छा अच्छा ठीक। और इंजेक्शंस जो हैं वो इसमें जो है वो जैसे फ्रोजन शोल्डर की हम बात करें तो ज़्यादातर आपने कहा कि डायबिटिक्स में ही होता है, और कोई वजूहत हो सकती हैं,
1: आर्थराइटिस, एज रिलेटेड, एक्रोमेक्युलर जॉइंट है वो कभी कभी डिसलोकेट होता है तो उसकी आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, या खुद अपना शोल्डर की जॉइंट की आर्थराइटिस होती है उसकी वजह से स्टिफनेस हो सकती है, जैसे कोई ओल्ड ट्रामा है उसकी वजह से हो सकता है।
0: अच्छा ठीक ठीक। बस उसका ये भी होता है कि जैसे मौसम चेंज हुआ है या सर्दी का मौसम आया है तो जो दर्द है वो शुरू हो गया, तो ये क्यों ऐसा है?
1: ये आर्थराइटिस में देखें हर चीज़ ने पुराना होना है।
0: जी
1: ठीक है ना, तो जो हमारे मसल्स हैं, जो टेंडन हैं, जो बोन हैं, तो वो एज के साथ उनमें भी वीकनेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ डीजनरेशन की तरफ जाती है बॉडी में, ठीक है, तो इसी तरह ये भी है, शोल्डर में भी जो अराउंड शोल्डर मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, जो बोन हैं, कैप्सूल है खुद, वो एज के साथ जो है उनमें भी कमी बेशी होती है, ठीक है, तो ये है जैसे उसको ट्रामा हो गया, वो डायबिटिक है या फैमिली हिस्ट्री है या उसमें ये रिकरेंट डिसलोकेशन शोल्डर है, ठीक है, तो ये चीज़ें आगे जाके फिर कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर में आके चेंज हो जाती हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे ये लिसनर हैं अहमद, उनका नाम है, पूछ रहे हैं कि उनके जो बेटा है और वो तकरीबन 16 ईयर्स का है, मगर वो अपने बाजू में मतलब बाजू में और शोल्डर भी है शायद तो मगर ऊपर मेरा ख्याल है अपर आर्मों का तो उसमें वो बहुत ज़्यादा दर्द की जो है वो कंप्लेन करता है मगर समझ में नहीं आती वो मुख्तलिफ जो मेडिसिन है वो भी हम देते हैं मगर थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा वो शिकायत शुरू कर देता है तो ये क्या है
1: उनको देखना होगा उनके लिए पहले कि उनसे हिस्ट्री लेनी होगी उनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होगा उनका उनके लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत है उसके बाद फिर हम कुछ एक्सरे कराएंगे इन्वेस्टिगेशंस फर्दर फिर कहीं उस पर पहुँचेंगे कि पेन कहाँ से आ रहा है कोई कि कभी कभी पेन नेक से आता है
0: अच्छा।
1: कभी कभी पेन हाथ से ऊपर जाता है ठीक कभी कभी एल्बो से जाता है तो पूरी अपर लिम सर्वाइकल स्पाइन का एग्जामिनेशन करना होगा ठीक है और उनकी हिस्ट्री लेनी होगी फिर हम कहीं रिजल्ट पे पहुँचेंगे डायग्नोस पे
0: ठीक मगर इस एज में जैसे बहुत यंग एज है तो क्या उसकी कॉजेज हो सकती हैं
1: उसमें कभी कभी अगर अब ये देखना होगा कि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है या सिर्फ एक आर्म में हो रहा है तो हमें कभी कभी जो है टेंडिनाइटिस भी हो सकती है कभी कभी विटामिन डी की कमी की वजह से कभी कोई चोट लगी है तो उसकी उसको भी देखना होगा ये सारी चीज़ें हमें एक्सक्लूड करनी होंगी
0: ठीक है या कभी इंजरी है जो
1: कोई इंजरी ओल्ड हुई
0: अच्छा ओल्ड इंजरी है
1: 16 साल का है तो हो सकता है 8 साल पहले हुई हो या वो भी देखना
0: अच्छा,
1: होगा
0: ठीक ठीक ठीक ठीक और इसमें डॉक्टर साहब ये भी होता है कि आपके साइड भी मैटर करती है कि शोल्डर है जैसे फ्रंट है या बैक है इसमें कुछ डिफरेंस होता है कि अगर पेन है अगर कुछ कंप्लेंट करते हैं कि बिल्कुल फ्रंट शोल्डर में पेन है कुछ बैक शोल्डर में पेन है तो इसमें क्या डिफरेंस
1: डिफ्यूज ये जो फ्रोजन शोल्डर में होगा तो डिफ्यूज होगा
0: अच्छा
1: ठीक है वो रेडिएट करेगा अपर आर्म तक या आर्म तक या फोर आर्म तक
0: जी
1: ठीक है
0: ठीक है
1: और कभी कभी वो सर्वाइकल स्पाइन की तरफ भी रेडिएट करेगा
0: ठीक तो इसकी कोई मतलब अलग अलग से ठीक
1: एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ रोटेटर कफ टीयर होता है रोटेटर कफ हमारे शोल्डर के चार मजबूत पट्टे हैं
0: जी
1: मसल्स हैं ठीक है तो कभी कभी हम जैसे गाड़ी में बैठे हुए या ऑफिस में बैठे हुए पीछे से कोई चीज़ उठाई सडनली तो रोटेटर कफ के चंद फाइबर्स टीयर हो जाते हैं मसल्स के
0: अच्छा।
1: तो वो भी पेनफुल होता है बहुत तो उसमें हमें रेस कराते हैं देखते हैं अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि कितने ग्रेड का है ठीक है तो वो अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है ग्रेड वन है ग्रेड टू है ग्रेड थ्री है ग्रेड फोर है अगर ग्रेड फोर है और फिजिकल थेरापी से सही नहीं हो रहा है मेडिसिन से सही नहीं हो रहा है तो फिर आर्थरोस्कोपिक उसकी करके देखते हैं आर्थरोस्कोपिक शोल्डर की कि कितना टीयर है फिर उसको बनाना पड़ता है उसको रिपेयर करना पड़ता है
0: ठीक
1: या डिब्राइडमेंट करके रिपेयर करते हैं उसको
0: ठीक इस तरह से जी डॉक्टर साहब इसमें जैसे कि जैसे आपने कहा कि कुछ ये कर सकते हैं लेवल्स हैं मतलब कि कितनी इंस्टेंट इंटेंसिटी कितनी है ठीक है उस पर डिपेंड
1: अगर ग्रेड वन है तो उसमें तो फिजिकल थेरापी पेन मेडिसिन रीएश्योरेंस कराएंगे पेशेंट फिर फॉलो अप में आएगा आपके पास तो तकरीबन ज्यादातर सही हो जाते हैं 99% ग्रेड टू ग्रेड थ्री भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा ग्रेड फोर में तो वो फिर आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा यंग बंदा है एथलीट है स्पोर्ट्समैन है तो फिर आपने एमआरआई करा के और शोल्डर सर्जन को रेफर करना है या उसको आर्थरोस्कोपी करके देखना है शोल्डर की कितना टीयर है क्या कर सकते हैं उसके लिए
0: ठीक अब सब थोड़ी सी मैं पेन पर बात करना चाहूँगी कि डिफरेंट टाइप्स की पेन्स होते हैं कभी शूटिंग है कभी आपको ऐसे में पिंचिंग या मतलब किस तरह की जो पेन है वो ज़्यादा है या पूरी टाइप्स की होती है
1: शोल्डर की पूछ रही है
0: शोल्डर की
1: शोल्डर में थ्रोबिंग पेन होगा रात में फील होगा पेन और वो माइल्ड मॉडरेट होगा लेकिन उसको वो कहेगा कि जी मुझे नींद नहीं करने दे रहा इतना पेन है ग्रेडिंग अगर देखेंगे तो 5, 6, 8 तक भी जा सकते
0: अच्छा है, अच्छा ठीक इसमें डॉक्टर ग्रेडिंग का थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ग्रेड है अगर ग्रेड वन है तो
1: देखें अगर देखें कम्युनिटी को बताना है
0: जी
1: तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर
0: ठीक है
1: अगर डॉक्टर्स होंगे या नर्सेज होंगी तो उनके लिए ग्रेडिंग होती है 1 स्केल होता है 1 to 10
0: जी जी
1: 10 सीवियर होता है 1
0: अच्छा अच्छा ठीक
1: होता है इस तरह ग्रेडिंग होती है
0: ठीक
1: तो आजकल
0: जैसे आम हम जैसे माइल्ड वो पेन पे डिपेंड करता है या उसके साथ साथ और भी कुछ अलामत
1: हाँ उससे ये पूछते हैं कि भाई बर्दाश्त कर सकते हैं या मेडिसिन खाने की ज़रूरत है या आप कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है कितना पेन है तो वो पेशेंट आपको बताएगा नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो ये माइल्ड हो गया अगर वो कहेंगे कि सीवियर तो फिर वो कहेगा कि हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लेनी है। मॉडरेट वो कहता है मेडिसिन खाऊंगा, उसे देखो।

0: करूँगा उसके बाद फिर डॉक्टर के पास, तो
1: ठीक है ये जो है ये लेवल्स हैं,
0: ये लेवल्स
1: हैं इस तरह से। और फिर बिल्कुल इस तरह
0: ये फ्रोजन शोल्डर है उसमें डिफ्यूज पेन होगा, रेडिएट करेगा, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, सीवियर नहीं होगा।
1: ठीक है, सीवियर नहीं होगा मगर कांस्टेंट
0: होगा, वो इरिटेट करेगा।
1: ठीक
0: और असल में पेशेंट पेन की वजह से भी आएगा, लेकिन उसको जो मूवमेंट कम हो जाएगी शोल्डर में, रिस्ट्रिक्शन होगी, वो मूव नहीं कर सकेगा, तो उसकी वजह से आएगा आपके।
1: उसमें ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो आपने बताई तो है, मगर फिर पूछना चाहूँगी कि क्या कौन कौन सी मूवमेंट है
0: वो जो एबडक्शन, अगर देखें शोल्डर को हम ऐसे ऊपर उठा रहे हैं,
1: ठीक है,
0: एबडक्शन बोलते हैं, वो नहीं कर सकेगा। एक्सटर्नल रोटेशन इसको अगर हम बाहर
1: की तरफ करें वो भी नहीं कर सकेगा,
0: वो नहीं कर सकेगा। जैसे कुछ ऐसे पत्थर ये बॉलिंग करते हैं जिस तरह,
1: अच्छा, वो भी नहीं कर
0: ऊपर से इस तरह नहीं कर सकेंगे, ये मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। या उसको पूरा घुमाएंगे हम, इसको सर्कमडक्शन कहते हैं,
1: अच्छा,
0: वो नहीं कर सकेगा।
1: अच्छा ठीक, मगर ज़्यादातर पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि वो कॉम मतलब कंघी नहीं कर सकते,
0: exactly,
1: अपने कपड़े जो है वो मतलब इस तरह से, तो वो
0: हाँ जो कंघी नहीं कर सकते,
1: जी क्योंकि अक्सर जो है
0: फीमेल्स
1: में तो इस तरह से ही है, और इसी तरह अपने ड्रेस
0: और ये हाथ पीछे नहीं जाएगा इस तरह, ये देखिए एबडक्शन और ये पीछे अगर करेंगी कमर में लगाएंगी तो वो नहीं आएगा इस तरह।
1: अच्छा ठीक, ये सारी अलामतें हैं, तो इसमें जो फ्रोजन शोल्डर है वो हम क्योंकि बहुत आम है और एज के साथ कुछ हिस्से में जो है वो होता है, फिर ये कि ठीक
0: ये बच्चों में नहीं होगा, वो
1: बच्चों में नहीं होता। अच्छा।
0: बच्चों में नहीं होगा, बच्चों में फिर वो बताएंगे,
1: बच्चों में ये ट्रॉमेटिक
0: उसमें डिसलोकेशंस हो गई, फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके मसल्स अभी ऐसे नहीं होते हैं कि जल्दी हो जाए,
1: ठीक है।
0: अगर कोई पुराना फ्रैक्चर है और उस ट्रीट सही नहीं हुआ, डिफॉर्मिटी है, तो फिर हो सकता है, लेकिन अगर एक दो केस देखेंगे वैसे नहीं होगा।
1: अच्छा ठीक है, मगर ये कि दर्द जो है उनका भी पेन जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
0: कोई सर्जरी हो गई, उसका फ्रैक्चर हो गया प्रोक्सिमल ह्यूमरस का अराउंड द शोल्डर, कोई सर्जरी है और फिजिकल थेरेपी नहीं हुई है उसकी, या निगलेक्ट हो गया है या खुद निगलेक्ट किया है, तो उसमें हो सकता है फ्रोजन शोल्डर,
1: ठीक,
0: रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होंगी।
1: ठीक,
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: जनसंस आज हम बात कर रहे हैं कि शोल्डर पेन की, ये कंधे में जो दर्द होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें जो आम तो अगर कोई चोट लगे वो तो है ही, मगर फ्रोजन शोल्डर जो है बहुत ही आम है और बहुत उसकी प्रॉब्लम भी है। अब हम डॉक्टर साहब ने वैसे तो हमें बताया है कि उसके साथ साथ जो है कि डायग्नोसिस जो है वो कैसे किया जाता है, मगर डॉक्टर साहब पहले ये पूछना चाहूँगी कि जो पेशेंट हैं उन्हें किस वक्त ये सब अलामतें आपने बता दी हैं, किस वक्त डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो है वो थोड़ी कोई मेडिसिन ली, कुछ एनाल्जेसिक लिए, आराम आ गया और फिर हम छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं अपने आप को, तो किस वक्त
0: वो आएगा? वो पेन की वजह से नहीं आएगा, पेशेंट आता है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से, वो हाथ उठा नहीं सकेगा, अपने कंधे से ऊपर उसका हाथ नहीं जाएगा, ठीक है, या पीछे अगर वो लेके जाएगा तो उसकी कमर में टच नहीं कर सकेगा बैक पे,
1: ठीक है,
0: तो वो फिर इस वजह से आएगा, तो हम उसको ट्रीट करते हैं, वही के रीअश्योरेंस, फिजिकल थेरापी, मेडिसिन, और वो इंट्राटिकुलर इंजेक्शन है इसमें, ठीक है, और ज़्यादातर अगर आप पेशेंट को बताएं कि वो कुछ फिजिकल थेरापिस्ट के पास भेजते हैं, कुछ खुद ही उनको बता दें कि किस तरह करनी है, ठीक है, मूवमेंट्स, तो वो मूवमेंट ज़्यादातर रिस्टोर करनी है हमें मूवमेंट शोल्डर की,
1: जी
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ फिर इंट्राटिकुलर इंजेक्शन विद लोकल एनेस्थीसिया उसका बहुत बड़ा अच्छा रोल है, ठीक है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया करें, तो उसका रिजल्ट अच्छा है और पेशेंट 100% सही हो जाते हैं।
1: अच्छा ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात
0: है, और शुगर कंट्रोल में करें,
1: जी क्योंकि डायबिटिक हैं तो फिर शुगर जो है वो कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो टेस्ट करा जाता है उसमें MRI कोई
0: अल्ट्रासाउंड अच्छा। पहले एक्सरे कराएंगे
1: जी,
0: उसमें देखें कोई पुराना फ्रैक्चर है या आपको आर्थराइटिस नजर आएगा इस तरह का, या कैप्सुलाइटिस होता है कभी कभी मसल से, एक और कंडीशन में आपको बताऊँ, कभी कभी मसल इंजरी हो गई या कोई इंजरी नहीं हुई तो उससे जो है कैल्सिफिकेशन आपको नजर आएगी एक्सरे में,
1: अच्छा,
0: तो वो भी बड़ा पेनफुल होता है,
1: ठीक
0: है, उसको भी हम करके अंडर इमेज फ्लोरोस्कोपी उसको भी निकाल लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

0: आने की वजह से भी ये बच्चों में लड़कियों में ज्यादा होता है 13 साल तक जब तक मीनार की होन की स्टार्ट तो ये फिर स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है सर्वाइकल स्पाइन का। तो ये भी एक मैसेज देना होगा हमें कम्युनिटी को कि बहुत ज्यादा जो भरे हुए बैग जो है बच्चों को ना दें।
1: बिल्कुल, बहुत सारी रिसर्चेस भी इस पर हुई हैं और उसमें ये भी के जो बैग पैक हैं या ट्रॉली बैग्स हैं दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं मगर हैं दोनों है की
0: है। लेकिन ट्रॉली वाली सही है, बुक्स स्कूल में रखें या थोड़े रखें थोड़े ले जाएं। और इतना जो मेरे बच्चों का बैग देखा है तो हैरानगी होती है कि भाई इतने क्यों वेट देते हैं।
1: बिल्कुल, और इसमें बहुत सारे जो हैं वो सर्वे
0: को भी अवेयरनेस देनी होगी बच्चों को पेरेंट्स को कि भाई ये इस तरह हो इसका काज है स्कोलियोसिस का तो हमें इसको अवेयरनेस देनी होगी।
1: ठीक ठीक, और इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी ग्रोथ हो रही होती है
0: एग्जैक्टली तो ग्रोथ जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है तो इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस की भी टाइप है फिर काइफोसिस है बहुत ये बड़े टॉपिक हैं इंशाल्लाह उस पर लेटर ऑन बात करेंगे।
1: जी ठीक, मगर अभी जैसे फिर उन्हें दर्द महसूस होता है बहुत।
0: हाँ दर्द होगा और वही जिस तरह बता रहे हैं कि हम्प होगा ठीक है और वो थोड़ी सी बैक की पोजिशन चेंज हो जाएगी।
1: अच्छा
0: ठीक है, और शोल्डर एक नीचे हो जाएगा एक ऊपर हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: पेरेंट्स आपको हम का बताएंगे या वो बताएंगे एक इसका शोल्डर ऊपर नीचे है ठीक है या फिर लिम्फ लेंथनिंग हो जाती है आप एक लिम्फ बड़ी हो जाती है एक छोटी हो जाती है तो ये पेरेंट्स
1: तो ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती है ना फिर ये तो उनकी पूरी ग्रोथ पे पूरी पूरी होल लाइफ
0: फिर उसका भी ट्रीटमेंट है उसको देखते हैं उसके एंगल्स होते हैं एक्सरे कराते हैं उसका एमआरआई कराते हैं किस तरह कौन सा कर्व है ट्रीटमेंट है उसका ब्रेसेस देते हैं काउंसलिंग करते हैं इस तरह जैसे उनको रोकते हैं कि भाई बैग नहीं उठाएं।
1: अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक, और बिल्कुल अब तो ई लर्निंग भी स्कूलों में बहुत
0: एग्जैक्टली बच्चों को बहुत पता है उसका।
1: जी बहुत क्विक है
0: जी बहुत क्विक है
1: बिल्कुल, और हर चीज़ के अपने अपने उनके भी कुछ हैं हैज़र्ड्स वो अलग हैं मगर ये कि जब आज हम बात कर रहे हैं शोल्डर और नेक पेन की तो इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है बच्चों की अगर बच्चों पर बात करें।
2: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकेंड या एक मिनट लेती हैं लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ

0: स्टाइल हमारा है, मेरा ख्याल है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब ने जैसे जो जो वजूहत बताई हैं तो उसमें कुछ कसूर हमारा ही सामने आ रहा है कि किस तरह से हम अपने आप को हैंडल करते हैं, कोई टेलीफोन करते हुए, बाकी और डिवाइसेस यूज़ करते हुए, ये बहुत अहम है। और इसके अलावा ये कि आप कोई गेम्स खेलते हैं या अगर कोई चोट लग जाती है तो उसमें भी बहुत अहम है कि आपने उसे इग्नोर नहीं करना है। दर्द तो है ही, मगर दर्द को किस तरह से और कब डॉक्टर के पास जाना है वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। और ख़ासतौर पर जब फ्रोज़न शोल्डर की बात करते हैं तो बहुत आम ये प्रॉब्लम है और बहुत बहुत मुश्किल में होते हैं पेशेंट्स जो हैं जी।
1: फ्रोजन शोल्डर अबव 40 उसको ट्रीट टाइम के साथ करना चाहिए।
0: ठीक है ठीक है। इसमें जो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी, आपने बताया है कि उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं, जो इंजेक्शन हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं या कोई
1: इंजेक्शन से पहले देखिए, पहले तो काउंसलिंग है उसकी।
0: जी जी
1: ठीक है, क्या करना
0: मतलब है, स्टेप वाइज पूछें।
1: अगर पेशेंट उस तरह सोता है तो उसको पेन होता है तो उसको बताना पड़ेगा कि इस तरह नहीं सोना है। ठीक है, उसमें हीट का बड़ा रोल है।
0: अच्छा।
1: रात को उसको बोलेंगे कि हीट को, जैसे जब पानी का बेग होता है पुराने जमाने में इस तरह, वो अपने पास रखे या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखे जिसको हीट हो वो लगाए शोल्डर के अराउंड, उसका बड़ा रिलीव है। मसल लेक्सेंट टेबलेट जैसे मस्कोडॉल है या दूसरी भी काफ़ी हैं। अगर पेन उसको शदीद है तो पेन मेडिसिन भी ले, फिजिकल थेरेपी की तरफ जाए ज़रूर। ठीक, और उसके बाद जो है उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो मैनिपुलेट करेंगे। फिर मैनिपुलेट वो है कि उसको एनेस्थीसिया देते हैं, अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, उसको फिर मैनिपुलेट करके खोलते हैं, उसको कहते हैं हम एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया। और इंट्राटिकुलर इंजेक्शन का भी बड़ा अच्छा रोल है मैंने जैसे बताया। फिर उसको फिजिकल थेरेपी की तरफ भेजे, बड़ा उसका फायदा है
0: जी। डॉक्टर साहब इसमें जो मसाज भी वो क्या है, किस तरह से
1: मसाज? ये एक तो फिजिकल थेरेपी वाली करते हैं, ठीक है, और बाकी जो जिस तरह फिजिकल थेरेपी के बाद जो फिजिकल थेरापिस्ट होते हैं तो उनके कुछ मैन्यूवर्स होते हैं
0: जी,
1: वो उन पेशेंट को बताते हैं कि किस तरह करने।
0: ठीक है जी। डॉक्टर साहब इसमें जो अगर खुदा नखास्ता ना मतलब हों तो फिर क्या आप जो है वो पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती है?
1: कभी कभी मैनिपुलेशन के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन होती है।
0: डॉक्टर साहब अभी हम चलेंगे अपने लिसनर्स की तरफ और सुनते हैं कि कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। प्रोग्राम हेल्थ गाइड जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछा जाए जी? जी
2: आप लोग जो प्रोग्राम में वो बोल रहे हैं वो बैक में दर्द है ऊपर गर्दन का
0: जी जी,
2: तो जो हम सोने से हो ये चीज हमारे साथ होता है। जब आप मतलब एक साइड में ज्यादा हो तो होता है ना, एक साइड में तो कभी कभी ऐसा दर्द महसूस होता है। तो बस मैं पेनाडोल खा के फिर सही हो जाता हूँ, मैं कोई मेडिसिन और कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेनाडोल यूज करता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ।
1: ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पेनाडोल से सही हो जाता है।
2: मतलब ज्यादा मेडिसिन नहीं जरूरत नहीं होती तो सिंगल आकर ठीक हो जाता
0: जी।
2: तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े नहीं पड़ता ना, बस सही बहुत है
0: जी। तो पूछना क्या चाहेंगे?
2: दूर हो जाती हाँ यही बोल रहा हूँ कि मेरी तकलीफ तो दूर हो जाती है। हाँ डॉक्टर साहब का इलाज जरूरत नहीं है पेनाडोल का के।
1: पहले तो पेनाडोल खानी होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली
0: बिल्कुल।
1: अगर कभी कभी तो उसकी जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको पेन अगर कम हो रहा है तो फिर मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर मेडिसिन मेडिसिन से सही नहीं होगा फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये तो फर्स्ट स्टेप है।
0: मगर जी बहुत अच्छी बात है कि आपको
2: पेनाडोल मेरे ऊपर मतलब इस्तेमाल हो जाता है तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती।
1: बहुत अच्छा,
2: बचपन से स्पोर्ट में रह चुका हूँ ना इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए वो कभी कभी तकिया जो थोड़ा मोटा वाला डालता है ना सोने के लिए तकिया, तो वो तो गर्दन फिर टेढ़ा हो जाता है एक दूसरी तरफ नहीं।
0: जी बिल्कुल, लोग सब ने यही एक बहुत बड़ी वजह बताई कि इस तरह से जब जो इस तरह हम तकिया जो है ज्यादा ऊंचा रखते हैं तो उससे जो है दर्द में हो सकता है।
2: उससे मुझे बहुत ज्यादा हो जाता, बस बाद में जब एक दो दिन में तकिया नहीं रहा तो बगैर तकिया सोता हूँ फिर सीधा हो जाता है।
1: बिल्कुल एग्जैक्टली,
2: अच्छा चीज है। चलो
0: चलिए ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर खुद कर ले
1: एग्जैक्टली, पहले तो खुद ही करनी है। देखिए मेडिसिन तो हर किसी को पता है कि पेन मेडिसिन कौन सी है
0: जी जी जी,
1: पेनाडोल का तो हर किसी को पता है।

0: तो वो पहले स्टार्ट करेगा उससे, और उससे फ़ायदा नहीं हुआ फिर डॉक्टर के पास, फिर हमारे फैमिली फिजिशियंस बैठे हुए हैं वो रिफ़र करेंगे आर्थोपेडिक की तरफ
1: जी,
0: इस तरह से इंशाल्लाह।
1: तो कितने

0: तो फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने।
1: ठीक ठीक। और ये है कि जो पेन किलर्स लेते हैं वो भी इन्होंने तो का पैनाडोल है, मगर कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी लेते हैं और वो भी फिर डॉक्टर के
0: नार्कोटिक भी हैं, नॉन नार्कोटिक भी हैं, कुछ पेशेंट उससे सही होते हैं नार्कोटिक से, कुछ नॉन नार्कोटिक
1: जी। ये टाइप्स हैं कि जो हम पेन किलर लेते हैं उसमें मुख्तलिफ जो टाइप,
0: जैसे एक पैनाडोल है वो नॉन नार्कोटिक है, उसमें नींद नहीं है, एक होती है जिसमें नींद थोड़ी होती है, ठीक है, वो हाई लेवल की मेडिसिन होती है।
1: ठीक है ठीक। इसमें आमतौर पर जो आम पब्लिक जो है वो चपेंडोल है, ब्रूफेन है, मतलब इस तरह
0: जी,
1: से
0: इस तरह से
1: वो करते हैं ज़्यादा यूज़, तो इसमें से अगर कौन सी अगर आप खुद से लेना चाहें तो पैनाडोल ज़्यादा सेफ है या ब्रूफेन?
0: हाँ पैनाडोल सेफ, बहुत सेफ है, और ब्रूफेन थोड़ी किडनी पे इफेक्ट करती है लेकिन वो ज़्यादा पेन है तो उसको कवर करती है, अच्छी मेडिसिन है बहुत।
1: अच्छा
0: ले सकते हैं,
1: ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है,
0: कम होती है।
1: ठीक ठीक। तो अगर कोई सोजिश हो तो वो जो है वो अब एक और कॉल है, हम चलेंगे अपने लिसनर्स की तरफ, सुनते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, लाइन जो है कट ऑफ हो गई है, जैसे ही होगी तो ज़रूर हम चलेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसमें हम प्रिवेंशन की बात करना चाहेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
0: फ्रोजन शोल्डर में तो शुगर कंट्रोल।
1: अच्छा अच्छा, तो इसमें ज़रूरी है कि जो पेशेंट है वो डायबिटिक भी हो?
0: आपको
1: 95 नहीं भी, अच्छा
0: वो पोस्ट ट्रामेटिक होगा, जैसे उसको चोट लगी है, उसकी फिजिकल थेरापी मिस हुई या निकली नहीं कराई फिजिकल थेरापी, या कोई ऑपरेशन हुआ है शोल्डर के दरमियान इर्द-गिर्द और उसकी बात हो सकता है उसको वो, लेकिन वो कम परसेंट होगा, ज्यादा डायबिटिक्स में होगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: डायबिटिक्स में आपको बाइलेटरल फ्रोजन शोल्डर भी मिलेगा।
1: अच्छा, वरना आमतौर पर एक ही कहते हैं कि फ्रोजन शोल्डर
0: है, जिस तरह आप कह रही हैं 80%।
1: अच्छा,
0: अगर 20% और बिलाली तो वो बायलेटरल।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ।
1: अच्छा ठीक है।
0: जैसे अब इनने फ़ोन किया कि भाई मुझे दर्द होता है और फिर मैंने मेडिसिन खाई तो वो निकलेट कर कर करके दूसरे में भी हो जाता है, ठीक है।
1: अच्छा,
0: तो इनको तो खैर फ़ायदा हो रहा है, किसी को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो फिर फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाए।
1: ठीक है, इसमें जो है
0: वो ही पहले अपने फिजिशियन के पास जाएगा तो उसको ट्रीट करेगा और उसको अगर आगे भेजना है तो फिर वो उसको रेफर करेगा।
1: जी, इसमें नुकसान जैसे ज़्यादातर तो ये भी कहा जाता है कि अच्छा पूरे जॉइंट्स की या इस तरह जो दर्द हैं वो आपके लाइफस्टाइल पे बड़ा डिपेंड करता है, जैसे कि अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल
0: है, हमारे यहाँ एक केस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
1: जी,
0: रूमेटॉइड की तो ट्रीटमेंट मेडिसिन, उसकी मेडिसिन है, फिजिकल थेरेपी है और उसकी स्टेजेस हैं। इस तरह का अगर पेशेंट होगा तो उसमें ट्रीटमेंट डेफिनेटली डिफरेंट होगा, लॉन्ग रन होगा।
1: अच्छा ठीक है,
0: तो कभी हमें जोड़ भी चेंज करने पड़ते हैं जिसे आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं उसको।
1: अच्छा अच्छा
0: ठीक है, शोल्डर में भी करते हैं।
1: अच्छा
0: जी
1: ठीक,
0: और अच्छे रिजल्ट हैं उसके।
1: उसकी इंडिकेशन मतलब यही होता है कि
0: वही अगर देखें एंड पॉइंट है, किसी से भी सही नहीं हुआ, शोल्डर आर्थराइटिक है, ट्रामेटिक है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें जोड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो फिर जोड़ चेंज करते हैं, उसको कहते हैं आर्थोप्लास्टी, शोल्डर आर्थोप्लास्टी।
1: ठीक, तो भी उस तरह जैसे हिप की,
0: जैसे हिप की है, जैसे नी की है।
1: अच्छा जी, तो इसका क्या प्रोग्राम मतलब कितना सक्सेसफुल है ये?
0: बहुत सक्सेसफुल है, आजकल दो इम्प्लांट्स ऐसे बने हुए हैं बहुत अच्छे।
1: ठीक, क्योंकि जब हम नी जॉइंट की बात करते हैं, आपसे ही बात की, तो उसमें रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत लोग जो है थोड़े खौफजदा भी होते
0: बाहर
1: हैं, तो
0: से बिल्कुल ऐसे लगता है अगर हम बाहर बैठ के सोचें तो कैसे होगा, पर जब आप करते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं कैसे चलते हैं वो विदाउट पेन, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो फिर आपको फील होता है कि कितना
1: अच्छा।
0: एक चीज़ें आप देख रहे हैं, एक आपने सुनी हुई है।
1: जी जी ठीक। और
0: एक बात होती है बहुत कॉमन, नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराया, हर 100% आपको जो बंदे मिलेंगे वो कहेंगे मेल फीमेल जिसने कराया, नहीं नहीं नहीं कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उस पेशेंट से पूछें जिसने कराया है प्रॉपर, अगर आपको पेशेंट मिला है तो आपको बताएगा कि भाई बहुत फ़र्क हो
1: कि उसकी जो
0: तो सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना है।
1: ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो जो है उस पर बहुत ज़्यादा, और देखने में भी आता है वो पेशेंट जो बिल्कुल चल नहीं सकते थे,
0: देखिए वो आर्थोप्लास्टिक सर्जन तभी करता है जॉइंट रिप्लेसमेंट जब उसको पता होता है कि अभी हमने इसको कंजर्वेटिव ट्रीट भी किया, इसकी फिजिकल थेरापी भी हुई और इम्प्रूवमेंट कोई नहीं आ रही है, फिर जाएँ और उस पेशेंट से पूछें। अब देखें उसमें भी कुछ अलामतें हैं, देखें उसको पहले ही बताना है कि भाई

0: बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। ये नहीं समझें कि बस थोड़ा सा चीरा लगा के और जॉइंट चेंज करेंगे, ठीक है। उसमें बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस में लें, उसको बताएं कि कितना उसको इंसिशन लगेगा, कितना कट होगा बोन, ठीक है, और क्या हो सकता है, उसके इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, न्यूरोवेस्कुलर इंजरीज हो सकती हैं, डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, उसके बाद गिरने के बाद फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। सब्ज बाग नहीं दिखानी है उसको, उसको आपने हकीकत बतानी है,
1: ठीक है।
0: कभी कभी स्टिफनेस आ जाती है, लेकिन वो लेस देन 1% है सारी चीज़ें, ठीक है। पहले ही उसको बता के डराना नहीं है, पहले उसको थोड़ा आपने हिम्मत भी देनी है, उसको देखना भी है, उसको काउंसिल भी करना है, उसको कॉम्प्लिकेशन भी डिस्कस करने हैं, ठीक है।
1: ठीक ठीक, बिल्कुल, ये बात तो बहुत अहम है। और
0: उसको बिठा के उसके साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, उनके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसीजर है
1: जी। ठीक ठीक ठीक, इसकी कॉम्प्लिकेशन तो आपने बता ही दिया, खुदा नास्ता, वो भी 1-2% है,
0: लेस देन 1%, बहुत कम।
1: तो इसमें फॉलो अप किस तरह से आप
0: फॉलो अप हम उनको 2 हफ्ते के बाद करते हैं, 6 हफ्ते में, फिर 8 हफ्ते में फिजिकल थेरेपी कराते हैं और पेशेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं।
1: अच्छा, तो उसमें जैसे ऑपरेट कर दिया तो उसके बाद फिर उसको एक्टिव जैसे चलना शुरू करिए, कितनी देर?
0: ये हम अब नी का पूछ रही हैं
1: जी, नी का
0: एग्जैक्टली जब एनएससी का इफेक्ट खत्म होगा, नेक्स्ट डे पे उसकी होगी फिजिकल थेरेपी स्टार्ट। जब उसकी टांग में जान आएगी तो उसका खड़ा करेंगे, वॉकर से चलाएंगे, फिजिकल थेरेपिस्ट उसको ऐसे लेग को उठा के जैसे होल्ड करते हैं इस तरह देखेगा, फिर मूवमेंट होती है उसमें, बड़ा माशाल्लाह बहुत देखने में पेशेंट बहुत इम्प्रूव करता है
1: जी। और जो शोल्डर है उसमें शोल्डर मूवमेंट,
0: आजकल तो ये दुनिया ही चेंज हो गई है
1: जी।
0: आर्थोप्लास्टिक सर्जन वो आ गए हैं, सिर्फ वही केस कर रहे हैं,
1: ठीक है,
0: और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है।
1: ठीक ठीक ठीक,
0: लेकिन आजकल तो पैरों के और हाथों के भी जॉइंट्स चेंज हो रहे हैं।
1: अच्छा,
0: रूमेटाइड में करते हैं,
1: रूमेटाइड, ठीक ठीक है, क्योंकि वो पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स और ये होता था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें, ठीक है। लिसनर्स, अगर आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो आप हफ्ते को सुबह 8 बजे प्रोग्राम पेश किया जाता है, आप सुन सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: बस वही, जैसे हम अब आज हमारी बात हुई है शोल्डर पे, तो वही अर्ली डायग्नोसिस देखें, कुछ हफ्ते मेडिसिन खाएं, अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स की बढ़ रही है और बायलेटरल फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, अब तो फौरन जाना चाहिए आपके फैमिली फिजिशियन के पास, वो फिर आगे बढ़ाएगा आपको, पहले ट्रीटमेंट खुद ही करेगा, अगर उससे भी नहीं सही हुआ तो फिर आगे फिजिकल थेरेपी का उनको बोलेंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे और शुगर को कंट्रोल करेंगे।
1: बिल्कुल, और लिसनर्स, इसके साथ ही प्रोग्राम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत अच्छा मैसेज है कि अपना जो ख्याल करना है और शुगर लेवल का, और इसके अलावा जो है हमारी जो हेल्थ है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना, ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए हम फिर शोल्डर पेन और नेक पेन से भी दूर रहेंगे, डिवाइसेस से ज़रा दूर रहेंगे। और इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद और फौजी शफीक हमारे साथ रहे, असली भंडारा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 9 a.m. News at 9 a.m. from Urdu Radio FM 107.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107، محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے لندن میں منعقدہ سالانہ لندن فورم کے موقع پر مشرق وسطی کی نئی جغرافیائی سیاست کے عنوان سے ہونے والی گفتگو میں شرکت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر تمام اطراف سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ تعمیری انداز اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوں تاکہ ایرانی جوہری معاملے کا پرامن پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے باوجود امریکہ اور ایران نے باہمی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فورس کی بمباری اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Cricket ho,
3: and he's hooked that away. That's 4 runs.
2: Football ho, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
5: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर ₹1,00,000 तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।
6: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे सलाह ज़करिया के बारे में। सलाह कतर के उभरते हुए फुटबॉल गोलकीपर्स में शुमार किए जाते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कतरी फुटबॉल में अच्छी पहचान बनाई है। उनकी रिफ्लेक्सेस, शॉट स्टॉपिंग और पेनल्टी एरिया में कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें मुस्तकबिल का अहम गोलकीपर माना जाता है। सलाह ज़करिया ने कतर स्टार्स लीग के मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और मुश्किल लम्हों में टीम के लिए अहम बचाव किए। उनका ताल्लुक कतरी क्लब से रहा है जहां उन्होंने डोमेस्टिक फुटबॉल के सख्त मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी परफॉर्मेंस से कोचेस और फैंस का भरोसा हासिल किया। ट्रेनिंग और डिसिप्लिन उनकी कामयाबी के बुनियादी असबाब हैं और QSL में खेलते हुए उन्होंने तजुर्बा हासिल किया जो उनकी टेक्निकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। सलाह ज़करिया को कतर के फुटबॉल निज़ाम का एक ऐसा हिस्सा समझा जाता है जो नए गोलकीपर्स के लिए मिसाल बन सकता है। पिछले दिनों फुटबॉल वर्ल्ड कप में सलाह ज़करिया कतर के स्क्वाड में थे, ये उनके लिए एक अहम तजुर्बा साबित हुआ। अगर वो इसी तरह मेहनत और मुसलसल बेहतरी परफॉर्मेंसेस का सफ़र जारी रखें तो मुस्तकबिल में क्लब और कौमी सतह पर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक सी बात करेंगे सेहत के हवाले से, कि जहां हम बहुत सी जो मालूमात हैं वो सेहत के हवाले से आप तक पहुंचाते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे? हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आपको लेके चल रही हूँ आज कतर ग्रीन बीट्स के एक नए नवेले एपिसोड में। तो जनाब, जब आज मैं स्टूडियो आ रही थी तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और सिर्फ एक मिनट के लिए बाहर खड़ी हुई। सूरज की वो पहली किरण जब चेहरे पर पड़ती है ना, तो उसमें एक अजीब सी ताकत, एक वो कहते ना शक्ति महसूस होती है। आज की रोशनी सिर्फ चमक ही नहीं रही है जनाब, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कह रही है, जैसे ये कतर की मिट्टी से कोई पुराना वादा निभा रही हो। यस, सदियों से इस मुकद्दस सरजमी के लोगों ने एक रिश्ता निभाया है इस आसमान के साथ। हमारे बुजुर्गों ने, उन दरिया दिलों ने सितारों और सूरज की मदद से रेगिस्तान के टीलों या यूं कहें ड्यून्स और समुंदर की लहरों में अपना रास्ता ढूंढा है। द सन वॉज देयर कंपस और उनका गाइड हुआ करता था। लेकिन आज वक्त बदल गया है। वही आसमान, वही पुराना सूरज आज हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहा, वो हमें एनर्जी दे रहा है, वो हमें ताकत दे रहा है हमारे घरों को रोशन करने की और हमारी गाड़ियों को चलाने की। हमारे पूर्वजों ने सूरज को देखकर रास्ता तय किया था और आज हम सूरज की बदौलत अपना फ्यूचर तय कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल साइकिल, डोंट यू थिंक? ऐसे नेविगेशन से शुरू होकर जनरेशन तक का ये सफर वाकई में बेमिसाल है।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट। हम एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहां सोलार इरेडियंस दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर मैं सच कहूं तो एक वक्त था जब हम गर्मी से बचते थे। समर मंथ्स मतलब ये हमें बस ऐसा एहसास कराते थे कि बस शेड ढूंढना है। सूरज को एक एडवर्सरी, एक दुश्मन की तरह हम देखने लगे थे कि अरे मतलब, क्योंकि सूरज के आते ही हमें थकान हो जाती है, गर्मी बहुत लगती है, तपिश हो जाती है, मतलब अच्छा नहीं लगता। पर आज ट्रांजिशंस हो रहे हैं। अंडर द कतर नेशनल विजन 2030 हमने अपना नजरिया बदल दिया है। हम इस गर्मी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा साथी, अपना एलाय बना रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि वो धूप जो हमें चुभनी चाहिए थी, वही धूप अब कतर के सस्टेनेबल फ्यूचर की बुनियाद बन रही है। वी आर गोइंग बियॉन्ड द ऑयल एंड गैस। हाँ जी, और ये बहुत जरूरी है समझना कि सिर्फ हमारा कतर एक मैग्निफिसेंट स्काई स्क्रेपर्स की जगह नहीं है। यहाँ हम अब उन छोटे छोटे फोटॉन्स की बात करेंगे, यूं कहे कर रहे हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ माइल्स ट्रैवल करके आते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को ग्रीन बना सके। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता क्या कतर वाकई ग्लोबल सोलर लीडर बन सकता है, क्या एक ऐसी इकोनॉमी जो हाइड्रोकार्बन्स पर खड़ी है वो सूरज की रोशनी पर शिफ्ट हो पाएगी। मेरा जवाब हाँ।

0: नहीं है, मेरा जवाब है कि ये तो शुरू हो चुका है. यस, लुक अराउंड यू. अल खरसा से लेकर हमारी इलेक्ट्रिक बसेस तक, कतर इज नॉट जस्ट ड्रीमिंग, कतर इज डिलीवरिंग. हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं. ये जो रेडिएंट रेवोल्यूशन है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करती, ये हमारी लेगेसी की बात करती है. हम अपने आने वाली नस्लों या यूं कहें अपनी जनरेशंस को क्या देकर जाएंगे? एक ऐसा कतर जो कुदरत की दी हुई हर नेमत को शुक्रगुजार करता है और उसका सही इस्तेमाल करना जानता है, या फिर ऐसा कतर जो बस बढ़ना जानता है और जनरेशन का ख्याल नहीं रखता? भाई देखिए, मैं तो कहूंगी हमारा कतर ऐसा है जो हर एक छोटी चीज का ख्याल रखते जा रहा है. आज कतर ग्रीन बीच के इस एपिसोड में हम सूरज की इस अजीम शक्ति, इस अजीम पार को डीकोड करेंगे. हम बात करेंगे उस अल खरसा मावल की जो स्पेस से भी दिखाई देता है. हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर के बिल कम कर सकते हैं तशीद के टिप्स के साथ. और हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइलेंट और क्लीन हो रही है. तो कहीं नहीं जाना है, आपने बने रहना है हमारे साथ ऑन FM 107. दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. वेलकम बैक टू कतर ग्रीन बीट्स. मैं हूँ अमिता आपके साथ. टाइम हो चला है हमारे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट का, द ग्रीन वायर का. और आज का डेटा वाकई बहुत ब्राइट है. यस, कतर एनर्जी की जो अपडेटेड सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी है, उसका मकसद पता है क्या है? 2035 तक 5 यानी कि 5 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी हासिल करना. ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ मैसिव लीप. अब सिर्फ एक छोटा प्लांट नहीं बल्कि कतर एनर्जी रिन्यूएबल सॉल्यूशंस ने आईसी सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. रास लफान और मेसईद इंडस्ट्रियल सिटीज में 2 बड़े सोलर प्लांट्स लग रहे हैं. यस, जो हमारे सोलर फुटप्रिंट को डबल कर देंगे. और सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं, अगर आप दोहा की सड़कों पर देखें तो आपने बदलाव देखा ही होगा. यस, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है. 800 यानी 800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस वर्ल्ड कप के दौरान तो ये था ही, पर आज भी ये बसेस साइलेंट और क्लीन एनर्जी के साथ हमारे शहर में चल रही हैं. इन्हें सपोर्ट करने के लिए कारामा और तर्शीद ने ग्लोबल ईवी चार्जिंग इनिशिएटिव के तहत 1000 यानी 1000 स्टेशन का टारगेट रखा है. हम एक नेशन को रियल टाइम में प्लग इन होते देख रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, ये पूरा का पूरा एक्शन है. तो आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स और यहाँ हमारी बातें बड़ी कमाल की हो रही हैं. अब हम थोड़ा बात करेंगे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट की. यस, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहती हूँ जो दोहा की चहल पहल से थोड़ा दूर है पर हमारे फ्यूचर के लिए सबसे करीब है. तसव्वुर कीजिए कि आप दोहा से निकलते हैं और तकरीबन 80 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ड्राइव करते हैं. शहर पीछे छूट रहा है और चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत है. तभी अचानक होराइजन पर आपको कुछ चमकता हुआ दिखता है. दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान के बीचों बीच एक नीला समुंदर लहरा रहा है, पर ये पानी नहीं है. ये है अल खरसा सोलर पीवी प्लांट, एक ऐसा अजीम लैंडमार्क जो इतना बड़ा है कि शायद आप इसे स्पेस से भी साफ देख सकते हैं. अल खरसा सिर्फ एक सोलर फार्म नहीं है, ये कतर का गर्व है या यूं कहे प्राइड है. 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये प्लांट 800 मेगावाट्स की बिजली पैदा करता है. 800 मेगावाट्स, इसका मतलब समझते हैं आप? पीक टाइम पर ये कतर की टोटल पावर डिमांड का 10% तक पूरा कर सकता है. लेकिन जो चीज इसे वाकई मार्वेलस बनाती है वो इसकी टेक्नोलॉजी है. वहाँ 2 मिलियन सोलर मॉड्यूल्स लगे हैं. जी हाँ, पूरे 20 लाख पैनल्स. जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ कांच और सिलिकॉन की चमक दिखती है. और ये कोई आम पैनल्स नहीं है, इन्हें कहते हैं बाइफेशियल सोलर मॉड्यूल्स. बायफेशियल मतलब दो चेहरों वाला। इनका डिजाइन इतना स्मार्ट है कि ये सिर्फ ऊपर से आने वाली सीधी धूप को ही नहीं पकड़ते, बल्कि हमारे रेगिस्तानी मिट्टी जो धूप रिफ्लेक्ट करती है ना, उसे भी ये पैनल कैच कर लेता है, उस रोशनी को बिजली में बदल देता है। इट्स लाइक डबल द पावर फ्रॉम द सेम सन। हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसी जगह पर सोलर पैनल लगा है तो कतर में जब डस्ट स्टॉर्म वगैरह होते हैं तो धूल धक्कड़ बहुत हो जाती है, तो ये पैनल्स साफ कैसे रहते हैं? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर पैनल्स पर मिट्टी की एक बारीक परत भी जम जाए तो उनकी एफिशिएंसी गिर जाती है, और इतने बड़े एरिया में इंसानों का जाकर साफ सफाई करना, इट्स नॉट ईजी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? अल खरसा में रोबोटिक क्लीनिंग आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तसव्वुर कीजिए, रात के सन्नाटे में जब पूरा कतर सो रहा है, ये रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं। ये पैनल्स के ऊपर बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म की तरह ग्लाइड करते हैं, और सबसे कमाल की बात, ये वाटरलेस क्लीनिंग है। हमारे खुश्क या यूं कहें ड्राई इलाके में पानी की कीमत हम सबसे बेहतर जानते हैं। ये रोबोट्स बिना एक बूंद पानी खर्च किए सिर्फ अपनी रोबोटिक ब्रशेस से सारी धूल साफ कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल प्योर क्लीन एनर्जी, जहां हम एनर्जी बनाने के लिए भी कुदरत के रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करते। लेकिन जनाब, ये सब मेहनत क्यों? सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। अल खरसा प्रोजेक्ट अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 26 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को रोकेगा। 26 मिलियन टन्स, ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम इसे ट्रीज से कंपेयर करें तो हमें करोड़ों पेड़ लगाने पड़ेंगे इतना कार्बन ऑफसेट करने के लिए। ये है कतर की वो तरक्की जो हमारी आने वाली नस्लों को ध्यान में रखकर की जा रही है। इट्स अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी, तो कतर ग्रीन बीट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह की बातों को आपके सामने लेकर आए। वैसे अभी तक हमने बात की अल खरसा के अजीम सोलर प्लांट की, अब ये काफी इंस्पायरिंग है, इजंट इट? लेकिन अभी एक तरफ वो लाखों सोलर पैनल्स हैं जो देश की तकदीर बदल रहे हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि ये तो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के काम है। मैं अपने छोटे से फ्लैट में, या अगर मैं अपने विला की बात करूं, तो वहां मैं ऐसा क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं जिससे हम हमारे कतर के एनवायरनमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें? याद रखिए, वो कहते हैं ना कि दरिया या रिवर हमेशा छोटी छोटी बूंदों से बनता है। सकारमा और तशीद मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर के किचन और बेडरूम से इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कमांडर बन सकते हैं। मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ बड़े ही कमाल के गोल्डन रूल्स जो आपकी पॉकेट और हमारे प्लैनेट दोनों को खुश रखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले रूल नंबर वन, इसे मैं कहती हूँ द 24 डिग्री रूल। हाँ जी, तो कतर की गर्मी में एसी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और ये सब हम जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारे घरों में जो बिजली खर्च होती है उसका 60% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कूलिंग में चला जाता है। हम अक्सर घर आते हैं, गर्मी लगती है और सीधा एसी को 16 या 18 डिग्रीज पर सेट करके चला देते हैं, पर जनाब हम सोचते हैं कि इससे कमरा ठंडा हो जाएगा। नहीं, ये एक मिथ है। एसी का कंप्रेसर तब तक फुल स्पीड पर चलता है जब तक वो टारगेट टेम्परेचर अचीव ना कर ले। 18 डिग्रीज तक पहुंचने में कंप्रेसर पर जो बोझ या यूं कहें लोड पड़ता है, वो ना सिर्फ बिजली खपाता है बल्कि मशीन की जिंदगी भी कम कर देता है। वेल, एक्सपर्ट्स जो हैं वो रेकमेंड करते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस ये स्मार्ट जोन है। इस टेम्परेचर पर आपको बेहतरीन ठंडक मिलेगी और आपका कंप्रेसर ओवरड्राइव में नहीं जाएगा। सोचिए, सिर्फ 2-3 डिग्रीज का फर्क आपकी मशीन के बिल में कितनी बचत कर सकता है। इट्स अबाउट बीइंग कूल और साथ में स्मार्ट भी। दूसरा रूल है द स्मार्ट मीटर रेवोल्यूशन। हाँ जी, क्या आपने अपने घर के बाहर वो नया डिजिटल मीटर देखा है? अगर कारमा ने आपके यहाँ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिया है तो समझिए आपके हाथ में एक एनर्जी फिटनेस ट्रैकर आ गया है। पहले क्या होता था, महीने के आखिर में बिल आता था और हम हैरान हो जाते थे कि इतना खर्चा कैसे हुआ। लेकिन अब इस कारमा ऐप के जरिए आप लाइव कंजम्पशन देख सकते हैं। मैं इसे फिटनेस ट्रैकर भी कहती हूँ, हाँ जी, क्योंकि जैसे आप अपने स्टेप्स काउंट करते हैं वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि किस वक्त आपका घर सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो फिर इसे आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। रूल नंबर 3 इज सोलर रेडी लिविंग। यस, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना घर बना रहे हैं एंड रेनोवेट करने जा रहे हैं। कतर की धूप मुफ्त है और ये हमेशा रहेगी, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठा लें। आपने सोलर वाटर हीटर्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो कतर में ये पूरी तरह ऑथराइज्ड और सपोर्टेड है। हम अक्सर सर्दियों में या किचन के काम के लिए बिजली से पानी गर्म करते हैं, लेकिन सोचिए जब बाहर सूरज इतनी गर्मी दे रहा है तो हम बिजली क्यों खर्च करें। सोलर वाटर हीटर्स लगाना एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो सालों तक आपको मुफ्त में गर्म पानी देगा। ये वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमारे फ्यूचर को महफूज बनाते हैं। तो भाई क्या करना है, 21st century है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। वैसे अब वक्त हो चला है कि मैं कहूँ कि भाई आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। और आज जब कतर सोलर इनोवेशन की बात हमने की तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे थे, हम ये इंश्योर कर रहे थे कि हमारी तरक्की हमेशा कायम रहे, बिल्कुल इस सूरज की तरह जो हर रोज बिना छुट्टी मारे निकलता है, है कि नहीं? तो जनाब आज का कतर ग्रीन बीट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और छोटे छोटे कदमों को हमें लेकर एक बड़े गोल को अचीव करना है, तभी जाके हम अपने कतर को क्लीन, ग्रीन और हेल्दी बना पाएंगे। वेल, आज के एपिसोड में हमारे कतर ग्रीन बीट्स में इतना ही था, और अगले एपिसोड में कुछ खास होगा जिसके लिए मैं कहूंगी कि सुनना ना भूलें। पर अभी के लिए आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर FM 107 के, और अपनी अमिता को भी वहीं ढूंढ सकते हैं। तभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ मैं अब लेती हूँ इजाजत। स्टे ब्राइट, स्टे ग्रीन एंड कीप द बीट। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
4: दिल से देसी
5: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, आज तक आपने सुना डिजिटल फ्रॉड के बारे में, यानी कि कोई शख्स आपको कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, लिंक के जरिए या फिर एप्लीकेशन के जरिए फ्रॉड या स्कैम करने की कोशिश करता है। लेकिन हम इस बार बात करने वाले हैं फिजिकल थेफ्ट के बारे में, यानी कि एक ऐसा शख्स जो आपके सामने आता है, आपसे बातें करता है और आपको ठग के यानी कि स्कैम करके चला जाता है। और नए जमाने के इस नए स्कैम में हम बात करेंगे हाईटेक कीलेस कार थेफ्ट के बारे में। मॉडर्न अर्बन एरियाज में कीलेस कार थेफ्ट, जिसे रिले अटैक भी कहा जाता है, एक बड़ा खतरा बन चुका है। इस फ्रॉड में चोर दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। एक चोर आपके घर के बाहर खड़ा होता है, जहां कार की स्मार्ट की रखी होती है, और दूसरा कार के पास होता है। पहली डिवाइस घर के अंदर से की का वायरलेस सिग्नल कैच करती है और उसे दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट करती है। कार इस सिग्नल को देखकर समझती है कि ओनर पास ही है। इस तरह कार का डोर इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है और चोर इंजन स्टार्ट करके कार लेकर फरार हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस बिना किसी फिजिकल डैमेज के कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। फरादे पाउच, अपनी स्मार्ट की को हमेशा एक सिग्नल ब्लॉकिंग फरादे बैग में रखें, और अगर ऑप्शन हो तो की फॉब की वायरलेस सेटिंग को डिसेबल कर दें। स्टेयरिंग लॉक का भी एक सॉल्यूशन है। एक फिजिकल स्टेयरिंग व्हील लॉक यूज करें जो चोरों को रोक सके, और उसके अलावा पार्क सेफली। गाड़ी को हमेशा वेल लिट एरिया या लॉक गैराज में पार्क करें। की को घर के दरवाजे और खिड़कियों से दूर अंदर की तरफ रखें, ताकि चोर वायरलेस सिग्नल कैच ना कर सके किसी भी डिवाइसेस से। तो इस तरह के फिजिकल स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा सतर्क और होशियार रहें। और इस महीने हम फ्रॉड अवेयरनेस में, यानी कि इस स्कैम की दुनिया के फिजिकल फ्रॉड के बारे में हर बार आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन ऑगमेंटेशन एंड बायो एनहांसमेंट की. ह्यूमन ऑगमेंटेशन और बायो एनहांसमेंट एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जहाँ इंसान अपनी नेचुरल एबिलिटीज को टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव करता है. इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ अपनी नेचुरल लिमिट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा बल्कि टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और हेल्थ को अपग्रेड कर सकेगा. आज के दौर में, हाँ हाँ आज के दौर की

अगर बात की जाए तो बिल्कुल आज के दौर में ना इस कॉन्सेप्ट को समझना हल्का सा चैलेंजिंग जरूर लगता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। आज के दौर में भी इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन फ्यूचर में ये और एडवांस्ड होकर इंसान और जो मशीन है उसके बीच डिफरेंसेस को और कम कर देगा। ह्यूमन ऑगमेंटेशन ये है क्या, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ह्यूमन ऑगमेंटेशन का मतलब है इंसानी बॉडी को टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हांस करना। ये इन्हांसमेंट फिजिकली, मेंटली और सेंसेस को भी करना है। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल लिम्स, ब्रेन इम्प्लांट्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, ये सब चीजें इंसान को स्ट्रॉन्गर स्मार्टर बनाती हैं। अब मैं बात करूंगी इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी वो डिवाइस है जो इंसानी बॉडी के अंदर लगाई जाती है। ब्रेन इम्प्लांट्स, शायद आपने वर्ड सुना है पहले से, या BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दिमाग को डायरेक्टली मशीन्स के साथ कनेक्ट कर देती है। इंसान सिर्फ सोचे कि कंप्यूटर या फिर रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे

जैसे पेसमेकर या फिर और भी इम्प्लांट्स हैं जो हेयरिंग और हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं. फ्यूचर में ये इम्प्लांट्स और ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, मेमोरी इम्प्रूव करेंगे, लर्निंग को फास्ट कर देंगे, डिजीजेस को पहले ही डिटेक्ट कर देंगे. वहीं पर कुछ और भी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी, वो उस तरह के जैसे बायोनिक ऑर्गन्स, वो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होंगे जो नेचुरल ऑर्गन्स की जगह ले सकते हैं. जैसे बायोनिक लिम्स, आजकल एडवांस प्रोस्थेटिक आर्म्स और लेग्स अवेलेबल है मार्केट में, जो मसल्स या फिर ब्रेन सिग्नल से कंट्रोल्ड होते हैं. बायोनिक लिम्स जो है वो कहीं ना कहीं नेचुरल लिम्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. इंसान सुपर स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है, डिसेबल्ड लोग नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, और इसके कई एग्जांपल्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पे फिलहाल मेंशन करना नहीं चाहती. और हाँ, एक और चीज, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, बायो हाइब्रिड ऑर्गन्स जो है वो आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन हैं. ये ऑर्गन फ्यूचर का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल हार्ट या फिर लैब ग्रोन किडनीज. इससे लोगों की जिंदगी लंबी और हेल्दी हो सकती है. वहीं अगर मैं बात करूं तो एक्सोस्केलेटन्स एक रोबोटिक सूट है. ये बेसिकली आने वाले टाइम में बड़ा कॉमन होगा, ये सूट जो इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा. वर्कर्स हैवी वेट आसानी से उठा सकेंगे, सोल्जर्स स्ट्रॉन्गर और फास्टर हो सकेंगे, पेशेंट्स जो है वो रिहैब में बेहतर वॉक कर सकेंगे. फ्यूचर में ये सूट हर जगह हर एक को सूट करेगा और अवेलेबल भी होगा. वहीं एक और चीज जो हमें और आपको चौंकाएगी वो है कॉग्निटिव एनहांसमेंट्स. कॉग्निटिव ऑगमेंटेशन का मतलब है सोचने की आपकी जो ताकत है, जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसे भी इम्प्रूव करना. ये टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव की जाए, फोकस और लर्निंग स्पीडी बनाया जाए, डिसीशंस बेहतर आप ले सकें, और फ्यूचर में शायद इंसान इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन में डाउनलोड करेगा, इधर उधर डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है. लैंग्वेजेस इंस्टेंटली सीख जाएगा, आज की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. सुपर इंटेलिजेंस अचीव कर सकता है, जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका थॉट आज हम सबके जहन में होता है और हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो पाएगा. वहीं पर ह्यूमन ऑगमेंटेशन के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे हेल्थ इम्प्रूवमेंट, डिजीजेस का इलाज इंसान को समझ में आएगा, आसानी से होगा, जिससे आपकी लाइफस्टाइल जो है या लाइफ स्पैन जो है वो इम्प्रूव करेगा. वहीं डिसेबिलिटी का एक सोल्यूशन निकल आएगा, डिसेबल्ड लोग नॉर्मल जिंदगी से भी बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे. स्ट्रॉन्गर स्मार्टर ह्यूमंस, ह्यूमन अपनी नेचुरल लिमिट से आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादा लाइफ होगी. बायो एनहांसमेंट एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है, लेकिन इसके फिर अपने कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी हैं. क्या इंसान एथिकल इश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो क्या वाकई इंसान अपनी बॉडी मॉडिफाई करना चाहेगा? क्या ये नेचुरल है या फिर नेचर के साथ छेड़छाड़? आई मीन इनइक्वालिटी. अगर सिर्फ अमीर लोग एनहांसमेंट अफोर्ड कर सकेंगे तो सोसाइटी में कितना बड़ा गैप आ जाएगा. फिर आपकी अपनी आइडेंटिटी, आई मीन जब इंसान मशीन से मर्ज हो जाए तो सवाल उठता है कि वो अब प्योर ह्यूमन है कि नहीं है. पता नहीं, इम्प्लांट्स या फिर टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, जो डेंजरस भी हो सकती है, तो सेफ्टी का रिस्क तो बना ही हुआ है ना. देखिए, फ्यूचर में हमें ऑगमेंटेशन एवरीडे लाइफ का हिस्सा तो बनाना ही पड़ेगा. स्मार्ट इम्प्लांट्स जो बॉडी को मॉनिटर करेंगे, बायोनिक आईज जो आपकी नाइट विजन्स देंगी, जाए फिर ब्रेन चिप्स जो एआई के साथ काम करेंगे, और इस पे तो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो भी चुका है, बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस भी होने वाला है और हो भी चुका है किसी के साथ. ये सब चीजें इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकती हैं, पर क्या इन्हें गुलाम बनाएंगी? पता नहीं. ह्यूमन ऑगमेंटेशन और बायो एनहांसमेंट एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो इंसान की जिंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है. इम्प्लांटेबल टेक, बायोनिक ऑर्गन्स, जेनेटिक अपग्रेड्स के जरिए इंसान अपने नेचुरल लिमिट, अपनी एज से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एथिकल और सोशल चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे. अगर इस टेक्नोलॉजी को केयरफुली यूज किया जाए तो फ्यूचर में इंसान इससे फायदा उठा सकता है, हेल्दी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट हो सकता है, और अगर इसे केयरफुली यूज ना किया गया तो. फिलहाल दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर इजाजत लूंगी. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी. One step to 2020.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Welcome to the world of technology.
1: काश मैं ये आवाज ढंग की और निकालता, पर आप समझ गए ना टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. काफी सस्ता साउंड इफेक्ट मैंने आपको सुनाया है. और क्या करूं. अस्सलाम वालेकुम दुनिया, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड. और आज जो है हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में वापस चलते हैं, जहां पर हर वक्त हर सेकंड कुछ ना कुछ बदलता रहता है. एंड उनमें से मोती चुनकर मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं आज फिर से. तो आप जानते हैं फॉर्मेट बड़ा सिंपल है. सबसे पहले कुछ एप्स या फिर कुछ काम की चीजें इन एप्स दिस वीक, एंड देन गैजेट जो आपके काम आ सकते हैं, और फिर खबरें जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जलजला लाई हुई हैं. तो सबसे पहले शुरू करेंगे विद एप्स दिस वीक, क्योंकि बहुत कुछ है आपको बताने के लिए. इस हफ्ते मैंने सोचा कि आपको वो AI टूल्स बताए जाएं जो आपके लिए इमेज और वीडियो जनरेट कर सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल. मैं पहले बता दूं, दीज एप्स वर्क फ्री एज वेल, बट दे आर बेटर इन देयर पेड वर्जन्स. ओके, ज्यादा महंगे नहीं है. एक ऐप है थोड़ी सी, मगर आई विल एक्सप्लेन. लेट्स गो ऐप दिस वीक. ट्रेंडिंग ऐप्स. तो नंबर वन ऐप जो है ऑन द लिस्ट जो मैं बताना चाहूंगा, AI तो है ही एंड अपना काम करने में बहुत आगे भाई. इसके जरिए अगर आप वीडियोस बनाने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया जो काम कर रही है आपको हैरान कर रही है. आप कुछ वीडियोस देखते हैं AI की और सोचते हैं बाबा इतना आगे निकल के AI. तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप अपने इमेजिनेशन को रन कीजिए इस AI पे एंड यू विल गेट द वीडियो. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको यूज करते करते यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसका नाम है C Dance 2.0 AI. इट लेट्स यू क्रिएट वीडियो एंड इमेज एज वेल. एंड सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आपको कैमरा एंगल से खेलना आता है तो अब बहुत ही बढ़िया है. नहीं आता है तो आपकी कोई भी दिमाग में स्टोरी है, मान लीजिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए आपकी स्टोरी ऐसी है कि एक बंदा जो है वो अपने गांव गया है ट्रेन पकड़ के, या फिर वो यहां से एयरपोर्ट गया है, एयरपोर्ट से जहाज पकड़ के अपने होम टाउन गया है. तो इस पूरे सीन को आप किस तरीके से शूट करेंगे, अगर आप चाहते हैं इसका एक AI वर्जन बनाना, तो आप जो है ये सेम सीन ChatGPT को बताइए, वहां से प्रॉम्प्ट लीजिए, उसे प्रॉम्प्ट मांगिए, वो प्रॉम्प्ट C Dance 2.0 में डालिए, फिर आप देखिए कितना कमाल होता है आपको. क्योंकि एक्सप्लेन करना और सीखना है अगर AI मूवीज कैसे बन सकती हैं, तो दिस कैन बी योर स्टार्टर पैक C Dance 2.0. इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, पर पेड वर्जन में हाईली आपको रिकमेंड करूंगा इफ यू आर मेकिंग वीडियोस और मार्केटिंग वीडियोस ऑन डेली बेसिस एंड आपके काम आ सकता है. सो गो फॉर इट. गोइंग ऑन टू अनदर वन. अब अगला जो है ये, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये बहुत ही फ्लूइडली काम करता है, बहुत फ्लूइड ऐप है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. ये है क्लिंग, KLING, Clink 3.0. इसके बारे में आपने बहुत सारे एड्स अपनी स्क्रीन पर देखे होंगे जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या आपने किसी सुना होगा, आई डोंट नो, मगर क्लिंग AI works amazingly well. ये वैसा काम करता है जैसे किसी जमाने में ग्रॉक किया करता था. मैं ग्रॉक पे भी आऊंगा, उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत सिंपलर वर्जन हुआ करता था ग्रॉक एक टाइम पे, और वैसा ही क्लिंग काम करता है. मगर इसकी वीडियोज में जो क्रिस्प है वो कमाल का यार. इट कैन बी यूज फॉर shorter videos. अगर आपको एक शॉर्ट किसी किस्म का एक मार्केटिंग आइडिया इसको देना है, मार्केटिंग वीडियोस बनाने हैं, तो इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता. आज के ज़माने में जहाँ पे हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आएंगे आपके सामान बेचने के लिए, उस जमाने में यू कैन यूज दिस AI टू मेक अ लॉट ऑफ स्टफ मच मच ईजियर एंड मोर क्रिएटिव. तो अगर आप चाहते हैं कि AI भी इस बहाने सीख लें एंड यू गेट टू जनरेट वीडियोज एज वेल, दिस कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड. सो Clink 3.0 ये AI है, मैक्सिमम आउटपुट देता है. अगर आपको एक पेड ऐप से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, दिस कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एप्स दैट यू हैव यूज्ड. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. अगला, जैसे मैंने कहा मैं ग्रॉक की बात करूंगा, तो ग्रॉक की बात करी मैंने लास्ट में, क्योंकि ग्रॉक बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया इमेजिनेटिव वीडियो बनाता है. ग्रॉक इमेजिन जो फीचर है बहुत कमाल का है. ग्रॉक का कैजुअल वे ऑफ रिप्लाइंग थिंग्स, ग्रॉक का इमेज जनरेशन, Everything is wonderful. एक शिकायत है मेरी, ग्रॉक सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल highly प्रोफेशनल बन के यूज करना चाहते हैं, बिकॉज ग्रॉक चार्जेस अ लॉट ऑफ मनी. ग्रॉक का एक महीने का सब्सक्रिप्शन इज 99 रियाल्स. अभी रिसेंटली उसका एक ऑफर आया था, बट आई थिंक दैट शुड बी लोअर डाउन, क्योंकि ग्रॉक 99 रियाल के बाद भी काफी लिमिटेड चीजें देता है और कहता है कि अब और जनरेट नहीं हो पाएगा. सो इफ दैट इज फिक्स्ड, ग्रॉक बहुत कमाल का है, बट स्टिल आप इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं. अभी भी इसका जो चैट

0: वर्जन है जो चैट करता है वो बहुत अच्छे रिप्लाईज देता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको बाकी जो फॉर्मल रिप्लाईज मिलते हैं थोड़ा कैजुअली रिप्लाई करता है. एंड ग्रॉक इज अमेजिंग विद वीडियो एडिटिंग एज वेल. हाँ वो ऑफकोर्स लिमिटेड है मगर आप एक दिन में कम से कम 3-4 फोटोज तो अपने एडिट कर ही पाएंगे. समटाइम्स पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा आ जाता है, एटलीस्ट ये कहता है क्योंकि पेड वर्जन नहीं है, बट स्टिल काफी काफी काफी काफी अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ फोटो एडिटिंग एंड एवरीथिंग. अगर आप फ्री वर्जन देख रहे हैं, पेड वर्जन सिर्फ उनके लिए जो बिल्कुल डेली वीडियोज बनाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, दिस कैन बी रियली हेल्पफुल. तो ये थी एप्स दिस वीक. अब जरा आगे बढ़ेंगे towards the gadgets.
1: Cool gadgets.
0: My number one on gadget on the list. Number one as in ranking नहीं. सबसे पहले बात करूँगा मैं almond oak backpack की. Almond बादाम oak backpack. ये backpack ऐसा है कि आपने एक मर्तबा खरीद लिया दुनिया भर की छुट्टी. आपको इसके बाद कोई बैग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इस पे पानी फेंकने दें, कोई दिक्कत नहीं है. पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर रुकेगा, एकदम सूख जाएगा. ये बैग इतना कमाल का है. मैं जानता हूं मैं गैजेट में बैग की बात कर रहा हूं मगर मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस. ये बैग सच में बहुत बढ़िया है भाई. आमंड ओक बैकपैक. मैं अभी इंशाल्लाह जब छुट्टी पे जाऊंगा तो मैं यही कतर लेके आने वाला हूँ. एंड आई सजेस्ट कि आप इस बैग पे नजर बनाए रखें. अगर आपके बैग में भरी रहती हैं चीजें और आपको लगता है कहाँ क्या रखा है और आप हाथ डाल डाल के टटोल रहे हैं, दिस कैन बी वन बैग सिंपल सोल्यूशन. एवरीथिंग कैन बी कैप्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल. आई लव्ड इट. तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं अगर आपको खुद एक बार देखना है. ऑफ कोर्स आंखों देखी बात की बात ही कुछ और होती है. तो आमंड ओक बैकपैक एक बार ले लिया आपने, फ्यूचर में बैगों की जरूरत ही नहीं है भाई, देख लो आपने आप. एंड नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. और हाँ सॉरी ये बजट में भी है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगला जो है एक टैक बैग है. ये भी एक बैग है लेकिन एक छोटा वाला बैग है. आपके पास वायर्स हैं, चार्जर्स हैं, बहुत सारी चीजें होंगी. मैग सेफ चार्जर होगा या आपके पास पावर बैंक्स होंगे, यूएसबी होगी. ये सब जो है ना बैग में आप रख देते हैं, फिर आपको हाथ डाल लगे टटोलना पड़ता है अगेन वही चीज. ये छोटे से बैग में एवरीथिंग कैन बी कैप्ट नीटली. देखो क्या है कि वायरों में वायर जब उछल जाते हैं ना, उलझ जाते हैं तो बहुत चिड़ छूटती है और सही करने का मन भी नहीं करता है. ये छोटा सा टैक बैग, इसके अंदर सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आप रख सकते हैं. वायर्स को रखने के लिए अलग से कंपार्टमेंट है जो बहुत बहुत अच्छे से इस छोटे से बैग में बनाया गया है. एंड इसी के साथ यूएसबी के लिए अलग से जगह है, आपका पावर बैंक, आपके चार्जर्स, इवन आपके ग्लासेस. ये बैग आपने ले लिया तो काम हो गया. ये मैं जो बैग्स आपको बताए मैंने दोनों, आमंड ओक बैकपैक और ये, तो ये दोनों के दोनों बहुत कम बजट में है. इस बैग का नाम, जो टैग बैग है, इसका नाम है यू ग्रीन. यू जो अल्फाबेट यू है, फिर ग्रीन GREEN, यू ग्रीन टैग बैग. ये दोनों आप देखिएगा, आई एम प्रीटी श्योर आपको एक बजट में लगेंगे दोनों के दोनों, पहली बात. और दूसरी बात, आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं. तो उन फैंसी बैग्स पर खर्च मत कीजिएगा जिनमें लगे होते हैं चार्जर, लगा दिए चार्ज कर लो. दे आर कॉस्टली एंड दे डोंट वर्क एज वेल दैट as compared to what you think ke wo aisa kaam kare waisa kaam karega. ye dono aap dekh sakte hain. Now moving on to another one. अगला जो गैजेट है वो उन लोगों के लिए जो स्मार्ट वॉचेस को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या सिर्फ महंगी ही वॉचेस काम करती हैं? नो ब्रो, सिर्फ महंगी वॉचेस काम नहीं करती हैं. कुछ वो वॉचेस ऐसी होती हैं जो बजट में होती हैं, स्मार्ट वॉच होती हैं, अच्छा काम करती हैं, लैग्स भी नहीं होते. एक एग्जाम्पल है नथिंग की जो स्मार्ट वॉच है, मैं उसके हक में हूँ. आई थिंक 250-300 रियाल की अभी भी आ जाती है. एंड एक और है जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ, वो है अमेज फिट स्मार्ट वॉच, AMAZ FIT स्मार्ट वॉच. अमेज फिट स्मार्ट वॉच, चीपेस्ट बेस्ट वॉच, अपने ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉच, कोई लैग नहीं, बढ़िया टच स्क्रीन है, बढ़िया फंक्शन करती है एंड वेरी वेरी एक्यूरेट. एंड दिखती भी अच्छी है भाई, सस्ती भी नहीं दिखती है. सो अगर आप एक बजट में एक स्मार्ट वॉच देख रहे हैं, दिस कैन बी अ वेरी गुड आइडिया. अमेज फिट स्मार्ट वॉच, AMAZ FIT अमेज फिट स्मार्ट वॉच, गो फॉर इट. मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बजट पे ये कोई स्मार्ट वॉच देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग. तो आप ये जरूर इस पे नजर बनाए रखें. एंड ये हर जगह मौजूद है वैसे तो. Amazon पे मैंने देखा था, Amazon इंडिया पे अवेलेबल है, Amazon UAE पर भी अवेलेबल होगा और यहाँ भी लोकली आई एम नॉट श्योर. अगर किसी के पास है तो वो आप

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे हया यानी मॉडस्टी के बारे में। हया इस्लाम की बुनियादी और खूबसूरत सिफात में से एक है। ये सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं बल्कि इंसान के रवैये, अल्फाज और सोच में भी नजर आती है। एक बाहया शख्स अपनी जिंदगी के हर पहलू में एहतियात और शराफत का मुजाहरा करता है। वो ना सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल रखता है बल्कि दूसरों की हुदूद का भी एहतराम करता है। आज के दौर में जहाँ बेहयाई आम होती जा रही है, वहीं हया को अपनाना और भी जरूरी हो जाता है। इंसान की शख्सियत को बावकार बनाता है और उसे गलत रास्तों से बचाता है। हया सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन है जो इंसान को अंदर से मजबूत करती है। आज का अमल यह है कि अपने अल्फाज, लिबास और रवैये में हया को शामिल करें और हर सिचुएशन में अपनी हुदूद का ख्याल रखें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश

0: ही सीखता है। आसानी इंसान को सुस्त कर देती है। इसी तरह ज्यादा नरमी और ज्यादा सहूलत सलाहियतों को कमजोर कर देती है। दोस्तों की कहावत हमें ये सिखाती है, समझाती है कि मोहब्बत का मतलब हद से ज्यादा आसानी देना नहीं, बल्कि बच्चे को हिम्मत, जिम्मेदारी और मेहनत का खोगर बनाना है। बिल्कुल जैसे शिकारी परिंदा भूखा रहता है तो उसकी नजर तेज होती है, हिम्मत बढ़ती है और वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। इसी वजह से अरब दो हिकमत भरा मशवरा देते हैं, अत्तैर अल्ली बगीता या सईद ला तअशीह, जिससे शिकार कराना हो उसे सैर न करो और जिस बच्चे को कामयाब बनाना हो उसे मेहनत का आदि बना दो।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं, जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है और परमिटेड एरियाज में भी लीश्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
4: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
1: FM 107.
4: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
2: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुए और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन हो जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि

इंस्पिरेशन, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार कहानियां भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे, बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, आज जब हम मीडिया का नाम लेते हैं तो फौरन स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दिमाग में आ जाते हैं। हर चीज एक क्लिक पर मिलती है। लेकिन अगर हम वक्त की घड़ी को पीछे घुमाएं और 1960 के दौर में चले जाएं, तो उस वक्त कतर अभी तरक्की की मंजिल की तरफ ही बढ़ रहा था। और उस वक्त सबसे पावरफुल और सबसे पहला जरिया जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता था, वो था रेडियो। जी हाँ, कतर का सबसे पहला रेडियो स्टेशन 1968 में ब्रॉडकास्टिंग पर आया। उस वक्त इसे रेडियो कतर कहा जाता था और ये मीडियम वेव फ्रीक्वेंसीज पर ब्रॉडकास्ट होता था। प्रोग्रामिंग सिर्फ चंद घंटों की ही होती थी, लेकिन उसमें अरेबिक म्यूजिक होता था, लोकल न्यूज होती थी और कल्चरल प्रोग्राम्स भी सुनाए जाते थे। और सबसे खास बात ये थी दोस्तों कि बहुत से सुनने वालों के लिए ये पहली दफा था जब उन्होंने एक असली कतरी वॉइस को एयरवेव से सीधा अपने आप से मुखातिब होते सुना। ये एक नए दौर का आगाज था, एक आवाज जो दिलों को जोड़ रही थी और कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही थी। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी हवाले से, कतर का पहला रेडियो स्टेशन कतर रेडियो। दोस्तों, कतर की एयरवेव्स पर जो सबसे पहली आवाज गूंजी, वो उन्हीं पायनियरिंग प्रेजेंटर्स और टेक्नीशियंस की थी जो दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि रेडियो सिर्फ एक ख्याल ना रहे बल्कि हकीकत बन जाए। और ये सब कुछ मैनुअली ही किया जाता था। जी हाँ, वो न्यूज बुलेटिन रिकॉर्ड करते, कल्चरल शोज और रिलीजियस प्रोग्राम तैयार करते, और वो भी बिना उस टेक्नोलॉजी के जो आज के दौर में हम बिना किसी परेशानी के यूज कर लेते हैं। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, रेडियो पूरी कम्युनिटी के लिए एक लाइफलाइन बन गया था। जरूरी ऐलानात सुनाए जाते, पब्लिक सर्विस की अपडेट्स दी जाती, फिशरमैन के लिए वेदर रिपोर्ट्स आती और कभी कभी लीडर्स की स्पीचेस भी सुनाई देती। एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसके जरिए पूरे कतर की आवाज एक साथ जुड़ी हुई थी। कतर रेडियो ने सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, बल्कि लोगों को एक नई दुनिया से कनेक्ट किया, एक ऐसी दुनिया जहां आवाज ही आवाम को जोड़ने का पुल था। दोस्तों, ये रेडियो स्टेशन जो पहली दफा ब्रॉडकास्टिंग के लिए जून 25, 1968 को हवाओं पर आया, असल में एक नई अरब वॉइस का आगाज था। शुरू में इसका ट्रांसमिशन सिर्फ चंद घंटों के लिए होता था, लेकिन वक्त के साथ ये धीरे धीरे बढ़ता गया और आज ये 24 घंटे सातों दिन ब्रॉडकास्टर बन चुका है। इस लगातार सफर के दौरान स्टेशन ने अपने लिसनर्स के साथ एक खास रिश्ता बनाया और हर नए मॉडर्नाइजेशन प्लान के साथ हर डिपार्टमेंट और स्टाफ ने मिलकर प्रोग्रेस की। सब कुछ मुमकिन हुआ अनलिमिटेड एम्बिशन और बेमिसाल डिटर्मिनेशन के साथ। यानी ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि एक मिशन है जो आवाजों को एक साथ जोड़ता रहा और हर नए दौर के साथ अपनी पहचान और भी मजबूत करता गया। दोस्तों, पिछले चंद डिकेड्स में कतर रेडियो ने सिर्फ कतर की आवाज को दुनिया तक नहीं पहुंचाया, बल्कि एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म भी बन गया जो नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत करने, लोगों में बिलोंगिंग का एहसास बढ़ाने और कतरी सोसाइटी की असली वैल्यूज को हाईलाइट करने में मददगार साबित हुआ। शुरू से ही ये स्टेशन मुल्क की खिदमत में हर तरह के प्रोग्राम्स के जरिए सेंट्रल रोल अदा करता रहा, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, कल्चरल सेलिब्रेशंस या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। कतर रेडियो हमेशा साथ रहा,
लोगों को अवेयर किया और नेशनल आईडेंटिटी

आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया। दोस्तों, ये स्टेशन सिर्फ आवाज नहीं बल्कि कतर की अचीवमेंट्स, इवेंट्स और इनिशिएटिव्स का गवाह भी है। चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो या इंटरनेशनल अरेनाज में, हर इम्पोर्टेंट स्टेज पर ये स्टेशन लोगों के साथ रहा। उनके डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लम्हों में उनका हम सफर बना रहा। और सबसे खास बात, ये हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म बना रहा, लॉयल टू द मिशन ऑफ कॉन्शियस एंड कमिटेड जर्नलिज्म। कतर रेडियो ने आवाजों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि आवाजों के जरिए एक पूरी कौम को जोड़ने की एक पहचान दी। दोस्तों, शुरू से ही कतर रेडियो ने कमिटमेंट की है कि हर तरह के लिसनर्स के लिए डाइवर्स कंटेंट प्रोवाइड करे जो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही तरी डायलेक्ट को भी शामिल करता है ताकि आवाज और भी ज्यादा अपनी और करीबी महसूस हो। कतर रेडियो ने सोसाइटल कोहिजन को भी मजबूत बनाने में किरदार अदा किया और सिटीजन्स तक बहुत से इम्पोर्टेंट मैसेजेस पहुंचाए, चाहे वो एजुकेशनल हो, हेल्थ रिलेटेड हो या एनवायरमेंटल प्रोग्राम के जरिए अवेयरनेस। और यही नहीं, स्टेशन ने ब्रॉडर अरब ऑडियंस को भी टारगेट किया, अरब नेशंस के दरमियान कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को प्रमोट किया, न्यूज कवरेज को भी काफी एक्सपेंड किया गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स और कल्चर के हर पहलू को कवर किया। बहुत से न्यूज प्रोग्राम लॉन्च किए गए, बुलेटिन्स, टॉक शोज और एनालिटिकल सेगमेंट्स तक। कतर रेडियो ने अरब और इंटरनेशनल रेडियो स्टेशंस के साथ कोलैबोरेशन भी किया, न्यूज और प्रोग्राम्स के एक्सचेंज किए, रीजनल और इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंसेज और इवेंट्स में हिस्सा लिया और अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज भी ऑर्गेनाइज किए। साथ ही गल्फ और अरब वर्ल्ड के सिस्टरली और फ्रेंडली रेडियो स्टेशंस के साथ जॉइंट मीटिंग्स होस्ट की ताकि हर तरह के प्रेसिंग इश्यूज पर डिस्कशन हो सके। दोस्तों, ड्रामा के रैम में भी कतर रेडियो ने अपना अलग ही किरदार अदा किया है। बहुत से रेडियो प्लेज और सीरीज प्रोड्यूस किए गए जो ऑडियंस ने बहुत पसंद किए। रेडियो ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था बल्कि अवेयरनेस और एजुकेशन को स्प्रेड करने में भी बहुत अहम साबित हुआ। ये नेशनल यूनिटी और सोशल कोहेजन को मजबूत करने में भी मददगार साबित हुआ। और ये सिर्फ मॉडर्न कंटेंट तक ही लिमिटेड नहीं रहा, कतर रेडियो ने फोक हेरिटेज को प्रिजर्व और रिवाइव करने में भी अपना हिस्सा डाला। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, चैंट्स और फोक टेल्स को रिकॉर्ड और ब्रॉडकास्ट किया। साथ ही कतरी आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस को सपोर्ट दिया गया, उनके काम को शोकेस किया गया और उन्हें वाइडर ऑडियंस तक इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी कतर रेडियो ने ड्रामा और आर्ट के जरिए सिर्फ लोगों को एंटरटेन नहीं किया बल्कि एक कल्चरल और सोशल ब्रिज भी बनाया जो आवाजों के जरिए लोगों को जोड़ता रहा। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। तो सामाइन, कतर रेडियो ने अपनी पुरानी कामयाबी और मीडिया अचीवमेंट्स पर कभी रुक कर आराम नहीं किया, बल्कि ये हमेशा एक कंटिन्यूस जर्नी पर है, डेवलपमेंट, ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर, ताकि मीडिया और टेक्नोलॉजी के हर नए स्टेप्स के साथ पेस बनाए रखे और अपनी पोजीशन एक लीडिंग मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर मजबूत करे। जैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर आया, कतर रेडियो ने इस इवोल्यूशन को बहुत तेजी से अपनाया। स्टेशन ने अपने तमाम टेक्निकल सिस्टम्स को अपग्रेड किया, लेटेस्ट रेडियो प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज शामिल की। इसमें स्टूडियोज का मॉडर्नाइजेशन, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना और ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना शामिल था। और जब न्यू मिलेनियम शुरू हुआ, कतर रेडियो ने एक बहुत बड़ा कदम फ्यूचर की तरफ उठाया, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की तरफ ट्रांजिशन की। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं था, बल्कि एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन था इस बात का कि रेडियो सर्विसेज लोगों तक कैसे पहुंचती हैं और स्टेशन अपने ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ख्वातीनों हज़रात, ये जर्नी सिर्फ टेक्निकल अपग्रेड्स की नहीं, बल्कि कतर रेडियो के हर लिसनर के साथ एक नई कनेक्शन और इंटरेक्शन का सफर भी है। जैसे जैसे इंटरनेट ने अपनी रीच बढ़ाई और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने तेज तरक्की की, कतर रेडियो ने समझा कि डिजिटल प्रेजेंस कितनी जरूरी है। इसलिए एक सोफेस्टिकेटेड वेबसाइट लॉन्च की गई, जहां लिसनर्स लाइव कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, प्रोग्राम आर्काइव्स एक्सेस कर सकते हैं और कंटेंट के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरते सबसे अहम कदम था स्मार्ट एप्लीकेशंस का लॉन्च करना मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स के लिए। इस मूव के जरिए कतर रेडियो ने अपनी ऑडियंस को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया। अब कोई भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट या मोबाइल एप्स के जरिए कतर रेडियो के प्रोग्राम्स सुन सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं था, बल्कि एक नए एरा का आगाज था, जहां आवाज हर जगह पहुंच सकती थी और हर लिसनर कतर रेडियो का हिस्सा बन सकता था। तो दोस्तों, कतर रेडियो ने हमेशा अपने एम्बिशियस प्लान्स के जरिए कतर की आवाज को सिर्फ मुल्क तक ही नहीं, बल्कि नॉन अरेबिक स्पीकर्स तक भी पहुंचाने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में 1971 में इंग्लिश लैंग्वेज सर्विस लॉन्च की गई, जहां शुरू में ये सिर्फ एक घंटे के लिए ब्रॉडकास्ट होती थी, लेकिन 2004 तक ये 19 घंटे तक बढ़ गई। वहीं 1980 में उर्दू सर्विस शुरू की गई थी, जो कतर और वाइडर गल्फ में उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए बहुत पसंदीदा साबित हुई, जो शुरू में सिर्फ एक घंटे के डेली ब्रॉडकास्ट पर थी, लेकिन 1989 तक ये 3 घंटे तक बढ़ा दी गई। और दोस्तों, फिर 1985 में एक यूनिक फ्रेंच लैंग्वेज सर्विस लॉन्च हुई, जो अपने वक्त में पूरे रीजन में अनमैच्ड थी और 3 घंटे डेली मीडियम वेव पर ब्रॉडकास्ट होती थी। वक्त गुजरा और 1992 में कतर रेडियो ने कुरान रेडियो सर्विस शुरू की, जो कुरानिक रिसाइटेशन, रिलीजियस स्टडीज, हदीस और इंटरप्रिटिव टेक्स्ट पर फोकस करती थी और कंटेम्पररी इश्यूज को भी रिलीजियस लेंस के जरिए एड्रेस करती थी। इस सर्विस को पब्लिक से बहुत वाइड अप्रूवल मिला। और सबसे रिसेंट 2022 में कतर रेडियो ने स्पेनिश रेडियो स्टेशन लॉन्च किया, ताकि और भी ग्लोबल ऑडियंस तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। ये सिर्फ लैंग्वेजेस का एडिशन नहीं था, बल्कि कतर रेडियो के विजन का हिस्सा था, जिसमें डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और ग्लोबल रीच को सबसे अहम समझा गया। तो दोस्तों, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि रेडियो अपनी यूनिक चार्म और पावरफुल प्रेजेंस हमेशा बरकरार रखेगा, अपनी नर्म और फैमिलियर ह्यूमन वॉइसेस के साथ। ये ऐसे दिलों और दिमाग को छूता है जो कोई भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए। जहां आज के सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की पावर कम नहीं हुई, ये लाइव, लोकल और पर्सनल है। قطر ریڈیو نے اس راستے کی بنیاد رکھی جہاں آج میڈیا ایکو سسٹم لا تعداد لوگوں کو انفارم اور یونائٹ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ پہلی ریڈیو براڈکاسٹ ایک چیریشڈ میموری ہے ایک یادگار لمحہ جو کنیکشن اور پروگریس کا احساس دلاتا ہے تو دوستوں آج کا سفر یہیں تک تھا آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ وقت گزارا اور شو انجوائے کیا اگلے پروگرام میں ہم ایک نئی کہانی ایک نیا ٹاپک لے کر آئیں گے جس میں آپ کو ملیں گی اور بھی ایکسائٹنگ اپڈیٹس اور سٹوریز تو ہمارے ساتھ ضرور جڑیے دوستوں اسی کے ساتھ قطر فرسٹ پروگرام سے ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز انصاری اور سرور مرزا کو اجازت دیجیے دیکھتے اور سنتے رہیے FM 107
0: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر دل سے دیسی
1: Absolute Cinema
3: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں بٹ ڈونٹ وری میں ہوں نا بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر فرائیڈے شام 7:15 RJ فضیل کے ساتھ تاکہ ایوری مووی ایکسپیرینس بنے ایبسلیوٹ سینما
2: دوستوں گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ہونا ایک اہم روڈ سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے ہر تھوڑے وقت کے بعد یہ چیک کریں کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں اور گاڑی میں اسے ایسی جگہ رکھیے جہاں ایمرجنسی کے وقت آسانی سے مل سکے اور ساتھ ہی اس کے استعمال کرنے کو بھی یقینی بنائیں یاد رکھیے یہ چھوٹی سی تیاری کسی ایمرجنسی میں جان بچا سکتی ہے فائر سیفٹی کو اگنور نہ کریں خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے گاڑی میں ایک فائر ایکسٹنگوشر

0: होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक सी बात करेंगे सेहत के हवाले से, कि जहां बहुत सी जो मालूमात हैं वो सेहत के हवाले से आप तक पहुंचाते हैं, तो आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही अहम है कि फूड लेबल्स को समझना, यानी खुराक के पैकेट पर तो गजाई अज्जा दर्ज होते हैं या उनकी मालूमात हैं, उनको सही तरीके से पढ़ना और समझना। लिसनर्स, आजकल हम में से अक्सर अफराद जो पैकशुदा जो खुराक है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिस्किट हैं, जूस हैं, सीरियल्स हैं, दही है, चिप्स हैं और इस तरह से और बहुत सारी अशिया। लेकिन क्या हम उनके पैकेट्स पर लिखी मालूमात को पढ़ते हैं? अगर पढ़ते भी हैं तो क्या इन्हें सही तौर पर समझते हैं? फूड लेबल दरअसल हमें ये बताता है कि हम जो चीज़ खाने जा रहे हैं उसमें कितनी तवानाई है, कितनी चिकनाई है, नमक कितना है, शुगर कितनी है और इसके अलावा जो और गजाई अज्जा हैं वो मौजूद हैं या नहीं हैं। इन मालूमात को समझकर हम ज़्यादा सेहतमंद इंतखाब कर सकते हैं। सबसे पहले लेबल पर मौजूद सर्विंग साइज जो है वो देखना ज़रूरी है कि जो एक बार खाने की मकदार है। बहुत सारे अफराद गजाई मालूमात तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो मालूमात कितनी मकदार के लिए दी गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पैकेट में दो सर्विंग हैं तो अब हम पूरा पैकेट खा लेते हैं तो दरअसल दुगनी कैलोरीज और गजाई अज्जा जो हैं वो हम हासिल कर रहे होते हैं। इसके बाद कैलोरीज पर नज़र डालिए तो कैलोरीज जिस्म की तवानाई जो फ्राहम करती हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज वज़न बढ़ने का सबब भी बन सकती हैं। और अगर आप वज़न को बैलेंस या मतवाजन रखना चाहते हैं तो कैलोरीज की मकदार पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं फैट्स की। लेबल पर कुल चिकनाई के साथ साथ तो सैचुरेटेड फैट्स या फिर ट्रांस फैट्स भी दर्ज होती है। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं और ट्रांस फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: क्रिकेट हो
3: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे दैट्स फोर रन
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की
2: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइंस का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: उम्मत मोहम्मदिया के लिए उनकी सीरत में कई सबक हैं। सबसे पहला सबक ये है कि इबादत और जिम्मेदारी को एक साथ निभाया जा सकता है। आज के दौर में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम इबादत पे ज्यादा वक्त लगाएं तो दुनियावी जिम्मेदारियां मुतासर होंगी, या अगर दुनियावी कामों में ज्यादा मसरूफ हो जाएं तो इबादत नहीं हो सकेगी। हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद नहीं बल्कि एक दूसरे को सहारा देती हैं। उनका रोज़ा उनके अकल को ताकत देता था और उनकी रात की इबादत दिन के फैसलों को नूरानी बनाती थी। दूसरा सबक ये है कि सब्र कामयाबी की असल कुंजी है। इब्लीस ने उन्हें बार बार आजमाइश में डाला लेकिन उन्होंने सब्र को नहीं छोड़ा। यही कैफियत आज के मुसलमान के लिए भी ज़रूरी है। दुनियावी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां और शैतानी वसवसे हर वक्त साथ रहते हैं। अगर इंसान सब्र को लेकर और अपने मामूलात खैर पर कायम रहे तो शैतान कभी कामयाब नहीं हो सकता। तीसरा सबक यह है कि अदल किसी भी माशरे की बुनियाद है। हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम की अदालत में कोई छोटा या बड़ा नहीं था, सब बराबर थे। ये तालीम आज के माशरे में सबसे ज्यादा जरूरी है। बदकिस्मती से आज इंसाफ अक्सर दौलत या ताकत के ताबे हो चुका है। हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम की सीरत हमें याद दिलाती है कि हकीकी अदल वही है जो हर हाल में बराबरी के साथ किया जाए। चौथा सबक यह है कि गुस्से पे काबू पाना ईमान की अलामत है। इब्लीस ने बार बार उनका सब्र तोड़ने की कोशिश की ताकि वो गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर बैठें जो उनकी अजमत को कम कर दे, लेकिन हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि असल बहादुरी तलवार चलाने में नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। यही तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी कि ताकतवर वो नहीं जो दूसरे को ज़मीन पर

0: के लिए ये औसाफ सब्र और नेकी थे। गोया अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ यही दो औसाफ पैदा कर ले तो अल्लाह के नज़दीक बुलंद मर्तबा हासिल कर सकता है। क्यों? हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैह सलाम की शख्सियत एक ऐसे चराग की मानंद है जो सब्र, अदल और नेकी की रोशनी से चलता है। वो चाहे नबी थे या वली, उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अगर हम उनके मामूलात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ इबादत में इस्तकामत इख्तियार करें, अदल कायम करें और सब्र पर डटे रहें, तो ना सिर्फ हमारी इनफरादी जिंदगी बेहतर होगी बल्कि हमारा माशरा भी रोशन हो जाएगा। हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहि सलाम की जिंदगी के हालात अगरचे तफसील के साथ कुरान या सही अहादीस में नहीं मिलते, लेकिन मुख्तलिफ तफसीरी और तारीखी रवायात में उनकी सीरत की झलकियाँ ज़रूर मिलती हैं। इन रवायात से ये बात सामने आती है कि वो ऐसे दौर में रहे जब बनी इसराइल अंदरूनी कमजोरियों और बैरूनी दुश्मनों के दबाव में मुब्तला थे। इस माहौल में एक ऐसी शख्सियत का उभरना जो दिन रात इबादत गुजार भी हो और साथ साथ अदल व इंसाफ के साथ कफसावत भी करे, ये अपने आप में एक गैर मामूली बात थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अंबिया और अख्यार में शुमार किया। कुछ मौरखीन ने ये राय दी कि हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहि सलाम दरअसल वही हिज़्कियेल हैं जिनका जिक्र बाइबल में है। हिज़्कियेल को ये एहसास हासिल है कि उन्होंने बाबुल की असीरी के ज़माने में बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें उम्मीद दिलाई। वो एक अजीम रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहि सलाम और हिज़्कियेल अलैहि सलाम एक ही शख्सियत हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बनी इसराइल को उनके बदतरीन बहरान के दौर में अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जो किया। लेकिन चूंकि कुरान और हदीस ने इस बात की तस्दीक नहीं की, इसलिए हमें ज़्यादा जोर इसी बात पर देना चाहिए जिस पर सबका इत्तेफाक है कि वो सब्र, इबादत और अदल की अलामत थे। उनकी वफात के बारे में भी मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज़ मुरखीन के मुताबिक उनका मज़ार इराक में है, कुछ ने शाम के इलाके दमिश्क के करीब बताया और बाज़ ने कहा कि वो फ़लस्तीन में मदफ़ून है। लेकिन इन सब रिवायात में कतई तौर पे किसी एक जगह का तायुन नहीं किया जा सकता। यही हाल उनकी उम्र के बारे में भी है। कोई रिवायत उन्हें 100 साल का बताती है तो कोई इससे कुछ का। असल हकीकत यही है कि कुरान ने उनके मकाम को उनके औसाफ के ज़रिए महफूज किया, ना कि तारीख के ज़ाहरी पहलुओं के ज़रिए। लिसनर्स, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है। ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है। हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए

0: लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। यह सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में
2: MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में
1: वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
2: कुछ मिलेगा यहाँ।
1: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सबसे नुमाया बात उनका अहद है। रिवायात में आता है कि उन्होंने एक बादशाह के सामने ये वादा किया कि वो दिन में रोजा रखेंगे और रात को इबादत करेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे और लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। यही वादा उनकी जिंदगी का नज़्बुलैन बन गया और उसी पर वो आखिरी दम तक कायम रहे। इस अहद पर साबित कदम रहना ही उनके लिए लकब का सबब बना। ये हकीकत आज के दौर के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है कि असल कामयाबी अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करने और फिर उन पर कायम रहने में है। उम्मत-ए-मुहम्मदिया के लिए उनकी सीरत के कई अमली पहलू हैं। सबसे पहला सबक यही है कि सब्र के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। आज का मुसलमान बेसब्री और जल्दबाजी में उबतला है। ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि सब्र ना सिर्फ इबादत में बल्कि मामलाते दुनिया में भी जरूरी है। अगर काजी या हाकिम सब्र ना करे तो इंसाफ मुमकिन नहीं। अगर इबादत गुजार सब्र ना करे तो वह तसलसल से इबादत नहीं कर सकता। दूसरा सबक यह है कि इबादत और जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना ईमान की तकमील करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दीन सिर्फ इबादत का नाम है, लेकिन ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम की जिंदगी बताती है कि इबादत और अदल दोनों को साथ लेकर चलना असल कमाल है। उन्होंने दिन को लोगों के मसाइल हल किए और रात को अल्लाह की हुजूर खड़े हुए। यही तवाज़ुन एक मिसाली माशरा कायम कर सकता है। तीसरा सबक यह है कि अदल इंसाफ माशरती सुकून की बुनियाद है। ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम की अदालत में ताकतवर और कमजोर सब बराबर थे। आज के माशरे में सबसे बड़ी कमी यही है कि इंसाफ दौलत और ताकत के ताबे हो गया है। अगर हम उनकी सीरत से सबक लें तो हमें अपनी अदालती और समाजी निज़ाम में अदल कायम करना होगा। चौथा सबक यह है कि वादे पे कायम रहना ईमान की अलामत है। हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का आगाज ही एक वादे से किया और फिर उस पर आखिर दम तक डटे रहे। आज के दौर में वादा करना आसान लेकिन उस पर कायम रहना मुश्किल है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असल ईमान उस वक्त जाहिर होता है जब बंदा आजमाइश के बावजूद अपने कौल पे कायम रहे। पांचवा सबक यह है कि गुस्से पे काबू पाना असल बहादुरी है। इबलीस ने बार बार उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की लेकिन वो अपने अहद पर कायम रहे। और ये तालीम हमें अपने घरों, दफातर और माशरती जिंदगी में चाहिए, क्योंकि ज्यादातर फसाद गुस्से और बेकाबू रवैये से जन्म लेते हैं। हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम की सीरत का खुलासा यही है कि वो सब्र, इबादत, अदल और वादे की पासदारी के पैकर थे। उनका जिक्र अगरचे मुख्तसर है लेकिन वो ही मुख्तसर जिक्र हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह के नज़दीक असल मयार लंबे नज़्म नामे या अजीम कारनामे नहीं बल्कि चंद बुनियादी और साफ हैं। अगर कोई इंसान सब्र करे, इबादत में इस्तकामत इख्तियार करे, अदल कायम करे और वादे पे कायम रहे तो अल्लाह के नज़दीक ज़ुल्फ़िकर यानी जिम्मेदारी निभाने वाला कहलाने का मुस्तहिक बन सकता है। यूँ हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ना सिर्फ उनके अपने दौर के लिए एक रोशनी थी बल्कि आज भी हर उस इंसान के लिए नमूना है जो आजमाइशों में सब्र करना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना चाहता है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता है। लिसनर्स, हज़रत ज़ुल्फ़िकर अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और कफालत अल्लाह की रजा का जरिया है। अल्लाह हमें उनकी सुन्नत पे चलने की तौफीक दे। द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स की ये एपिसोड यहाँ खत्म होती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे नबी की कहानी जो दरिया नील में पले, फिरौन की गोद में बढ़े और अल्लाह की कुदरत से समंदर को चीर दिया। जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دلچسپ اور معجزاتی زندگی. یہ سب جاننے کے لیے نیکسٹ ویک کی ایپیسوڈ ضرور سنیے گا. اور آج تک کے لیے اتنا ہی تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
3: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ. حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
4: دوستوں, گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفنس, ایمبولینسز, فائر انجنز اور پولیس کی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ دینا چاہیے. ان گاڑیوں کے ڈرائیورز ملٹی ٹون سائرنز اور مخصوص لائٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں ارجنٹ ایمرجنسی ہے, اور اس ایمرجنسی کال کے دوران ان گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے سے یا ایمرجنسی وہیکلز کے پیچھے 50 meters سے کم فاصلہ بنائے رکھنے سے آپ کو ٹریفک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈرائیونگ کے وقت سترک رہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایف ایم 107 آپ سب کی خوشگوار زندگی کا خواہش مند ہے.
5: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں. اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے.
6: سنیے ایمبیسڈر آف دا مان آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
7: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
8: دل سے.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ओनली ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन लाइफस्टाइल हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट को बेटर बनाती हैं। साथियों, आज का टॉपिक है इको स्विच इन रमदान, यानी कि फूड वेस्ट कंट्रोल। रमदान साथियों एक ऐसा मुबारक महीना है जहां रूहानियत, जेनरोसिटी और शेयरिंग इज केयरिंग पर फोकस किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी महीने में ग्लोबली फूड वेस्ट भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली इफ्तार बुफेज और मैं कह लूं कि ओवर प्रिपरेशन की वजह से ये मसला होता ही होता है। साथियों, रिसर्च के मुताबिक रमदान के दौरान कई मुसलमान ममालिक में फूड वेस्ट 20-50% तक बढ़ जाता है, जो बिल्कुल इस महीने की इंटेंशन के ऑपोजिट है, क्योंकि रमदान का असली मैसेज है मॉडरेशन और ग्रेटिट्यूड। जरा सोचिए ना साथियों, एक अफ्तार टेबल है जहां जो है खजूरें, समोसे, पकोड़े, जूस, चावल, डेजर्ट्स, बहुत कुछ पड़ा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। सब लोग पहले थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, लेकिन एंड में कई डिशेस अनटच्ड रह जाती हैं, और क्या होता है वो सीधा या तो फिर फ्रिज में चली जाती हैं या तो फिर कभी कभी डस्टबिन में भी जाती हैं। साथियों, इको स्विच पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम हॉस्पिटैलिटी को ओवर कंजम्पशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है ना, एक फैमिली अगर सिर्फ 2-3 एक्स्ट्रा डिशेस कम बना ले तो वो इजिली 30% खाने का वेस्ट रिड्यूस कर सकती है विदाउट अफेक्टिंग इफ्तार प्राइसेस। अच्छा, मजे की बात ये है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट होता है, और रमदान के महीने में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में वेस्ट स्पाइक नोटिस किया जाता है। साथियों, एक एवरेज इफ्तार बुफे में प्लेट वेस्ट 30% तक होता है, स्पेशली व्हेन वैरायटी इज टू मच। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर सिर्फ 25% हाउसहोल्ड रमदान में फूड वेस्ट कंट्रोल कर लें तो हम कह सकते हैं कि भाई मिलियंस ऑफ मील्स सेव किए जा सकते हैं, वो भी ग्लोबली। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक रोटी या ब्रेड को वेस्ट करना सिर्फ फूड वेस्ट नहीं, बल्कि उस प्रोडक्शन में यूज होने वाली जो पानी, एनर्जी और लेबर है उसे भी वेस्ट करना है। अब आप कहेंगे सफा, हाउ इको स्विच हेल्प्स? तो भाई, रमदान इज इक्वल टू माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस। साथियों, इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, रमदान को सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी बनाएं। जब हम फूड प्लानिंग और पोषण कंट्रोल अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ वेस्ट नहीं कम करते साथियों, बल्कि ग्रैटिट्यूड भी इंक्रीज करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जब लोग प्लेट साइज कम कर देते हैं तो उनका फूड वेस्ट ऑटोमेटिकली 20-25% तक रिड्यूस हो जाता है। मतलब सिर्फ प्लेट का साइज चेंज करने से बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। जरा सोचिए, रमदान के स्टार्ट में आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई पूरे महीने का स्टॉक ले लेना है। रिजल्ट क्या होता है, फ्रिज फुल हो जाता है लेकिन आधे ही आइटम्स यूज हो पाते हैं, या इफ्तार के लिए 6-5 डिशेस आप प्लान कर लेते हैं लेकिन फैमिली तो आपकी सिर्फ 3-2 डिशेस में ही पूरी हो जाती है, वो खाना ही पूरा खा नहीं पाती। देखिए, इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि रमदान में प्लानिंग और सिंप्लिसिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कम डिशेस लेकिन प्रॉपरली कंज्यूम होना ज्यादा सस्टेनेबल और मीनिंगफुल होता है। इसी के साथ अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं रमदान को लेकर। साथियों, पहली बात तो ये कि भाई देखें, अफ्तार प्लानिंग सिंपल रखें, 2-3 मेन डिशेस इनफ होती हैं। दूसरा, छोटी प्लेट्स यूज करें ताकि ओवर सर्विंग अवॉइड हो सके। जितनी बड़ी प्लेट होती है हमारा बस चले तो हम तो भाई पूरी पूरी प्लेट ही भर लें और फिर होता ही है कि बाकी का खाना बच जाता है। तीसरी चीज ये कि जो बचा हुआ खाना होता है उसी से अगले दिन की जो थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएं और अगले दिन के मील्स उसी को रीयूज करके प्रिपेयर करने की कोशिश करें। जैसे आपने खाली प्लेन चावलों से कोई आपने चाइनीज राइस बना लिए, या उन्हीं राइस के साथ आपने कोई साथ में करी कर दी, या आपने कोई रैप कर लिया। चौथी चीज ये कि बुफे स्टाइल सर्विंग अवॉइड करें, घर पर इंडिविजुअल सर्विंग्स प्रेफर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड डोनेशन या शेयरिंग कल्चर अडॉप्ट करें, बचे हुए खाने को वेस्ट करने के बजाय डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि रमदान का कोर प्रिंसिपल मॉडरेशन है और वही सस्टेनेबिलिटी का भी कोर है। जब हम कम लेकिन इनफ माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो हम एनवायरनमेंट और अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज दोनों को अलाइन कर देते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हाउसहोल्ड्स रमदान में ना, जो घर रमदान में अपने खाने की प्लानिंग कर लेते हैं ना पहले से, उनका खाने का जो वेस्टेज है वो बाकी महीनों से और भी ज्यादा कम हो जाता है। मतलब ये हैबिट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करती है। साथियों, आखिर में इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि रमदान का असल मकसद ज्यादा बनाना नहीं होता, बल्कि बेहतर समझना है। हर प्लेट जो वेस्ट होती है वो सिर्फ खाना नहीं होती, बल्कि रिसोर्सेज और नेमतों का भी लॉस होता है। तो इस रमदान एक छोटा सा इको स्विच जरूर करें, क्या मैं इतना ही बना सकता हूँ जितना मैं एक्चुअली में कंज्यूम करूंगा। इसी के साथ साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर इफ्तार सिर्फ मील नहीं बल्कि एक माइंडफुल चॉइस होती है। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे हया यानी मॉडस्टी के बारे में। हया इस्लाम की बुनियादी और खूबसूरत सिफात में से एक है। ये सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं बल्कि इंसान के रवैये, अल्फाज और सोच में भी नजर आती है। एक बाहया शख्स अपनी जिंदगी के हर पहलू में एहतियात और शराफत का मुजाहरा करता है। वो ना सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल रखता है बल्कि दूसरों की हुदूद का भी एहतराम करता है। आज के दौर में जहाँ बेहयाई आम होती जा रही है, वहीं हया को अपनाना और भी जरूरी हो जाता है। ये इंसान की शख्सियत को बावकार बनाता है और उसे गलत रास्तों से बचाता है। हया सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन है जो इंसान को अंदर से मजबूत करती है। आज का अमल यह है कि अपने अल्फाज, लिबास और रवैये में हया को शामिल करें और हर सिचुएशन में अपनी हुदूद का ख्याल रखें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107।

0: आरजी सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन ऑगमेंटेशन एंड बायो एनहांसमेंट की। ह्यूमन ऑगमेंटेशन और बायो एनहांसमेंट एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जहाँ इंसान अपनी नेचुरल एबिलिटीज को टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव करता है। इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ अपनी नेचुरल लिमिट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा बल्कि टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस और हेल्थ को अपग्रेड कर सकेगा। आज के दौर में आज के दौर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आज के दौर में ना इस कॉन्सेप्ट को समझना हल्का सा चैलेंजिंग जरूर लगता है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। आज के दौर में भी इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है लेकिन फ्यूचर में ये और एडवांस्ड होकर इंसान और जो मशीन है उसके बीच डिफरेंसेस को और कम कर देगा। ह्यूमन ऑगमेंटेशन ये है क्या, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ह्यूमन ऑगमेंटेशन का मतलब है इंसानी बॉडी को टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हांस करना। ये इन्हांसमेंट फिजिकली मेंटली और सेंसेस को भी करना है। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल लिम्स, ब्रेन इम्प्लांट्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, ये सब चीजें इंसान को स्ट्रॉन्गर स्मार्टर बनाती हैं। अब मैं बात करूंगी इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी वो डिवाइस है जो इंसान

इंसानी बॉडी के अंदर लगाई जाती है ब्रेन इम्प्लांट्स शायद आपने वर्ड सुना है पहले से या BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो

इसको हम कह सकते हैं BCI या इसको हम कह सकते हैं implantable technology के थ्रू होना लोग बिना बोले कम्युनिकेट कर सकते हैं आज ये सुनकर थोड़ा सा हम शायद उसे उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है बट फ्यूचर में ऐसा ही होगा जैसे पेसमेकर या फिर और भी इम्प्लांट्स हैं जो हियरिंग और हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं फ्यूचर में ये इम्प्लांट्स और ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे मेमोरी इम्प्रूव करेंगे लर्निंग को फास्ट कर देंगे डिजीजेस को पहले ही डिटेक्ट कर देंगे वहीं पर कुछ और भी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी वो उस तरह के जैसे बायोनिक ऑर्गन्स वो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होंगे जो नेचुरल ऑर्गन्स की जगह ले सकते हैं जैसे बायोनिक लिम्स आजकल एडवांस प्रोस्थेटिक आर्म्स और लेग्स अवेलेबल है मार्केट में जो मसल्स या फिर ब्रेन सिग्नल से कंट्रोल्ड होते हैं बायोनिक लिम्स जो है वो कहीं ना कहीं नेचुरल लिम्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इंसान सुपर स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है डिसेबल्ड लोग नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पे फिलहाल मेंशन करना नहीं चाहती हूँ और हाँ एक और चीज आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बायो हाइब्रिड ऑर्गन्स जो हैं वो आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन हैं ये ऑर्गन फ्यूचर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल हार्ट या फिर लैब ग्रोन किडनीज इससे लोगों की जिंदगी लंबी और हेल्दी हो सकती है वहीं अगर मैं बात करूं तो एक्सोस्केलेटन्स एक रोबोटिक सूट है ये बेसिकली आने वाले टाइम में बड़ा कॉमन होगा ये सूट जो इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा वर्कर्स हैवी वेट आसानी से उठा सकेंगे सोल्जर्स स्ट्रॉन्गर और फास्टर हो सकेंगे पेशेंट्स जो है वो रिहैब में बेहतर वॉक कर सकेंगे फ्यूचर में ये सूट हर जगह हर एक को सूट करेगा और अवेलेबल भी होगा वहीं एक और चीज जो हमें और आपको चौंकाएगी वो है कॉग्निटिव एनहांसमेंट्स कॉग्निटिव ऑगमेंटेशन का मतलब है सोचने की आपकी जो ताकत है जो एबिलिटी है जो क्षमता है उसे भी इम्प्रूव करना ये टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव की जाए फोकस और लर्निंग स्पीडी बनाया जाए डिसीशंस बेहतर आप ले सकें और फ्यूचर में शायद इंसान इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन में डाउनलोड करेगा इधर उधर डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है लैंग्वेजेस इंस्टेंटली सीख जाएगा आज की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुपर इंटेलिजेंस अचीव कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट जिसका थॉट आज हम सबके जहन में होता है और हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो पाएगा वहीं पर ह्यूमन ऑगमेंटेशन के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं जैसे हेल्थ इम्प्रूवमेंट डिजीजेस का इलाज इंसान को समझ में आएगा आसानी से होगा जिससे आपकी लाइफ स्टाइल जो है या लाइफ स्पैन जो है वो इम्प्रूव करेगा वहीं डिसेबिलिटी का एक सलूशन निकल आएगा डिसेबल्ड लोग नॉर्मल जिंदगी से भी बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे स्ट्रॉन्गर स्मार्टर ह्यूमंस ह्यूमन अपनी नेचुरल लिमिट से आगे बढ़ सकते हैं ज्यादा लाइफ होगी बायो एनहांसमेंट एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है लेकिन इसके फिर अपने कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी हैं क्या इंसान एथिकल इश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो क्या वाकई इंसान अपनी बॉडी मॉडिफाई करना चाहेगा क्या ये नेचुरल है या फिर नेचर के साथ छेड़छाड़ आई मीन इनइक्वालिटी अगर सिर्फ अमीर लोग एनहांसमेंट अफोर्ड कर सकेंगे तो सोसाइटी में कितना बड़ा गैप आ जाएगा फिर आपकी अपनी आइडेंटिटी आई मीन जब इंसान मशीन से मर्ज हो जाए तो सवाल उठता है कि वो अब प्योर ह्यूमन है कि नहीं है पता नहीं इम्प्लांट्स या फिर टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है जो डेंजरस भी हो सकती है तो सेफ्टी का रिस्क तो बना ही हुआ है ना देखिए फ्यूचर में हमें ऑगमेंटेशन एवरीडे लाइफ का हिस्सा तो बनाना ही पड़ेगा स्मार्ट इम्प्लांट्स जो बॉडी को मॉनिटर करेंगे बायोनिक आईज जो आपकी नाइट विजन्स देंगी जाए फिर ब्रेन चिप्स जो AI के साथ काम करेंगे और इस पे तो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो भी चुका है बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस भी होने वाला है और हो भी चुका है किसी के साथ ये सब चीजें इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकती हैं पर क्या इन्हें गुलाम बनाएंगे पता नहीं ह्यूमन ऑगमेंटेशन और बायो एनहांसमेंट एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो इंसान की जिंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है इम्प्लांटेबल टेक बायोनिक ऑर्गन्स जेनेटिक अपग्रेड्स के जरिए इंसान अपने नेचुरल लिमिट अपनी एज से आगे बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ एथिकल और सोशल चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे अगर इस टेक्नोलॉजी को केयरफुली यूज किया जाए तो फ्यूचर में

फायदा उठा सकता है हेल्दी स्ट्रांग इंटेलिजेंट हो सकता है और अगर इसे केयरफुली यूज ना किया गया तो फिलहाल दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर इजाजत दूंगी मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों की इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2030.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो अपने दहन यानी मुंह को मिसवाक से खूब अच्छी तरह साफ करते। मजीद एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो अपना दहन मिसवाक से खूब अच्छी तरह साफ करते। तो समय नींद से बेदार होने के बाद ये एक सुन्नत है कि मुंह को मिसवाक से खूब अच्छी तरह साफ करें। इसी तरह वजू शुरू करने से पहले या कुल्ली करने से पहले मिसवाक करना भी सुन्नत है। ये दूसरा मौका है जहां मिसवाक करना मसनून है। सुन्नत मिसवाक की अहमियत का इस हदीस से सही अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात न होती कि मैं अपनी उम्मत को मशक्कत में डाल दूंगा तो मैं उन्हें हर वजू के साथ मिसवाक करने का हुक्म दे देता।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।

कैसे आप इस मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हैं, क्या चीजें इस मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस को हवा देती हैं और कैसे आप इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे, रोशनी डालेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में, ताकि आप इस तरह के पिटफॉल से बच सकें। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप

0: दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां हम फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107
1: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है
0: दोस्तों हर प्रोग्राम की तरह कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं भाई सबसे पहले रिटायरमेंट गैप ये वो शॉर्टफॉल है जो एक शख्स ने रिटायरमेंट के लिए सेव किया होता है और जो उसे अपनी लाइफस्टाइल को रिटायर होने के बाद मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है वहीं इमरजेंसी फंड की बात करें तो ये वो सेविंग्स होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए रखी जाती हैं जैसे मेडिकल बिल्स जॉब लॉस या फिर कार रिपेयर मिडलाइफ इंडिविजुअल्स अक्सर देखते हैं कि उनका इमरजेंसी फंड डिप्लेटेड हो चुका होता है मल्टीपल ऑब्लिगेशंस की वजह से और वहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो ये एक कॉम्पेरेटिव मेजर है जो मुख्तलिफ इलाकों में जिंदगी गुजारने के खर्चे का अंदाजा देता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का बढ़ना मिडलाइफ फाइनेंशियल स्ट्रेस में इजाफे से जुड़ा होता है दोस्तों क्या आप एक नॉन रेसिडेंट हैं जो अपनी होम कंट्री से 10 साल से ज्यादा के अरसे से बाहर रह रहे हैं क्या आपने कभी अपनी होम कंट्री में एक खूबसूरत घर और अपनी पसंद की लाइफस्टाइल के साथ रिटायर्ड लाइफ का ख्वाब देखा है तो इंशाल्लाह ये ख्वाब तभी पूरा हो सकता है दोस्तों जब आप कुछ सिंपल और इफेक्टिव एक्शंस लें आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए ले जाऊंगा ताकि ये ख्वाब हकीकत बन सके सामीन मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसी सूरत हाल है जो अक्सर लोग फौरन समझ जाते हैं ये क्राइसिस आमतौर पर 40 या 50 साल की एज के दरमियान लोगों को हिट करता है और रिटायरमेंट एज तक जा सकता है मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस के 10 में से 9 केसेस सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वाउंड्स होते हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप हो जाए हाँ कुछ बहुत कम केसेस हो सकते हैं जो कंट्रोल से बाहर हो इसका मतलब ये है कि जिस शख्स के साथ ये हो रहा है वो खुद इस सिचुएशन का जिम्मेदार होता है भाई ये एक अहम टॉपिक है चाहे आप वर्कफोर्स में अभी नए आए हो सैलरी अर्न करना शुरू की हो या आप 30, 35, 40, 45 या 50 किसी भी एज बैंड में हो ये हर किसी पर अप्लाई करता है अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो इन पॉइंट से मिलता जुलता है तो ये वक्त है कि आप बैठकर इस पर गौर करें और देखें कि आप किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और कैसे इनसे बाहर आ सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ तो कहीं भी मत जाइएगा जुड़े रहिए हमारे साथ सुनते रहिए FM 107

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए 8 पॉइंट्स लेकर आया हूं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहला मसला होता है करियर के शुरुआती मरहले में बड़ी प्रॉपर्टी लेना। अक्सर पेरेंट्स और दोस्तों का मशवरा होता है कि पहला काम घर या जमीन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि रियल एस्टेट से पैसा बना है। लेकिन दोस्तों, ये एक ट्रैप है जिससे बचना चाहिए। आपके पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए बड़ा लोन लेना पड़ता है जिसका ईएमआई आपकी सैलरी और फैमिली एक्सपेंसेस के साथ मिलकर कैश क्राइसिस क्रिएट करता है। इस वजह से क्रेडिट कार्ड यूज, लोन्स और फैमिली डिस्प्यूट्स तक हो सकते हैं। ये सब मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का बीज बो सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना जरूरी नहीं है करियर के स्टार्ट में ही, इसे पोस्टपोन भी किया जा सकता है, या जरूर करें जब सैलरी और सेविंग बढ़ जाएं तो इसके बारे में सोचिएगा। याद रखें, ये एक स्लो प्रोसेस है जो 40 से 50 की एज में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जिससे बचना बेहतरीन स्ट्रेटजी है। दूसरा पॉइंट है बच्चों के दरमियान कम एज गैप। मिसाल के तौर पर अगर आपके दो बच्चे हैं तो बेहतर है कि उनके दरमियान एज गैप हो। आजकल एक बच्चा भी एक फुल टाइम प्रोजेक्ट जैसा है। एजुकेशन, कोचिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, हॉलीडेज, सब कुछ महंगा हो गया है। अगर दोनों बच्चे छोटी एज गैप के साथ हों तो उनकी स्कूलिंग और एक्सपेंसेस एक साथ आती हैं। भाई, बच्चों के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर बजट क्लियर ना हो तो ना रिटायरमेंट प्लानिंग होती है ना प्रॉपर एजुकेशन। इसलिए एज गैप और बजट प्लानिंग दोनों पे गौर करें। तीसरा मसला होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना। आजकल लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ऑफर्स, मेंबरशिप्स और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में, लेकिन क्रेडिट कार्ड असल में सबसे महंगा लोन होता है। यह आपकी फ्यूचर सैलरी को आज खर्च करने का जरिया बनता है। अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं डिनर, ज्वेलरी, वेकेशंस, तो ये सब एक स्नोबॉल बनकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मैस करते हैं। सैलरी लिमिटेड होती है और अगर इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो आपकी जिंदगी उसी में फंस जाती है। जॉब लॉस, इलनेस या फैमिली इश्यूज के वक्त ये बर्डन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज सोच समझ के करें, हर महीने का बिल क्लियर करें और ईएमआई कन्वर्जन्स को अवॉइड करें। ये भी मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का एक मेजर रीजन बन सकता है। चौथा मसला है ख्वातीनों हजरात, लोन्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करना। हर जगह से प्रमोशनल कॉल्स आती हैं, 0% इंटरेस्ट, लो रेट लोन्स, इन्वेस्ट इन इंडिया पाकिस्तान, लेकिन ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। असल में हर लोन के साथ हिडन कॉस्ट होती हैं। फ्लैट रेट इंटरेस्ट को अगर आप कैलकुलेट करें तो एक्चुअल इंटरेस्ट ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर 6% फ्लैट तो 11% रिड्यूसिंग। मिडिल ईस्ट में इस्लामिक बैंकिंग के रूल्स के मुताबिक अगर आप लोन जल्दी क्लियर भी कर दें फिर भी फुल इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस वजह से लोन लेना आपको फाइनेंशियल ट्रैप में डाल सकता है। इसीलिए अनसोलिसिटेड लोन्स ऑफर्स को अवॉइड करें। हर लोन आपकी फ्यूचर सैलरी से रीपे होता है और अगर जॉब लॉस, इलनेस या इमरजेंसी हो गई तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ मेस हो सकती है। ये भी मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का एक मेजर सबब बन सकता है। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे साहब इमरजेंसी फंड की कमी की। इमरजेंसी फंड जिंदगी का रिजर्व फ्यूल है। आपको कम से कम 2 साल के शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए एक लिक्विड और नॉन वोलेटाइल फंड मेंटेन करना चाहिए, जैसे जॉब ब्रेक, हेल्थ इश्यूज।

जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए और मार्केट क्रैश का रिस्क ना हो। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड, ईएमआई या पर्सनल लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जो मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का सबब बन सकता है। अर्ली करियर में ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें साइंटिफिक प्लानिंग के साथ। छठा पॉइंट है दोस्तों, नेगेटिव लिवरेज का ज्यादा इस्तेमाल। भाई लिवरेज का मतलब है कम पैसे से ज्यादा इन्वेस्ट करना, जैसे 100 रियाल से 1000 रियाल के स्टॉक्स लेना। अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर नीचे गया तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, मार्जिन ट्रेडिंग, ये सब हाई रिस्क लिवरेज टूल्स हैं जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते और फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया एड्स और इन्फ्लुएंसर्स जो लिवरेज को प्रमोट करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। लिवरेज दोनों तरफ से काट सकता है, लेकिन अक्सर लोगों के लिए ये नेगेटिव साइड पर ही काटता है। ये मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का एक स्ट्रॉन्ग रूट कॉज है, इसे किसी भी कॉस्ट पर अवॉइड करें। सातवां पॉइंट है दोस्तों, लाइफस्टाइल अपग्रेड का गलत इस्तेमाल।

हैबिट बन जाती है अगर आपने अपग्रेड किया और जॉब या इनकम में प्रॉब्लम आई तो उस लेवल से नीचे आना बहुत पेनफुल होता है लोग हर नए फोन गाड़ी या प्रॉपर्टी के चक्कर में कैश बर्न करते हैं बिना जरूरत के भाई हर अपग्रेड से पहले सोचिए ये जरूरत है या सिर्फ चाह मॉडरेट लाइफस्टाइल रखें और अगर अपग्रेड करना हो तो स्लोली करें वरना ये भी मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का सबब बन सकता है तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ तो कहीं भी मत जाइएगा जुड़े रहिए हमारे साथ सुनते रहिए FM 107

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो दोस्तों आज के प्रोग्राम का आखिरी पॉइंट है हाई कैश बर्न रेशियो।

रहे हैं और उसमें से कितना खर्च कर रहे हैं। ये सेविंग के बारे में नहीं है, ये बताता है कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। अगर आप 100 यूनिट्स ऑफ करेंसी, चाहे वो रियाल हो, डॉलर हो, दिरहम्स हो, रुपीस हो या कुछ और, कमा रहे हैं और उसमें से 70% खर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका कैश बर्न रेशियो 70% है और अगर आप 90% खर्च कर रहे हैं तो कैश बर्न रेशियो 90% है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 खर्च कर रहे हैं तो ये 100% है। और अगर ये 100% से भी ज्यादा हो तो क्या करें? ये भी मुमकिन है, कुछ लोग 110% 120% तक खर्च करते हैं। ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आता है? इसके सिर्फ दो सोर्सेस हो सकते हैं। पहला, भाई या तो आप फैमिली ट्रेजर बेच रहे हैं, मतलब असेट्स जो आपके वालदेन ने बनाए या जो आपने खुद पहले बनाए। दूसरा, आप लोन ले रहे हैं, मतलब आप अपने फ्यूचर को बोरो करके आज खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कैश बर्न रेशियो 70% से ज्यादा है तो आपकी जिंदगी फाइनेंशियल डेंजर में है। ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि आप मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? भाई सबसे पहले ये जानिए कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। सिर्फ कंपल्सरी एक्सपेंसेस को देखिए जो आपके घर में हो रहे हैं, फिर रेशियो कैलकुलेट कीजिए। अगर ये 70% से ज्यादा है तो ये डेंजर जोन है। अगर ये 90% से ज्यादा है तो आपकी रिटायरमेंट डेंजर में है। और अगर ये 100% या उससे ज्यादा है तो आप ऑलरेडी मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। वहीं अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो कुछ केस में कैश बर्न रेशियो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। भाई करियर की शुरुआती फेज में जब सैलरी कम होती है और जरूरत ज्यादा होती है, या फैमिली लाइफ की शुरुआत में, नई शादी, नया घर, नया फ्रिज या नई कार वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप 35 साल से ऊपर हैं और आपका कैश बर्न रेशियो 70% से ज्यादा है तो ये एक डेंजर सिग्नल है। तो दोस्तों, लुब्बे लुबाब के इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? बैठिए और देखिए आप क्या कमा रहे हैं, आप क्या खर्च कर रहे हैं और क्या ये खर्चे आपकी जरूरत हैं या चाह। अगर ये चाहत हैं तो उन्हें पोस्टपोन या कैंसिल कर दीजिए, और नीड्स यानी जरूरियात हैं तो उन पर फोकस कीजिए। अगर नीड्स अनअवॉइडेबल हैं और कैश बर्न रेशियो फिर भी मैनेजेबल नहीं है तो आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। स्किल्स अपग्रेड कीजिए, जॉब चेंज कीजिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं ताकि कैश बर्न रेशियो कम हो। बॉटम लाइन, अगर आप एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अर्ली फेज ऑफ लाइफ के अलावा 70% से ज्यादा कैश बर्न रेशियो एक सिग्नल है कि आप मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करते हैं मिडिल ईस्ट में मिड लाइफ के लोगों पर पड़ने वाले कुछ प्रेशर्स के बारे में। भाई बहुत से लोग जो फाइनेंशियली कोपिंग या फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, वो अक्सर अपने प्राइम वर्किंग, फैमिली और केयर गिविंग ईयर्स में ही होते हैं। इसका मतलब है कि मिड लाइफ के बहुत से अफराद फाइनेंशियल प्रेशर में हैं। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे कि रेंट, खाना और यूटिलिटीज, सबसे बड़ा कंसर्न है, खासकर मिडिल ईस्ट जैसे मुल्कों में। जो लोग अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये कॉस्ट और ज्यादा होती है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। कंज्यूमर डेट और पर्सनल लोन्स का हाई लेवल भी मिड लाइफ में बर्डन बढ़ा देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास मोर्टगेज, बच्चों की एजुकेशन कॉस्ट वगैरह होती है। इसके अलावा जिन मुल्कों में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वहां मिड लाइफ पेरेंट्स पर खास तौर पर असर होता है। जॉब इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और करेंसी डीवैल्यूएशन उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की सहूलियत को कमजोर कर देती हैं, और इस वजह से पेरेंटल स्ट्रेस में भी इजाफा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पे आज के प्रोग्राम में हमने बात की। ये लिमिटेड नहीं है,

डिस्कस किए हैं, भैया इंश्योर कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में इनमें से किन पॉइंट से दो चार हैं। अगर कोई डेंजर सिग्नल है तो ये वक्त है कि आप इस पर काम करें और इंश्योर करें कि आप इस मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस के ट्रैप में ना फंसें। तो इसी के साथ सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Cricket ho.
5: And he's hooked that away. That's four runs.
4: Football ho.
6: Goal!
4: Ya koi aur bada sporting action. हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
7: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड

0: स्पोर्ट्स की दुनिया से
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM
0: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की
1: दोस्तों आपका ट्रेन से मुतालिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं कीप क्रॉसिंग क्लियर ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है ट्रैम वे लुक बोथ वेज ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है ट्रैम ओनली लेन ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है आर यू रेडी फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको टॉप 10 काउंटडाउन सबसे जबरदस्त गाने लेटेस्ट हिट्स और आप

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
2: यार हफ्ते की शुरुआत अगर फ्रेश मूड से हो तो मजा आ जाए, और आज के दिन अगर पता चल जाए कि कोई अच्छी मूवी लगी है और वो मूवी देख के मूड फ्रेश हो जाए तो दिल ही खुश हो जाएगा. अभी भी अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है रिव्यू ऑफ द वीक, जहां पर हर हफ्ते हम एक नई मूवी के बारे में रिव्यू करते हैं, जहां पर मूवी के हाइप क्या रहे, स्टार रेटिंग्स क्या है, मूड क्या है मूवी को लेकर, उसके अलावा मूवी में जो एक्टर्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फन फैक्ट्स क्या है प्रोडक्शन के बारे में, डायरेक्टर का विजन क्या है मूवी को बनाने को लेकर, उसके अलावा मूवी की फिल्मिंग लोकेशन, एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, जहां पर हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं. और एट लास्ट हम बात करते हैं कि इसका स्पॉइलर फ्री प्लॉट क्या है, फिर वर्डिक्ट देखना है मूवी के नहीं देखना है, या फिर पैसे बर्बाद चले जाएंगे. बर्बाद नहीं, बर्बाद तो नहीं जाएंगे पैसे, मैं नहीं जाने दूंगा. हर हफ्ते ऐसी थोड़ी, इतनी मेहनत करता हूँ यार, हर हफ्ते अपने गले को जलाता हूँ आपको बताने के लिए कि आपके लिए कौन सी मूवी बेस्ट है और कौन सी मूवी बेकार है. मत जाओ, पैसे बर्बाद हो जाएंगे. तो आज हम एक ऐसी ही मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो जिसकी हाइप तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको अगर देखा जाए इसकी जो हीरोइंस हैं उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस मूवी का बहुत ज्यादा ही अनाउंसमेंट किया है, प्रमोट किया है. और ये है वन एंड ओनली स्पाई यूनिवर्स की, यानी कि यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म अल्फा.
3: व्हाट शुड वी कॉल हर सर?
4: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
1: इसका मूड बिल्कुल हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर वाला है दोस्तों, लेकिन इस बार पूरा सिनेमैटिक एनवायरनमेंट काफी बदल चुका है. पहले की फिल्म जैसे पठान या टाइगर में हमने हमेशा लाउड एक्शन और ब्राइट फ्लैशी सेटअप्स देखे हैं, पर अल्फा का मूड थोड़ा डार्क सीरियस और ग्राउंडेड टोन के साथ शुरू होता है. वेल, मुझे लगता है कि ये जो यशराज का स्पाई यूनिवर्स है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा और फिर एक दिन क्या होगा. वैसे तो ये पहले मेल मेल में मूवीज आ रही थी जैसे कि पठान और टाइगर, फिर अभी फीमेल की आ गई जिसमें अल्फा में बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं, और फिर एक साथ एक ऐसी बड़ी मूवी आएगी जिसमें ये फीमेल और मेल एक्ट्रेस साथ में आएंगे और स्पाई यूनिवर्स इनका मुकम्मल हो जाए. थोड़ी आपको मार्वल जैसी फील आ रही थी तो, और देख लेना ये होगा, मैं आऊँगा आपको बताऊँगा भी कि देखो मैंने उस दिन बोला था कि ये होगा, पक्का होगा, देखा. बाकी अगर हम बात करें मूड के बारे में तो अच्छा खासा मूड है. अल्फा का मूड थोड़ा डार्क सीरियस और ग्राउंडेड टोन के साथ शुरू होता है. डायरेक्टर शिव रवाइल जो है उन्होंने कोशिश की है कि फिल्म को एक इंटरनेशनल स्पिनेज थ्रिलर वाला मूडी और एटमोस्फेरिक लुक दिया जाए. हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स और शार्प लाइटिंग की वजह से स्टार्टिंग में लगता है कि हम कोई नए जमाने के सिनेमा को देख रहे हैं. यहां तक सब अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह सीरियस ऑरा पूरी फिल्म में मेंटेन

नहीं रह पाता है। कहानी का मूड अचानक से चेंज होता है जब इसमें फोर्स्ड जबरदस्ती की इमोशनल फैमिली ड्रामा को घुसेड़ दिया जाता है, ठूस दिया जाता है और अनसीजनल कमर्शियल सॉन्ग्स भी घुसा दिए जाते हैं। अब बताइए यार, आप मार्वल देखा है आपने? कौन से सॉन्ग थे उसमें?

0: यार मत करो भाई ये सब, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करने दो ना, ये इमोशनल ड्रामा क्यों कर रहा है तुम लोगों को?
1: हाय बॉयज,
0: तो ये पता नहीं क्यों यशराज की प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है कि वो जो देखने वाले हैं उनकी प्रॉब्लम है कि उनको तो एक गाना चाहिए बाबा तो ये दिक्कत बहुत बड़ी लगी है। एक्शन सेट्स तो बड़े हैं इस मूवी में और उनमें काफी पैसा भी खर्च किया।

0: स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दो फीमेल लीड्स हैं इसमें, जैसे कि आपको पता ही होगा, आलिया भट्ट और सरवरी. अपनी तरफ से पूरी जान लगाती हैं ये दोनों. उनका बॉडी लैंग्वेज एकदम टफ एसेसिन वाला है, पर डायलॉग डिलीवरी इतनी ओवर एक्सप्लेनेटरी है कि सीरियसनेस मजाक बन जाती है.
1: एक कहानी सुनाती हूँ. एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था. वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था.
0: ओवरऑल फिल्म का मूड एक हाई बजट हॉलीवुड फिल्म जैसा स्टाइलिश दिखता है, पर इसके अंदर की सोल बिल्कुल भटकी हुई है और दिल्ली से मुंबई तक बिखरी हुई महसूस होती है. वेल, हाइप का एनालिसिस अगर करें तो इस फिल्म की हाइप रिलीज से पहले बिल्कुल आसमान पर थी, क्योंकि ये यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड एक्शन फ्रेंचाइजी थी. आलिया भट्ट का एक सुपर सोल्जर बनना और सरवरी का उनके साथ स्क्रीन शेयर करना पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट था. टीजर और ट्रेलर के आने के बाद लोगों को लगा था कि अब स्पाई वर्स को एक नया और फ्रेश डायरेक्शन मिला है, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि जब आप देखेंगे ना दो फीमेल लीड एक्ट्रेस जिस तरह से शुरुआत में काम करती, तो आपको बड़ा मज़ा भी आता है. और फीमेल स्पाई यूनिवर्स मुझे लगता है कि इंडिया में कभी हुआ भी नहीं, और अब थोड़ा यशराज फिल्म आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो इस बात का एप्रिसिएशन तो बिल्कुल.
1: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो.
0: और प्रमोशन तो इसका बहुत ज्यादा था, आप सोशल मीडिया पर देख ले. ओवरऑल फ्रेश डायरेक्शन मिलेगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ऊपर से बॉबी देओल का बैडी लुक जो है और ऋतिक रोशन का कबीर वाला स्पेशल जॉन विक स्टाइल कैमियो सुनकर फैंस थिएटर्स की तरफ भागे भी. पब्लिक थक चुकी थी वही पुराने इंडिया और फला कंट्री और फला कंट्री की स्पाई टेम्पलेट से, इसलिए अल्फा का हाइप एक जेन्युइन गेम चेंजर जैसा था. पर अफसोस जब फिल्म थिएटर में आई तो ये सारी हाइप एकदम से फिजल आउट हो गई. फिल्म देखने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन काफी मिक्स्ड और डिसअपॉइंटेड रहा. फैंस का कहना है कि जो हाइप क्रिएट की गई थी, एग्जीक्यूशन उसके आसपास भी नहीं पहुंचा. स्क्रिप्ट इतनी वीक है कि सारे बड़े स्टार्स होने के बावजूद कुछ मजा नहीं आता. ऋतिक रोशन का कैमियो जरूर पैसा वसूल मोमेंट क्रिएट करता है, पर वो भी कहानी के हिसाब से यार मतलब बेमतलब लगता है अगर आप मूवी देखेंगे तो. फिर बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छा क्राउड मिला ऑब्वियसली क्योंकि हाइप थी, पर वीक वर्ड ऑफ माउथ के चलते अब इसका लंबे वक्त तक टिकना मुश्किल लग रहा है. मुझे तो मुश्किल लग रहा है, बाकी कई बार ऐसा भी होता ना कि गल्फ कंट्री और बाकी मुल्क में ये चल जाती है, अपने मुल्क में नहीं चलती है. यशराज ने ब्रांड वैल्यू तो बढ़ाने की कोशिश की, पर कहानी के नाम पर बड़ा जीरो मिला है, ये बात मतलब सभी कह रहे हैं. अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टार रेटिंग के बारे में. वैसे तो इस फिल्म को मेरा बड़ा दिल था, मतलब खास तौर पे जब मैंने देखा इसका ट्रेलर. एक तो ट्रेलर भाई, आजकल की कोई भी फिल्म उठा लो ट्रेलर तो ऐसा धांसू होता है, मतलब ऐसा समझ में आता है कि अरे भाई कुछ तो गदर कटेगी, मजा आ जाएगा देखते हुए, दिल खुश हो जाएगा, क्या ही होगा. लेकिन कुछ नहीं हो रहा भाई. इस फिल्म को असल में 5 में से 1.5 स्टार्स मिलते हैं. ये रेटिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ग्रैंड है, लोकेशंस कमाल है और एक्शन कोरियोग्राफी पर मेहनत दिखती है. आलिया भट्ट और सरवरी ने बिना किसी डाउट के स्टंट सीन्स बहुत सिलसिलेवार तरीके से किए हैं, तो इसके नंबर जरूर मिलने चाहिए. उनके हार्डवर्क स्क्रीन पर साफ नजर आ रहे हैं. बॉबी देओल ने भी अपने नेगेटिव रोल में थोड़ा बहुत स्वैग दिखाने की कोशिश की, और बॉबी देओल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट कहानी भी एक मसला है ना. हालांकि उनका कैरेक्टर बहुत ही पुअरली रिटन और मिसकास्ट भी लगता है. अनिल कपूर का रोल भी है इसमें, वो इतना पॉइंटलेस से भरा है कि लगता है कि उनके सिर्फ फ्रेम भरने के लिए रखा गया. मतलब कई बार होता है ना कि एक सीन से दूसरे सीन की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं और उसमें कट नहीं है, तो आपको जबरदस्ती का एक बंदा रखना पड़ता है, भले वो एक्टर और एक्ट्रेस भी नहीं है, है ना, एक रैंडम बंदा है, तो उसको चलते हुए दिखा दिया क्योंकि फ्रेम भरना है कि लोगों की नजर जो है स्क्रीन से हटे ना. तो ऐसा लग रहा था कि अनिल कपूर को बस जबरदस्ती क्या आ जाइए खड़े हो जाइए ये चल रहा था. बाकी दोस्तों बचे हुए सारे डिपार्टमेंट्स में ये फिल्म एक कंप्लीट डिजास्टर साबित होती है. स्टोरी लाइन में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है और कैरेक्टर्स इनविजिबल लगते हैं. जिससे कोई टेंशन बिल्ड ही नहीं होती है। डायरेक्टर शिव ने विजुअल्स एस्थेटिक्स तो अच्छे दिए हैं पर स्क्रीन प्ले के गैप्स को फिल करने में पूरी तरह फेल हो गए। डायलॉग्स काफी क्रिंजी हैं और हर एक्शन के बाद ओवर एक्सप्लेनेशन दिमाग खराब कर।
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगे कैसे सीधा? अपने जंगल का शेर है वो।
0: देखो यार, एक तो ये भी मसला है ना कि पता नहीं यशराज फिल्म्स के जो लोग हैं और जो डायरेक्टर हैं शिव, उनको ये लगता है कि ऑडियंस थोड़ी सी नल्ली होगी, उनको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई इतना अच्छा जोक मारा, ह्यूमर मारा है या सीन इतना बेहतरीन है, इतने आला दर्जे का है, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो यही है कि ओवर एक्सप्लेनेशन जो है वो दिमाग ख़राब करता है। CGI और एक्सप्लोजन्स अभी भी फेक लगते हैं, मतलब यशराज से तो ये उम्मीद नहीं है यार। इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए ये शर्मनाक बात है, कही जा सकती है। अगर आप यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स के मतलब ऐसा ब्लाइंड फैन है ना, तो शायद एक बार झेल लेंगे, वरना ये फिल्म आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करेगी। तो जेब में हाथ रख लो जल्दी, कोई मतलब नहीं है, मत खर्चे करो, मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका दिल भी है। अच्छा ये भी होता है ना कई बार कि आप कितना भी मूवी को देखें, आपने पसंद हो ना हो, बस ये होता है कि यार चलो देखते हैं यार, मजा आए, दिल खुश हो जाएगा, चार दोस्तों के साथ बैठे, तो वो अगर करना है, फैमिली के साथ करना है, तो ऑब्वियसली ये मूवी देखी जा सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा फन फैक्ट के बारे में, इस मूवी के प्रोडक्शन में क्या फन फैक्ट्स रहे, डायरेक्टर का विजन क्या है, फिल्मिंग लोकेशन, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिनेमाटोग्राफी और साउंड क्या है इस मूवी की, वो भी जरा हम तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम द वन एंड ओनली फन फैक्ट के बारे में। ये मेरा अपना फेवरेट है जिसमें मुझे खुद भी पता चलता कि अच्छा प्रोडक्शन को लेकर ये बातें थी। तो यशराज की इस पहली फीमेल लेड स्पाई मूवी का प्रोडक्शन स्केल बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का था। सबसे बड़ा फन फैक्ट ये है कि आलिया भट्ट और सरवरी ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 महीने तक बहुत ही हार्डकोर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA और वेपन ट्रेनिंग दी थी। क्या फायदा जब स्क्रिप्ट ही नहीं है, राइटिंग ही अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी आदित्य चोपड़ा के बारे में भी सुन लीजिए, आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि एक्शन बिल्कुल रियल लगे, इसलिए उन्होंने हॉलीवुड के टॉप स्टंट डायरेक्टर्स को हायर किया था जो पहले जॉन विक और मिशन इम्पॉसिबल जैसे बड़ी फिल्म्स पर काम कर चुके हैं। और मजे की बात यह है कि फिल्म का एक बड़े चेज सीक्वेंस के लिए पूरे 10 दिन तक एक बिजी यूरोपियन सिटी के मार्केट को ब्लॉक किया गया था, जहां रोज रात को हाई स्पीड कार्स और बाइक्स दौड़ाई जाती थी। प्रोडक्शन टीम ने सेट पर सेफ्टी और सीक्रेसी का इतना ध्यान रखा कि किसी भी एक्टर का लुक लीक नहीं होने दिया। शूटिंग के दौरान आलिया और सरवरी के बीच की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी काफी चर्चा में रही, जहां दोनों एक दूसरे को टफ ट्रेनिंग सेशंस के दौरान मोटिवेट करती थी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर विजन। डायरेक्टर का इस मूवी को बनाने को लेकर विजन क्या था? दोस्तों डायरेक्टर शिव रवायल हैं, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा, जिन्होंने पहले द रेलवे मैन जैसी सीरियस और एक्लेम्ड सीरीज बनाई थी। उनका विजन अल्फा को लेकर बहुत अलग था। वो यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स

0: स्टाइल से निकालकर एक मॉडर्न स्लीक और ग्राउंडेड स्पिनेज थ्रिलर बनाना चाहते थे। उनका मेन फोकस था कि फीमेल स्पाइज को सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि उन्हें ऐसी स्ट्रॉन्ग अल्फा पर्सनैलिटीज के रूप में पेश किया जाए जो फिजिकली और मेंटली दुश्मन पर भारी पड़े। शिव ने कोशिश की कि फिल्म के नैरेटिव को बेहतर या फास्ट पेस्ड किया जाए और इसमें इमोशन के साथ साथ थोड़ा डार्क अंडरवर्ल्ड का टच भी मिले। अब इमोशन तो इमोशन के नाम पे आपको ठेंगा ही मिलेगा, ऐसा लग रहा जबरदस्ती का ठूसा गया है। और फिर गाना जब आपको दिखेगा तो आपका ऐसा दिमाग खराब होगा जिनको सही में गाने से परेशानी हो उनके लिए। बाकी शिव का विजन विजुअली बहुत शार्प और एस्थेटिकली प्लीजिंग था, जहां हर फ्रेम एक इंटरनेशनल वाइब देता है, लेकिन उनका ये नया विजन कहानी के ट्रेडिशनल बॉलीवुड एलिमेंट्स और लाउड ड्रामेटिक सीन्स के साथ थोड़ा मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से पूरी फिल्म का बैलेंस थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा,
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिल्मिंग लोकेशन। फिल्मिंग लोकेशन के बारे में बात करें तो अल्फा की शूटिंग बहुत ही एक्सोटिक और ब्रेथ टेकिंग लोकेशन पर की गई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ मूवी होती हैं आपको याद हो जाती हैं, जैसे कॉकटेल 2 मूवी आपको याद हो जाएगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वो भी आपको बड़ी याद हो जाएगी उसकी लोकेशन। तो अल्फा की शूटिंग भी बड़ी लाजवाब है और लोकेशन आपको याद रहे, इसकी ब्रांड वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाती भी है ये लोकेशंस।

0: किए गए हैं। इसके बाद कहानी यूरोप के सुंदर और पुराने शहरों में शिफ्ट होती है, जैसे कि बुडापेस्ट, परगवे, जहाँ की नैरो स्ट्रीट्स और गॉथिक आर्किटेक्चर को चेजेस के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से यूज किया गया है। टीम ने मुंबई के स्टूडियो में भी बड़े बड़े सेट्स लगाए थे, जहां कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड बंकर और हाईटेक स्पाई लैब्स बनाई गई थी। इन ग्रैंड लोकेशंस की वजह से फिल्म का हर एक फ्रेम बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव लगता है। बर्फ से लेकर मिट्टी और ऊंचे ऊंचे ग्लास बिल्डिंग्स तक, लोकेशंस का वेरिएशन ऑडियंस को एक पूरी ग्लोब ट्रॉटिंग एक्सपीरियंस देता है, जो एक आइडियल स्पाई यूनिवर्स की फिल्म से एक्सपेक्ट किया भी जाता है असल में। तो एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें, एक डायलॉग जो है जरा वो भी सुन लेते हैं।
1: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार
0: आपको कुछ यूनिकनेस लगी इस डायलॉग में? नहीं ना। तो जब डायलॉग में यूनिकनेस नहीं है तो फिर मजा नहीं है। मतलब आप जब स्पाई काम कर रहे हैं तो डायलॉग में भी वो स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, है ना? तो वो इतना मजबूत डायलॉग है नहीं। दोस्तों, इस फिल्म में एक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अजीब, चौंकाने वाला और इंटेंस था। आलिया भट्ट ने अपने रेगुलर बबली या इमोशनल अवतार को छोड़कर एक एकदम ठंडी और लिथल असैसिन का रूप जो है वो अपनाया था। उन्होंने इस रोल के लिए काफी मसल वगैरह गेन करी थी भाई, मतलब प्रोटीन वोटीन खा रही थी, बॉडी लैंग्वेज को एकदम रिजिड और डिसिप्लिन्ड बनाया, उन्होंने मसल मास भी गेन किया, तगड़ा एकदम हैवी इक्विपमेंट्स उठा रही थी, डंबल अम्बल उठाया उन्होंने भाई। वहीं दूसरी तरफ सरवरी के अगर बारे में बात करें तो अपने फिजिकल स्टैमिना को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई सरवरी। उनकी एजिलिटी और स्पीड स्क्रीन पर साफ दिखेगी आपको। ये तो मतलब है कि अगर आप फैन हैं सरवरी के और आलिया के तो फिर तो नहीं गए तो फिर बहुत कुछ मिस कर दोगे, बाकी तो आपका अपना दिल है नहीं। दोनों एक्ट्रेस ने अपने लुक को काफी रॉ और मिनिमलिस्टिक रखा है बिना किसी हैवी मेकअप के। बॉबी देओल का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने लायक था, उन्होंने अपने लुक को बहुत ही लाजवाब या कहें एक रग्ड बियर्डेड स्क्रीन पर आते ही ऐसा डर जैसा लगता है उनको देखने के बाद।
2: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
0: अनिल कपूर ने एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के रोल के लिए काफी शार्प और सोफिस्टिकेटेड लुक को कैरी किया है, जो उनकी रियल एज को बहुत ग्रेसफुली मैच भी करता है।

कहें इस ट्रेलर से, हाँ मैं मूवी तो नहीं दिखाऊंगा, वहां का साउंड और सिनेमाटोग्राफी क्या ही दिखा पाऊंगा, लेकिन साउंड जरूर सुना सकता हूँ आपको ट्रेलर से। सुनिए कुछ साउंड्स, डायलॉग्स और मजे के सीन्स भी हम कह सकते हैं फ्रॉम द ट्रेलर। FM 107 पे अल्फा की ये जबरदस्त ट्रेलर सुनिए।

0: यानी साउंड में तो मतलब आपको 5 में से 5 देना पड़ेगा अगर इसकी कोई स्टार रेटिंग होती तो ऑब्वियसली, लेकिन साउंड से मूवी थोड़ी चलती है। विजुअल्स और साउंड के डिपार्टमेंट में फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है दोस्तों। सिनेमाटोग्राफी काफी मॉडर्न है जिसमें एनामॉर्फिक लेंसेज और मूडी कलर पैलेट्स का यूज किया जाता है ताकि फिल्म को एक डार्क ग्रिटी और रियलिस्टिक टोन दिया जा सके। कश्मीर के वाइड स्नो शॉट्स और यूरोप के नियॉन लिट नाइट सीक्वेंस देखने में बहुत ही स्टनिंग लगते हैं। एक्शन सीन्स के दौरान कैमरा मूवमेंट बहुत फ्लूड और फास्ट है जो होश उड़ा देते हैं, मतलब दिल खुश हो जाता है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर होते तो 5 में से 5 मिलते सिनेमाटोग्राफी में और साउंड में। साउंड डिज़ाइन की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक रखा गया जो पल्स पाउंडिंग बीट्स के साथ स्क्रीन पर चल रहे केओस को इनहेंस करता है। गन फाइट्स और पंचेस की साउंड कटिंग एज साउंड मिक्सिंग के साथ आती है जो थिएटर के अंदर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। हालांकि म्यूजिक ट्रैक्स थोड़े से हल्के हैं, वैसे तो मैं कहता हूँ म्यूजिक ट्रैक रहना ही नहीं चाहिए था यार, ये क्यों है, म्यूजिक ट्रैक का कोई वजह नहीं है भाई। पर ओवरऑल साउंड डिजाइन और विजुअल क्वालिटी फिल्म को आखिरी तक टेक्निकल सपोर्ट देती है। तो अगर आपने इतना कुछ सुन लिया है तो अब तक तो पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, मतलब मूवी देखना है नहीं देखना है। चलो घर चलते हैं, छोड़ो भैया कुछ और, चल खाना पीना खा के आ जाए यार, 35-40 रियाल क्यों खर्च करें, चलो बारबी क्यों खा लेते हैं। अगर ये सोच रहे हैं आप तो काफ़ी हद तक सही सोच रहे हैं लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम बात कर लें स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में ताकि आपको और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि कई ऐसी मूवीज़ हैं जैसे गुड्डे है ना जिसमें अर्जुन कपूर हैं और रणवीर सिंह हैं, मुझे वो मूवी अच्छी लगी थी, ऑल्दो बॉक्स ऑफिस में उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया तो उसके गाने भी मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि मूवी का एक प्लॉट सुन लें आप और इसके बाद फिर आपकी मर्जी है। तो दोस्तों स्पॉइलर फ्री प्लॉट ऐसा है, अल्फा की कहानी यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स के एक नए और बिल्कुल बिखरे हुए चैप्टर को खोलती है। कहानी घूमती है दो तेज तर्रार और लीथल फीमेल सीक्रेट एजेंट्स के दरमियान, आलिया भट्ट और सरवरी के आसपास, जिन्हें देश के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल और डेंजरस मिशन पर भेजा जाता है। दोनों को एक ऐसी डेडली इंटरनल थ्रेट और ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश करना है जो पूरे देश की सिक्योरिटी को हिला सकती है। अगेन यही पुरानी वाली बात है यार, मतलब कुछ नया नहीं है इस स्पाई यूनिवर्स में, ये होता है यार। मिशन के दौरान उन्हें एक बहुत ही खतरनाक और चालाक विलन यानी कि बॉबी देओल का सामना करना पड़ता है जो हर कदम पर उनसे 2 कदम आगे लगता है। दोनों फीमेल स्पाइज को न सिर्फ दुश्मन से लड़ना है बल्कि सिस्टम के अंदर छुपे हुए गद्दारों और धोखे से भी खुद को बचाना है। अब बताइए आपको टाइगर जिंदा है या फिर वो जो एक और मूवी थी वॉर, वो वाली कहानी नहीं लग रही है? टाइगर जिंदा है उसमें भी अंदर कोई धोखेबाज है, वॉर उसके अंदर भी कोई धोखेबाज है, अपने ही धोखेबाज लोग हैं, तो क्या नया है भाई। खैर आगे है इस कहानी में कि फिल्म इस बारे में है कि कैसे ये दोनों अल्फा एजेंट्स मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ देती हैं और अपनी ताकत के दम पर दुश्मन को धूल चटा देती है, बस नथिंग न्यू। बाकी अब परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो दोस्तों परफॉर्मेंसेज के मामले में दोनों लीड एक्ट्रेसेस ने स्क्रीन पर पूरी जान लगाई है। आलिया भट्ट ने अपने करियर में पहली बार ऐसे हार्डकोर एक्शन रोल किए हैं और उनका डेडिकेशन उनके टफ बॉडी लैंग्वेज और हाई ऑक्टेन स्टंट्स में साफ झलकता भी है। उन्होंने एक सीरियस और कैलकुलेटेड एजेंट का रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है, लाजवाब। बात करते हैं सरवरी के बारे में, सरवरी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते ऑब्वियसली, आलिया भट्ट जितनी फेमस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरवरी को आप देखेंगे एक तो नेचर उनका बड़ा अच्छा है, ऊपर से उनका जो काम है वो भी बहुत अच्छा है, मेहनती बहुत हैं, तो सरवरी उन्हें स्क्रीन पर आप जब देखेंगे वो बराबर की टक्कर देती हुई नज़र आएंगी। उनका स्टेमिना, फिजिकल एजिलिटी और स्क्रीन, अच्छा एक दो चीज़ है, एक तो स्क्रीन शेयर करना आलिया भट्ट के साथ, उसके अलावा स्क्रीन पर प्रेजेंस आलिया भट्ट के साथ, ये दो अलग चीज़ है। तो स्क्रीन शेयर करते हुए भी अच्छी लगी हैं, मैं कहूँगा कहीं कहीं ज़्यादा अच्छी लगी हैं आलिया भट्ट से, उसके अलावा स्क्रीन पर जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी कमाल है और एक्शन सीन्स में वो बहुत ही कन्विंसिंग भी लगती हैं। बॉबी देओल ने एक बार फिर से अपने नेगेटिव रोल में वही रग्ड और मेनेसिंग स्वैग लाने की कोशिश की है जो उन्होंने एनिमल में किया था, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत ही पुअरली रिटन है। मुझे लगता है कि शायद मे बी बॉबी देओल की गलती ही नहीं है, जिस तरह से उनका असल में वो होता है ना कि अरे सचिन तेंदुलकर का दौर चल रहा था भाई, वैसे ही बॉबी देओल का दौर चल रहा है भाई। जिस तरह से वो काम करते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई कमी उनके अंदर होगी। बाकी अगर हम बात करें स्वैग के बारे में तो ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने स्वैग दिखा दिया और लाजवाब भी है। उन्होंने एनिमल में काम अच्छा किया भी और अभी तक याद है। फिर उसके बाद अनिल कपूर का जो काम है वो हमेशा की तरह डिग्निफाइड है, पर उनका रोल बहुत छोटा और सिंपल है जो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता। ऐसा है कि YRF ने यानी कि यशराज फिल्म्स ने कुछ पैसे दे दिए अनिल कपूर को कि आके बस आप स्क्रीन भर दें और आप लगते भी अच्छे हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप लगते भी अच्छे हैं। बाकी क्रिटिक्स का क्या कहना है इस मूवी को लेकर? वेल दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना मूवी का रिव्यू क्रिटिक्स के नज़रिए से ही सुना है, मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर ही दिया ऑलरेडी, बट असल में क्रिटिक्स का क्या कहना है, जिनका काम ही जिनकी जॉब है क्रिटिक्स होना। फिल्म क्रिटिक्स की तरफ से अल्फा को काफ़ी मिक्स्ड और डिसअपॉइंटेड रिव्यूज़ मिले हैं। ज्यादातर क्रिटिक्स ने आलिया भट्ट और सरवरी के इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस को बहुत सराहा है, बहुत ज्यादा सराहा है। उनका कहना है कि दोनों एक्ट्रेसेस ने एक्शन डिपार्टमेंट में बॉलीवुड के बड़े बड़े मेल स्टार्स को टक्कर दी है। प्रोडक्शन क्वालिटी, ग्रैंड यूरोपियन लोकेशंस और स्लीक सिनेमाटोग्राफी की भी काफी तारीफ हुई है, लेकिन इन सब चीजों से मूवी थोड़ी चलती है। मूवी तो चलती है बेहतरीन राइटिंग से, बेहतरीन कोरियोग्राफी से, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, साउंड, साथ ही साथ स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, हर एक छोटी चीज़ है ना। लेकिन क्रिटिक्स का सबसे बड़ा जो गुस्सा है वो फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन पर निकला है। उनका मानना है कि डायरेक्टर शिव एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देने में पूरी तरह से फेल हो गए। कहानी में बहुत सारे लॉजिक होल्स हैं, डायलॉग्स काफ़ी चीज़ी हैं और इमोशंस बिल्कुल फोर्स लगते, जबरदस्ती ठूस दिया गया। क्रिटिक्स के मुताबिक यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स अब धीरे धीरे अपना चार्म खो रहा है, क्योंकि उनके पास ग्रैंड एक्शन के अलावा दिखाने के लिए कोई ढंग की स्टोरी नहीं है। अगर आप सिर्फ बड़े पर्दे पर स्टाइलिश विजुअल इफेक्ट्स, ग्रैंड इंटरनेशनल लोकेशंस और कमाल की एक्शन कोरियोग्राफी देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको थोड़ी बहुत पसंद आ सकती है। आलिया भट्ट और सरवरी ने इस फिल्म के लिए जो खून पसीना बहाया है वो उनके स्टंट्स और टफ बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखता है। उनका ये हार्डकोर अवतार बॉलीवुड सिनेमा के लिए एक नया और फ्रेश स्टेप जरूर है, लेकिन अगर आप एक अच्छी स्पाई थ्रिलर फिल्म से एक टाइट स्क्रिप्ट, दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस और अच्छे डायलॉग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये फिल्म आपको पूरी तरह निराश, डिसअपॉइंट करेगी। फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसका हॉलो और प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। यशराज स्पाई यूनिवर्स अब धीरे धीरे उसी पुराने और थके हुए टेम्पलेट में फंसता जा रहा है और ये बॉलीवुड की प्रॉब्लम भी रही है दोस्तों। जहां कहानी से ज्यादा एक्सप्लोजन्स पर ध्यान दिया जाता है, बॉबी देओल, अनिल कपूर जैसे बेहतरीन एक्टर्स का पोटेंशियल इस कमजोर स्क्रिप्ट की वजह से बिल्कुल वेस्ट हो गया है। ऋतिक रोशन का कैमियो थोड़ी देर के लिए थिएटर में सीटियां जरूर बजवाता है, पर वो भी डूबती हुई नैया को बचा नहीं पाता, क्योंकि ऋतिक रोशन का ऑरा एक अलग ही है। उनकी तो एंट्री में भी देखो यार, कहीं पर भी एंट्री कर जाए किसी मॉल में भी एंट्री कर जाए तो सीटियां बच जाएंगी, कोई बड़ी बात है, दैट्स नॉट अ बिग डील ऑब्वियसली। इसलिए हमारा फाइनल यानी कि FM 107 पे फजील का ये रिव्यू ऑफ द वीक का फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि आप इस फिल्म को स्किप कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म स्किप कर सकते हैं, अनलेस आप स्पाई यूनिवर्स के बहुत बड़े फैन या कहते हैं ना एकदम ब्लाइंड फैन हो तब। बाकी इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। दोस्तों अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं बता दूं, आज हमने अल्फा मूवी का रिव्यू करा जो कि बहुत अच्छी कोई मूवी नहीं है, लेकिन अगर आप फैन हैं ऐसी मूवी के, स्पाई यूनिवर्स के और यशराज फिल्म्स के, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, 35 रियाल, दैट्स नॉट अ बिग डील। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीक, जहां पर हम एक नए फिल्म के बारे में बात करेंगे, उसके सिनेमाटोग्राफी, एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्टर का विजन, प्रोडक्शन का फैक्ट यानी कि फन फैक्ट क्या रहा उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्या स्टार रेटिंग है, क्या हाइप है उन मूवीज के बारे में जो अगले हफ्ते अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं।

घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज न सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आप

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: या yeah. This song is a poison.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, The ultimate mind workout as pure fun. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, Desi.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se, Desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। कतरी फुटबॉल सिस्टम में गोलकीपर अबू नादा एक इमर्जिंग और प्रॉमिसिंग टैलेंट के तौर पर देखे जाते हैं और उन्होंने ये साबित किया 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। क्या मैच खेला उन्होंने, कितने गोल्स बचाए, आज भी उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जहां पे अबू नादा इमर्ज लार्जर देन लाइफ पिक्चर अगेंस्ट द स्विस प्लेयर। और अगर कतर ने स्विट्जरलैंड को एक एक गोल पर ड्रॉ करने पे मजबूर किया तो इसके पीछे सबसे बड़ा अगर मैं रीजन रहा है तो वो है अबू नादा की गोलकीपिंग। उनका प्लेइंग स्टाइल काम और कंपोज्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ कि काफी अग्रेसिव है उनके पेनल्टी बॉक्स एरिया में। जिस तरह से उन्होंने पंचेस या शॉट्स को रोकने में जिस तरह से उनके जो रिफ्लेक्स एक्शन हमें देखने को मिला, इससे साफ साफ साबित होता है कि ये आज के दौर में कतरी नेशनल टीम में ही इज द बेस्ट गोलकीपर, नंबर वन गोलकीपर। देखिए, मैशाल बर्शम को नहीं खिलाया कोच लुप्तगी ने और इन्हें उतारा गया, विच मीन्स ही हैज सम काइंड ऑफ टैलेंट, सम काइंड ऑफ यू नो आई वुड से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसके बदौलत अबू नादा कतर की नुमाइंदगी। शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी के साथ साथ उनकी रिफ्लेक्सेस और वन ऑन वन सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग उन्हें एक रिलायबल लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। डोमेस्टिक लीग्स और ट्रेनिंग सेटअप्स में अबू नादा ने अपनी कंसिस्टेंसी से कोचेस और सेलेक्टर्स का ध्यान हासिल किया है। गोलकीपिंग सिर्फ फिजिकल स्किल नहीं है दोस्तों, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी होती है और अबू नादा इस एस्पेक्ट में ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं। उनकी पोजीशनिंग और गेम अवेयरनेस वक्त के साथ बेहतर होती जा रही है, जो उनके डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी को शो करती है। एंड द स्विट्जरलैंड गेम इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एग्जांपल। कतर के फुटबॉल इकोसिस्टम में नए गोलकीपर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मिल रही है और अबू नादा इस सिस्टम का हिस्सा बनकर अपनी स्किल्स पॉलिश कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह प्रोग्रेस करते रहें तो फ्यूचर में वो कतरी फुटबॉल के इम्पोर्टेंट गोलकीपिंग ऑप्शंस में शुमार हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम में इस्तकबाल है आपका। हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं नए जमाने के स्कैम्स के बारे में, फ्रॉडस्टर्स के बारे में, और आज हम बात करेंगे ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स और सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड के बारे में। 2026 में साइबर क्रिमिनल्स ने इंडिविजुअल आइडेंटिटी चोरी करने के बदले सिंथेटिक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया है। इस फ्रॉड में एआई एजेंट्स रियल लोगों के थोड़े से डेटा, जैसे कि आधार या पैन या कुछ हिस्सा या छोटी मोटी डिटेल्स को फेक एआई जनरेटेड डेटा के साथ मिक्स करके एक बिल्कुल नई झूठी आइडेंटिटी खड़ी कर देते हैं। ये फेक आइडेंटिटीज इतनी परफेक्ट होती हैं कि बैंक के ऑटोमेटेड केवाईसी सिस्टम्स और क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम्स भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। इन सिंथेटिक प्रोफाइल्स के दम पर फ्रॉडस्टर्स बड़े बड़े पर्सनल लोन

0: क्रेडिट कार्ड्स और शॉपिंग लाइंस अप्रूव करवा लेते हैं। जब लोन डिफॉल्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस नाम का कोई इंसान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका असर आम लोगों पर तब पड़ता है जब उनका रियल डेटा इस फेक मिक्स में यूज होता है और उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रेगुलरली चेक करते रहें। ये ऑटोनोमस एआई एजेंट्स हर रोज हजारों फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, बैंकिंग पोर्टल्स पर ऑटोमेट अटैक्स रन करते हैं जिससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन FM 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड का शिकार होने से बचने के लिए आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड क्रेडेंशियल्स के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क या कहें होशियार रहने की जरूरत है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखने के लिए सिबिल, एक्सपेरियन या इक्विफैक्स जैसे क्रेडिट ब्यूरोज से हर महीने अपने क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। अगर आपको अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसी लोन इंक्वायरी या क्रेडिट अकाउंट दिखता है जो आपने कभी खोला ही नहीं तो तुरंत उस बैंक और साइबर सेल को रिपोर्ट करें। अपने पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या QID, फोटोकॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की अनवेरिफाइड जगह पर ना दें और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा मास्क्ड आधार या QID या ऐसी डिटेल्स जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है मास्क्ड दें। मिसाल के तौर पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के आखिरी के 4 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ही अगर आप दे देंगे तो आपके नाम से उसे मैच किया जा सकता है बजाय पूरे 16 या जितने भी नंबर हैं वो देने के, क्योंकि वो हो जाता है खतरनाक। उसके अलावा साइबर थ्रेट से अलर्ट रहने के लिए बैंक्स की तरफ से भेजे गए ट्रांजैक्शन अलर्ट्स और क्रेडिट अपडेट्स को भी इग्नोर ना करें। अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्विसेज का यूज करें जो डार्क वेब पर आपके क्रेडेंशियल्स का मिसयूज स्कैन करती रहती है। ये है सबसे सेफ तरीका। दोस्तों ये था आज का FM 107 पे खास फ्रॉड अवेयरनेस का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ जूनियर जनाब विद आरजे सफा
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु दोस्तों आप सुन रहे हैं जूनियर जनाब और मैं हूँ आपकी होस्ट सफा सफदर भाई ये शो है उन छोटे छोटे सितारों के लिए जो अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं और इनकी उम्र देखकर आप इनसे इंस्पायर हो जाते हैं एक्चुअली में आपको

0: Okay, let's see. If I ask you in future, what do you want to do good in reality? Or who do you want to become? Have you ever thought about it?
1: I want to become a chemical engineering or scientist.
0: Oh my God, really?
1: Yeah.
0: Very good, very good. May God bless you and may you become the kind-hearted and the most successful, one of the most successful people, okay?
1: Okay.
0: You have to work really hard for it. You cannot say, I don't know. For being a chemical scientist, you need to remember things. And you need to focus. Not just go round on the chair. Like right now what you're doing. Chalye mere saathiyo, hamara time yahi mein khatam hota hai. Umeed karte hain ki aapko ye hamari mukhtasir si baat. जो बातचीत जो है हमारे आज के अचीवर से पसंद आई होगी. अच्छा, इनके बारे में आपको ये बता दूं जाते जाते कि ये बहुत छोटे हैं, तो इनको एक कुर्सी पे बिठाकर इनसे बात करना बड़ा ही मुश्किल काम है. तो स्वास्तिक, वी विल से गुड बाय टू एवरीबॉडी.
1: ओके, बाय
0: बाय. बस ये हमें बस ये आता है, हम टू द पॉइंट बात करते हैं. देखिये, हम नेक्स्ट जनरेशन के, इंशाल्लाह, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, साइंटिस्ट, राइट? हम नेक्स्ट जनरेशन के बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे सामने बैठे हुए. अभी ये 8 साल के हैं, लेकिन टिल द टाइम ही ग्रोज अप, ही इज गोइंग टू हैव अ, ही इज गोइंग टू बी एट अ बेटर प्लेस, इंशाल्लाह मोर सक्सेसफुल. तो क्या पता इनसे मुलाकात हो किसी टाइम और कुछ सालों बाद, एंड ही वुड बी मोर फोकस्ड, इंशाल्लाह. ही इज स्टिल फोकस्ड, लेकिन फिलहाल तो शरारतें करने में. मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ आपके साथ आरजे सफा. और जूनियर जनाब में आज आपने स्वास्तिक से बात की, जिनकी अचीवमेंट्स इनकी एज से नहीं नापी जा सकती, और फिलहाल तो इनकी एज इतनी 8 साल की. शरारती हैं, नॉटी हैं, जैसा एक नॉर्मल बच्चे को होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही हैं. थोड़ा सा फोकस्ड, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा आई डोंट नो, थोड़ा सा शाइनेस, थोड़ा सा नर्वसनेस, लेकिन पता नहीं है कि उसको एक्सप्रेस कैसे करना है. बट इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू स्वास्तिक. हैव अ ब्लेस्ड टाइम. अल्लाह हाफिज. बाय बाय.
1: बाय.
0: Saying bye-bye to everybody. Bye.
1: Bye.
0: Bye, everybody. Bye. सुनते रहे FM 107, दिल से देसी.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब.

0: प्रोग्राम चुमा रिफ्लेक्शंस में हर चुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 7 PM only on FM 107, Dil Se Desi।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफसल नशरिया, इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर और पाकिस्तान वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और उमूर तारकीन वतन की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए तआवुन पर इत्तफाक किया गया। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर मुमलिकत ने दमिश्क में शाम के वज़ीर ख़ारजा और उमूर तारकीन वतन से मुलाकात की, जिसमें कतर और शाम के दरमियान सफारती तआवुन के फ़रोग़ पर इत्तफाक और मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ारत दाखला ने ऐलान किया है कि अमरीका को बैनुल अक्वामी मुनज़्ज़म जराइम से मुतालिक मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब एक एशियाई शहरी को अमरीकी हुकाम के हवाले कर दिया है। और अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंद हो गया है, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाली जंगबंदी अब मुअसर नहीं रही। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब समाप्त कीजिए दूसरा नशरिया।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने प्रोग्राम में, दिल से जुड़े प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां हर रोज की कहानी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को यादगार बना देती है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर में पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसके अपनी वर्चुअल का हिस्सा होती है। और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर कहीं ले जाती है, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब लाती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। और आज की जो हमारी मेहमान हैं, आप कतर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फैकल्टी मेंबर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। तालीम के शोबे में 25 साल से ज्यादा का वसी और कीमती तजुर्बा रखती हैं। सऊदी अरब और रियासत कतर में मुख्तलिफ इदारों में तालीम देने का उनका सफर बहुत ही नुमाया रहा है। आपने अपने करियर के दौरान किंडरगार्टन से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक के तलबा को तालीम दी, जिसके जरिए आप मुख्तलिफ उम्रों और जहनी सतह के स्टूडेंट्स की जरूरियात को समझने का गहरा तजुर्बा भी रखती हैं। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन और असरी टीचिंग मेथडोलॉजीज पर आपकी मजबूत पकड़ आपको एक मौसर मुअल्लिमा बनाती हैं। तालीम से गहरी लगन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जज्बे के साथ आप हमेशा ऐसी लर्निंग एनवायरमेंट्स क्रिएट करने पर जोर देती हैं जो एंगेजिंग हो, इंक्लूसिव हो और स्टूडेंट सेंटर्ड हो, जहां तालीमी तरक्की के साथ साथ शख्सियत भी बराबर की अहमियत रखती हो। ख्वातीन हजरात, आज हम दोहा डायरीज में नुज़हत परवीन साहिबा का दिल से खैर मकदम करते हैं। आइए अब उनके हुजूर चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नुज़हत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाला कि हमें टाइम दें और हमारे साथ अपनी कुछ जो कहानी है वो शेयर करें।
1: आपका मैं तहे दिल से पहले शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे लायक समझा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम एंड FM 107।
0: थैंक यू सो मच मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हर उस लायक हैं कि हम आपकी कहानी जानें और आपसे बातचीत करें। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। मैम, अगर आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करें, एक टीचर और एक इंसान के तौर पर, तो वो क्या होंगी?
1: देखिए, हर इंसान के अंदर 3 शख्सियत, बड़ा मुश्किल सवाल आपने शिबा से पूछ दिया है जी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी खासियत होती है, लेकिन मैं अगर अपने आप को डिफाइन करूँ तो आई विल से लाइक आई एम वेरी क्यूरियस एंड परसिस्टेंट एंड आई एम वेरी कंपैशनेट। क्यूरियस इसलिए क्योंकि जिस एजुकेशन फील्ड से मैं हूँ वो एवरी डे इज अ डे ऑफ लर्न। आप हर रोज कुछ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, और परफेक्ट तो हम सभी हैं क्योंकि हम अगर हम गिव अप नहीं कर सकते। हमें किसी भी टास्क पे रहना पड़ता है क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी परसिस्टेंट और कंपैशनेट। एक टीचर का अगर वो केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरे ख्याल से वो टीचर नहीं।
0: क्या बात है मैम, दोहा में एक टीचर की जिंदगी का एक आइडल या रिलैक्सिंग दिन आपके लिए कैसा होता है?
1: एक परफेक्ट डे सर्वसा बैलेंस होना चाहिए बस मेरे हिसाब से, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मालूम होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस रखें। क्योंकि एक परफेक्ट डे ये है कि आप अपने फैमिली को भी इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, और आप अपने प्रोफेशन को भी नहीं कर सकते। तो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है जब आप एक इन दोनों चीजों को बैलेंस करके करते हैं. तो फॉर मी एनी प्रोफेशन इफ यू बैलेंस योर लाइफ दैट इज द परफेक्ट.
0: क्या बात है भाई. मैम, टीचिंग ने आपकी पर्सनालिटी और सोच को किस तरह से शेप किया है, कुछ शेयर करना चाहती हैं?
1: जी, टीचिंग ने मेरी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा पेशेंट, पैथेटिक एंड ओपन माइंडेड बनाया है. बिकॉज जब आप टीचिंग करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं और डिफरेंट कल्चर से आते हैं. उनको उनके एनवायरमेंट को समझना, उनके बैकग्राउंड को समझना, उनकी जरूरत को समझना, ये सब बहुत जरूरी होता है. एक एकेडमिक से पहले एक टीचर्स को ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि इस प्रोफेशन में मुझे ये बहुत अच्छे से सिखाया है कि एक ये लर्निंग जो है ना, वो लाइफ लाइन प्रोसेस है. एक स्टूडेंट जो एकेडमिक्स पे डिपेंड नहीं करता है, टीचर के मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है.
0: सही. चलिए मैम, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं. कुछ पर्सनल और फैमिली के हवाले से सवाल करना चाहूंगा मैं. आपकी दोहा की जर्नी शादी के बाद शुरू हुई, ऑब्वियसली यहाँ आने का फैसला कैसा था?
1: जी बिल्कुल, शादी के बाद हम दोहा आए थे. ये फैसला मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला था, क्योंकि शुरू में जब आप पार्टनर किसी भी नए मुल्क, नए माहौल, नई जिम्मेदारियाँ, एक चैलेंज था. लेकिन मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना ज्यादा चैलेंजिंग मुझे इसलिए नहीं लगा कि आई स्पेंड माई अराउंड 9 years ऑफ माई लाइफ इन सऊदी अरब. तो दोहा का माहौल मुझे कुछ मिलता जुलता लगा, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था. लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि जब लोग आते हैं अपने मुल्क से, दूसरे मुल्क, तो यस, इन द बिगनिंग इट इज रियली चैलेंजिंग एंड एक सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है आपकी लाइफ का. और इट वॉज नॉट दैट चैलेंजिंग फॉर मी, बट आई एंजॉयड कमिंग फ्रॉम डे वन.
0: क्या बात है. जब आप दोहा आई तो करियर और जिंदगी के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी या रही?
1: जब मैं दोहा आई, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे अपने करियर में ग्रोथ के तरह अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इंशाल्लाह. आई वाज थिंकिंग दैट, और वो मिली भी. क्योंकि दोहा बहुत ही सेल्फ, कहते हैं ना, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर आप देखें एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे. तो मैं बहुत खुश थी जब मैं आई थी. तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे मेरी करियर को एक परवाज मिलेगा, और वो मुझे मिला दिया था.
0: वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह. मैम, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दोहा का पहला इम्प्रेशन क्या था, और वो भी उस टाइम पे?
1: As soon as I stepped out of the airport, my first impression कि दोहा इज अ वेरी क्लीन, ब्यूटिफुल, मॉडर्न एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन. और सबसे बड़ी बात कि मैं जब शुरुआत के दिनों में थी तो हमारी फ्लाइट रात में लैंड हुई थी, तो इट वॉज वेरी सेफ. आई फेल्ट सो सेफ कि हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, कोई मसला नहीं, कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं, कुछ नहीं. आई वॉज एट पीस. बहुत ही पुरसकून, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्प्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर.
0: क्या बात है. शुरू के दिनों में एक नए मुल्क में और नए एजुकेशनल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना कैसा रहा?
1: As I told you, सरवर साहब की, for me it was not that challenging. क्योंकि मैं सऊदीया से मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं था. बट हाँ, दूसरी कंट्री आप जाते हैं तो दूसरे कल्चर होते हैं. इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम में काम किया हुआ था मैंने, तो इसलिए मुझे मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट की समझ थी. तो इट वॉज नॉट दैट चैलेंजिंग फॉर मी. बट हर जगह आपको अपना कल्चर, अपना वर्क स्टाइल होता है, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे उसमें आप एडजस्ट हो जाते हैं. चैलेंजेस तो आपको सिखाते हैं लाइफ.
0: सही सही, क्या बात है मैम, बहुत खूब. दोहा में टीचिंग करियर कंटिन्यू करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका?
1: दोहा में टीचिंग करियर कंटिन्यू किया मैंने, इसका बहुत पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा. यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ नेशनलिटीज और बैकग्राउंड के स्टूडेंट के साथ काम करने का मौका मिला, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें मेरी टीचिंग स्किल्स को बहुत इम्प्रूव किया. एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेरे बहुत डेवलप किया. अपॉर्चुनिटी बहुत थी, क्लासरूम में एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस होता था, हर स्टूडेंट एक नई स्टोरी के साथ आता था, एक नए बैकग्राउंड के साथ आता था. तो ओवरऑल एक ऐसे दोहा ने मुझे बहुत प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बनाया।
0: क्या बात है। तो क्या टीचिंग सिस्टम या स्टूडेंट्स के कल्चर में कोई ऐसा फर्क था जिसने आपको सरप्राइज किया?
1: ऑनेस्टली बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं लगा था। अगेन आई विल से कि मैं जब सऊदीया में थी तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बट यहाँ आने के बाद मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि मैंने वहाँ भी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज को पढ़ाया हुआ था। तो लेकिन ये था कि मैंने अरबिक नेशनैलिटीज को यहाँ पे आके ज्यादा पढ़ाया, यहाँ मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टीचिंग द डिफरेंट कल्चर, बिकॉज यहाँ पे मैंने खुद सीखा बहुत, सिखाने के तौर पर मैंने खुद बहुत सीखा।
0: क्या बात है। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि ये फैसला सही था या नहीं?
1: Honestly, I never used the question whether the decision was right or wrong. हर नए सफर की तरह कुछ challenges जरूर आते हैं, लेकिन मैंने उनको ऐसे growth की तरह से लिया कि ये मेरी life long जो journey होती है आपकी, उसकी में एक growth का काम करेगा, एक leverage का काम किया इसने मुझे। इसने मुझे professionally बहुत develop किया और मुझे ऊपर उठाया, मेरी skills को बहुत develop किया, stability दी मुझे, नए experience हासिल हुए। तो I just say कि कभी मैंने ये नहीं सोचा कि फैसला सही था या गलत था। मैं I was very happy with this।
0: क्या बात है। आइए मैम, अब दूसरे सेगमेंट की जाने पर चलते हैं। कुछ हार्ड डेज, स्ट्रॉन्ग डेज, इमोशंस, एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ सवाल हैं मेरे पास। क्या कभी आपको दोहा में तनहाई या होमसिकनेस महसूस हुई, खासतौर पर शुरू के दिनों में?
1: देखिए सर साहब, हम सब अजनबी हैं इस मुल्क में, कहीं ना कहीं अपना मुल्क तो याद आता है।
0: सही।
1: और शुरू के दिनों में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। नया मुल्क है, नया माहौल है, और अपने घर वालों की याद, अपने वालदैन की याद, अपने भाई बहनों की याद बहुत सताती है शुरुआत के दिनों में।
0: सही, सही।
1: लेकिन दोहा में एक चीज है, आपका ये जो सेफ एनवायरनमेंट और वेलकमिंग एनवायरनमेंट है ना, इसने कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट किया कि बस तब है कि ये हमारी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है कि यहाँ पे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब। जब घर और अपने शहर की याद आती थी तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती थी, कैसे समझाती थी?
1: जब घर अपने शहर याद आता है तो मैं अपने करियर की गोल पर फोकस करती, मैं अपने आप को समझाती थी कि मैं किस लिए हूँ यहाँ पर।
0: वाह।
1: मैं किस मकसद से आई हूँ यहाँ पर। और यस, अपने पेरेंट्स को कभी कॉल करती थी तो उसमें मुझे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिलता था, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे और मैं उनसे डिस्कस भी करती थी अपनी चीजों को, तो वो मुझे करते थे कि आप किस गोल की भी कही है बेटा, आपको अपने गोल पे फोकस रहना है। तो आपका अगर जिंदगी में कोई गोल है ना तो सारी चीजें एक साइड हो जाती
0: है। क्या बात है मैम। एक सवाल जो हर वर्किंग लेडी के लिए काफी मायने रखता है, टीचिंग और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करना कैसा रहा?
1: इट इज रियली चैलेंजिंग फॉर एनी वुमन, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है, आपको किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले, इवन अगर आप हाउस मेकर हैं, कोई आप जॉब नहीं भी करती है, तो सबसे पहली चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए ना, जो वुमेन को कहा जाता है मल्टीटास्कर, क्यों कहा जाता है कि वो एक ही जगह रह के वो हर तरह के काम करती हैं, बच्चों को पालने से लेके, घर संभालने से लेके, अपने प्रोफेशन से लेके। तो ये अगर आपने टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सीख लिया तो सर्वर साहब एवरीथिंग इज पॉसिबल।
0: क्या बात।
1: ये दो चीजें मैं समझती हूँ, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आपको बना देती है। आपको फिर कोई भी चीज आपके रास्ते में एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, आपको नहीं लगता कि ये एक मेरे रास्ते का वो है पत्थर है। नहीं, अगर आपने डिसिप्लिन और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सीखा तो आप सब कुछ पा लें, सब कुछ आप सक्सेस आपकी पलवों में होगी।
0: क्या बात है, इंशाल्लाह ताला। मैम, जैसे आपने मेंशन किया कि आप पहले सऊदी में काफी वक्त गुजारा, उसके बाद दोहा तशरीफ लाई, तो क्या कभी ऐसा ख्याल आया कि सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा?
1: जी हाँ, जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैं वाकिफ भी थी यहाँ के माहौल से।
0: एक फिक्र होती है, एक परेशानी होती है।
1: लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस कभी वेस्ट नहीं जाते। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरे पिछले एक्सपीरियंस मैंने गेन किए थे सऊदीया में, तो बहुत सपोर्ट किया मुझे। मतलब आई वुड नॉट से कि आई स्टार्टेड हियर फ्रॉम द स्क्रैच, मैंने मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बड़ी मदद की दोबारा से खड़े होने में. आप कह सकते हैं एक सीढ़ी की तरह से मुझे मदद मिली है मेरे पास.
0: क्या बात है. इसी के हवाले से एक दूसरा सवाल ये कि आपके शौहर साहब और फैमिली का इस सफर में क्या रोल रहा है.
1: बहुत बहुत सपोर्टिव. मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव है. कभी ऐसा भी होता था कि मुझे बच्चों को अकेले घर पे छोड़ के जाना पड़ता था तो मेरा बेटा मेरी बच्ची के ध्यान रखता था. मेरे शौहर रखते थे. बहुत सपोर्ट किया फैमिली के सपोर्ट के बिना. इट वाज नॉट पॉसिबल.
0: क्या बात है.
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं.
4: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
4: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
0: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है. याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है. रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए. रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है. और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है. सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं. वजारत दाखिला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें. गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट.
0: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप.
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील
0: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
2: सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
0: आपकी दोहा लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसका जिक्र आप करना चाहें?
1: टर्निंग पॉइंट पूरी तरह से सेटल होना शुरू किया हुआ जब, तब कह सकते हैं कि प्रोफेशनली जब मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस मैंने महसूस किया तो उसको मैं कहती हूँ कि मैं वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. उसने मुझे इस तरह का कॉन्फिडेंस दिया, ये लगा कि अब कोई भी चैलेंज मेरी लाइफ में आ जाए तो आई कैन इजीली ओवरकम दैट चैलेंज इन माय लाइफ.
0: क्या बात है.
1: बहुत प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाया मुझे दोहा.
0: बहुत खूब. दोहा की जर्नी और सऊदी की जर्नी, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आज पीछे देखते हुए कुछ एक सीख की मैं बात करूं तो कुछ ऐसी सीख है जो आपको मिली जो शेयर करना चाहती हूं आप?
1: Yes, sure. Looking back today, the biggest lesson what I have learned is hard work, patience and discipline can help you overcome any challenge. क्योंकि कभी कभी हम बीच में छोड़ देते हैं, हम कर नहीं पाते हैं चीजों को. आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है कई दफा लाइफ में. आपको लगता है कि ये चीज आपसे नहीं हो पाएगी तो इसमें आपको पेशेंस और परसिवरेंस की जरूरत होती है. और सबसे बड़ी चीज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिसिप्लिन. तो उसने बड़ा मतलब साथ दिया क्योंकि मैं जो हूँ एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ. मेरे फादर वाज इन एयर.
0: वाओ वाओ वाओ वंडरफुल. अच्छा
1: तो ये आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो हमारे खून में.
0: क्या बात है
1: तो उसने बड़ा सपोर्ट किया तो उसकी वजह से मैं कहती हूँ ये जो बचपन में चीजें हमने सीखी हैं वो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं जरूर काम आते हैं।
0: क्या बात है, खास तौर पे जो घर से तरबियत और तालीम मिलती है और वालदैन जो सिखाते हैं वो वाकई काम आता है। मैम अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग और मेमोरी बिल्डिंग के हवाले से बात करते हैं। क्लासरूम का कोई ऐसा यादगार वाकया जो आज भी आपके दिल के करीब हो?
1: सरवर साहब, क्लासरूम का अगर मैं यादगार,
0: डेली कुछ ना कुछ नया होता है,
1: बहुत होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ होता है। वो बस ये है कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि काइंडनेस, एम्पैथी एंड दूसरों की केयर करना सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकेडमिक्स तो बच्चे कर लेते हैं,
0: सही
1: बाइनों को खूब करते हैं बच्चे, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को, हमें उनको एक बेहतर सिटीजन भी बनाना, तो उसके लिए हमें उनको सिखाना पड़ेगा कि एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है। तो जब मैं स्टूडेंट को एक दूसरे की मदद करते हुए देखती हूँ और रिस्पेक्ट करते हुए देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एकेडमिक्स में नहीं, मेरे बच्चे सोशल लाइफ में भी आगे बढ़ रहे।
0: वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या किसी स्टूडेंट ने कभी आपको ऐसा सबक या लेसन दिया जो आप खुद कभी नहीं भूल सकती?
1: यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगी। मुझे अल्लाह ने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक स्कूल में जब मैं टीचिंग करती थी, हाई ग्रेड्स पढ़ाती थी, तो आई गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, मतलब वो ब्लाइंड थे, और आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वो नॉर्मल क्लासरूम में वो स्टूडेंट रहते थे, 3 से 4 बच्चे थे वो, और नॉर्मल क्लासरूम में होते थे, उनके पास अपने नोट्स टेकर मशीन्स होती थी, तो जब हम उनको पढ़ाते थे तो दे यूज्ड टू टेक द नोट्स इन देयर नोट्स टेकर मशीन। आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड आई वाज सो हैप्पी कि अल्लाह हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच दीज चिल्ड्रन। और एक नॉर्मल क्लासरूम सेटअप, उनकी जो हेड थी वो आवाज से मतलब मैं उनके पास 7-8 साल के बाद गई, उन्होंने मुझे मेरी आवाज से पहचाना।
0: वाह वाह वाह वाह, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि ये माशाल्लाह उनके पास कुव्वत होती है इस चीज की,
1: बहुत होती है जी। और मतलब उनको पढ़ाना एक इतना मतलब आपको कहते हैं ना, आपकी सोल को जो चीज टच कर जाए, तो वो वाला एक्सपीरियंस मुझे मिला उन बच्चियों को पढ़ाने से, कि उनको मैं मतलब मैं कभी नहीं भूल सकती, वो 4 बच्चियां मेरी लाइफ की जो है वो बहुत मतलब कहती हूँ एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट मेरी लाइफ में कह सकते हैं, या एक टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ एजुकेशन की।
0: अच्छा, इसी से मुतालिक मैम, आपकी जिंदगी की कोई ऐसी शख्सियत जिनका आप नाम लेना चाहें जिन्होंने आपकी सोच या करियर को बदला?
1: उसमें है अपने वालिद साहब का नाम लो।
0: वाह, उन्होंने क्या नाम है मैम उनका?
1: मोहम्मद नईम।
0: माशाल्लाह,
1: उन्होंने आपको मैं एक छोटा सा एक वाकया बताऊंगी। जब मैं स्कूल जाया करती थी, स्कूलिंग में करती थी, तो मैं साइकिल से जा सकती थी, तो एक बार मैं धूप में वापस आई तो गर्मी, मई जून की गर्मी तो आपको मालूम है हिंदुस्तान की क्या होती है, तो मैं जब आई तो मैंने अपने अब्बा से कहा, मैंने कहा अब्बा कि जब मैं देखती हूँ ना कि कार में लोग बैठे होते हैं और जा रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा उत्साह आता है देख के, मैं साइकिल पे चलूँगा।
0: एक बच्चे ने अपने वालिद से भाई जो बात सादगी से कही जा सकती है,
1: बिल्कुल। तो मेरे वालिद साहब का बड़ा प्यारा जवाब था, उन्होंने कहा कि बेटा आपने कार वाले को देखा, आपने कभी रिक्शे वाले को नहीं देखा, कि जो खुद को साथ था 2 और सवारियों को खींच रहा है। तो मेरे वालिद साहब की एक सीख जो मुझे आज तक याद है, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने अगर लाइफ में स्ट्रगल करनी हो तो नीचे देखें, और अगर आपने लाइफ में सक्सेस लेनी है तो ऊपर देखें। तो अगर आपको स्ट्रगल करनी है तो रिक्शे वाले का जज्बा रखें, और सक्सेस चाहिए तो ये याद रखें कि ये कार में एक दिन मुझे बैठना,
0: बहुत
1: ये कार मेरी मम्मी चाहिए।
0: बहुत अच्छे, बहुत खूब। दोहा में टीचिंग की सबसे पसंदीदा बात क्या है आपके लिए?
1: डिफरेंट कल्चर एंड बैकग्राउंड, क्योंकि एक क्लासरूम में आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज मिलती हैं। और सबसे मजे की बात होती है जब लंच टाइम होता है, बच्चे का लंच बॉक्स खोलते हैं ना, इतना खूबसूरत वो मंजर होता है सबा भाई, तो क्या बताऊं कि बच्चों के रंग बिरंगे लंच बॉक्सेस में रंग बिरंगे खाने, रंग बिरंगी खुशबुएं, मतलब मजा आ जाता है, मजा आ जाता है, देख के मजा आ जाता है।
0: क्या बात, बहुत अच्छे। अगर आप अपनी जिंदगी पर डायरी लिखें तो उसका टाइटल क्या हो सकता है?

0: ट्रूथ, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड।
1: वाह, चलिए मैम अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। क्या दोहा में टीचिंग के दौरान कोई फनी या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जो याद है आपको शेयर करना चाहती हूँ?
0: जी बिल्कुल, हम एक बार मैं केमिस्ट्री लेसन ले रही थी तो जब मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी तो आई रोट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एसपीओ फोर और कार्बन डाइऑक्साइड पीओ टू। तो एक बच्चा मेरे पास आता है कोई अपनी प्रॉब्लम लेके कि मिस ये कैसे होगा, ये कैसी रिएक्शन होगी। दूसरा बच्चा पीछे से आके केमिकल रिएक्शन से टू मिटा देता है कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का फोर मिटा देता था। तो पीछे से बच्चे कहते हैं मिस यू हैव रिटन समथिंग रॉन्ग। नहीं कहता है, मैं जब पलट के देखती थी तो वाकई वो गलत होती थी। मैं कि ये कैसे हो सकता, रिपीटेडली होता था वो। फिर मैंने उनको बाद में पकड़ा।
1: ओके वेरी गुड। ऑलराइट, क्या कभी क्लासरूम में किसी स्टूडेंट ने ऐसा जवाब दिया हो जो आपको हंसने पर मजबूर कर गया?
0: जवाब तो नहीं, लेकिन एक इंसिडेंट बड़ा मजे का हुआ था। जब हम आपको तो पता हो ये सारी चीजें हम लोग भी कर चुके होंगे कहीं ना कहीं लाइफ में। जब मैं बोर्ड पे लिखी जाती थी तो एक बच्चा हमेशा विजिल करता था, सीटी बजाता था। ओ, और मैं जब पलटती थी तो क्यों तो कोई बोलते नहीं थे कि कितने विजिल किया। तो मैं बहुत दिनों तक मैं उस बच्चे को, मैंने कहा एक दिन तो पकड़ूंगी। तो मैं रिटर्न किया कि मैं बोर्ड की तरफ लिखने जा रही हूँ और मैं एकदम घूम गई, वो बच्चा पकड़ा गया। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा आपको यू लाइक टू विजिल राइट? तो कहता यस। तो मैंने कहा चले आपका सिर्फ आज ये पनिशमेंट जो कह लें इसको या कुछ भी कह लें,
1: भाई सबक होता है बच्चों के लिए। तो
0: हाँ बच्चे, सबक आपका ये है कि आप यू लाइक टू विजिट तो टुडे यू विल विजिट। मैंने कहा आप कितनी देर तक विजिट कर सकते हैं? तो कहता आधे घंटे तक। मैंने कहा नहीं आधा घंटा तो बहुत हो गया, आप सिर्फ 3 मिनट करेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे खड़े और पूरी क्लास आपको सुनेगी। तो ये उनका सबक था। तो वो बड़े खुश बोले। मैंने कहा लेकिन आप ये याद रखना कि 3 मिनट या मुझे खैर याद नहीं या 2 मिनट मैंने उनके साथ, मैंने कहा अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो आपको वो डबल हो जाएगा। तो वो बच्चा हुआ कि ये तो बहुत इजी है। मैं कहा चले फिर शुरू करें। तो उसने जब शुरू करी विसल तो बीच में कहता मैं मिस इस इज हार्ड। मैं कहता ना ना 4 मिनट। तो फिर कहता है नो नो आई सेड 8 मिनट। तो कहता है कि नहीं अब तो ब्रेक होने वाला है। तो देखिए बच्चे की जो आप ऐसा सबक दें जो बच्चे को भी जिंदगी भर याद रहे।
1: पीछे बहुत अच्छा मैसेज दे रही हैं आप एक्चुअली।
0: जी तो उनको ये समझ आई कि ये चीज जो हम एक फनी वे में ले रहे थे ये कितनी डिफिकल्ट भी हो सकती है।
1: क्या बात है। क्या किसी स्ट्रेंजर या कलीग ने शुरू के दिनों में आपकी ऐसी मदद की हो जो आप आज तक याद रखती हैं?
0: भाई एक नहीं है, बहुत है, बहुत हैं। शुरुआत में मैं सबसे अच्छी बात दोहा की ये है कि यहाँ पे लेग पुलिंग नहीं है। यहाँ पे सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब खुल के आते हैं। मतलब आपको आके पूछते हैं यू आर न्यू इफ यू नीड एनीथिंग वी आर ऑलवेज देयर। मेरी जितनी भी नेशनैलिटी, जितनी डिफरेंट नेशनैलिटी, मतलब मुझे अपनी पर्सनल से प्रोफेशनल लेवल तक सबने मदद की।
1: क्या बात है, यही हमारे दोहा की खासियत भी है और यहाँ रहने वालों की एक खूबसूरती भी है। मैम आपने दोहा में अपना सोशल सर्किल और दोस्त कैसे बनाए?
0: सोशल सर्किल के लिए सरवर साहब मैंने एक सोशल एसोसिएशन ज्वाइन की और उसमें मैंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मतलब आप होता है ना कि आप प्रोफेशनल पर्सनल के अलावा आपको सोसाइटी की भी जरूरत होती है। तो वो सोसाइटी की जो मेरी नीड थी वो मेरे सोशल सर्किल और सोशल एसोसिएशन हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन वो ज्वाइन की। उसके अलावा कई एसोसिएशन मैंने ज्वाइन की जिसमें मैंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी।
1: क्या बात है। कोई ऐसा मोमेंट मैम जिसने आपको दिल से खुश किया?

0: क्लास में जाते तो वो टेबल पे उठ के डांस करना शुरू कर देती ट्रबल द टीचर. तो आप यकीन माने कि वो आई टॉट दैट गर्ल इन ग्रेड 9 जब वो ग्रेड 9 में थी. फिर मैंने एक दिन उनको यूनिवर्सिटी में देखा, कतर यूनिवर्सिटी में. तो उनको देख के मैंने कहा मैंने आपको कहीं देखा है, वो भी मुझे कह रही है मैंने आपको कहीं देखा है. तो उन्होंने कहा कि हाँ आप मिस नुसरत है. यस. तो मैं बच्ची का नाम तो नहीं लूंगी लेकिन मैं आपको पहचान गई. तो बच्ची ने कहा कि मैंने कहा आप क्या कर रहे हो बेटा. तो कहती है आई एम परसुइंग लॉ. मैं कहा व्हाट. मैं आप देखे कि वो बच्ची द ट्रबलसम चाइल्ड वो शी वाज परसुइंग लॉ. तो आई वाज सो प्राउड एट दैट मोमेंट. हम कभी कभी बच्चों को देखते हैं क्लास में कि बहुत नॉटी होते हैं बहुत, और हम कहते हैं कि भाई इनका क्या बनेगा आगे जाके. अरे बच्चे कहीं ना कहीं अनोखे होते हैं.
1: क्या बात है मैम, क्या बात है. आखिरी सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं मैम. अगर आप दुआ को एक खत लिखना चाहें तो एक दो चार लाइनें किस तरीके से होंगी.
0: मैं दुआ को खत लिखूंगी अगर तो मैं ये लिखूंगी कि थैंक यू दुआ फॉर गिविंग मी अ सेकंड होम.
1: वाह.
0: And many opportunities to grow.
1: Wow.
0: जब मैं यहाँ आई थी सब कुछ नया था लेकिन धीरे धीरे तुमने मुझे कम्फर्ट कॉन्फिडेंस एंड बिलोंगिंग का एहसास दिया.
1: क्या बात.
0: यहाँ मैंने सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाया बल्कि लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बनाया.
1: क्या बात है. आप क्या कहेंगी इस बारे में कि दोहा ने आपकी जिंदगी और टीचिंग जर्नी को किस तरह बदला है. आपने बहुत कुछ बताया बट आखिर में कुछ एक चंद एक लाइन है और.
0: दोहा ने मुझे प्रोफेशनली पर्सनली एंड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाया.
1: क्या सच्ची बात कही है. वाह वाह वाह.
0: बहुत स्ट्रांग बनाया. और मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल तरक्की की है दोहा का बहुत बड़ा किरदार.
1: क्या बात.
0: बहुत बड़ा किरदार.
1: क्या बात है मैम. आखिर में मैम जो टीचर्स या यंग लेडीज करियर और फैमिली के साथ दोहा आ रही है उनके लिए आपका क्या पैगाम है.
0: जी मैं उनको सिर्फ ये मैसेज दूंगी कि अपने आप पे भरोसा रखिए. जब भी नई जगह आती हैं तो चैलेंजेस होते हैं लेकिन चैलेंजेस नई अपॉर्चुनिटीज को लेके आती हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चैलेंजेस जरूर आएंगे लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को सीख लेंगे लाइफ में तो हर चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता हो.
1: वाह वाह क्या बात है भाई. नज़र साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कहानी अपने जज्बात और अपनी लर्निंग हमारे साथ शेयर करी. थैंक यू सो मच.
0: थैंक्स टू यू सरवर साहब एंड थैंक्स टू FM 107 खतर एंड योर एंटायर टीम एंड दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय लाइफ जर्नी विद यू.
1: थैंक यू सो मच. तो दोस्तों ये थी नज़रत परवीन साहिबा हमारे साथ. और दोस्तों आप सब से भी इतना कहना है कि जिंदगी के हर सफर में हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप भी लिखते हैं. इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं. अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ. तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए. सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी.
2: दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
3: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी.

0: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो एफएम 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

FM 107 Top 10, number 8.

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे and this is Top 10 this week. 10 गाने जो भाई साहब ताबड़तोड़ चालेंगे इन गानों में वो बातें हैं जो इनको टॉप 10 की लिस्ट में शामिल करती हैं. कोई स्ट्रीमिंग पे बढ़िया है, कोई यूट्यूब पर बढ़िया है, कोई सुनने में बढ़िया है, किसी का हुक स्टेप बढ़िया है, और किसी गाने में ऐसी एक लाइन है जो सीधा दिल पे लाके थ्रुम माइंड माई साउंड इफेक्ट्स. अगर आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो नंबर 10 पे था सादगी स्टेवन बैन, नंबर 9 पे उछलम बकद, नंबर 8 पे कहर धमाल से, और अब बारी है नंबर 7, 6 और 5 की. तो नंबर 7वें पोजीशन पर, नंबर 7 पे है असीम अजहर का गाना. मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ. मैंने कई मरतबा कहा है मैं इस बंदे को काफी काफी काफी टाइम से सुन रहा हूँ. असीम अजहर ने काफी रैपर से कोलैबोरेशन भी किए हैं. असीम अजहर ने तला अंजुम तला यूनुस के साथ भी काम किया है. असीम अजहर ने सिंगल्स भी निकाले. उस टाइम पर उनकी सिंगल्स इतने काम नहीं कर रहे थे जितने अब कर रहे हैं. बिकॉज पीपल नाउ अंडरस्टूड कि असीम अजहर जो है ये बंदा सोलो बहुत बढ़िया काम कर लेता है. हालांकि इन्होंने रैप में भी बहुत बढ़िया काम किया है, मगर असीम अजहर का गाना जो आरजू है जिसका नाम ब्यूटीफुली डन. इस गाने में जैसे मैं कहता हूँ कि आजकल स्टोरीज मिसिंग है. सो इफ अ सॉन्ग हैज अ स्टोरी, ये बहुत रेयर केस है, लेकिन इसमें वो बात है, वो कहानी है.

0: जो आप गानों में तलाशते हैं। होता है ना, कुछ गाने सुनते हैं आप फॉर द वाइब, है ना, वाइब आती है आपको, और कुछ गानों को आप समझ रहे होते हैं, और समझ के जब वाइब आती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर गाना जो है ना, आज के गानों की भीड़ में जहां गाने आते जाते रहते हैं, उसमें ऐसे गाने जहन में अटक जाते हैं। ये उन्हीं में से एक गाना है, आरजू बाय असीम अजहर। दिस इज ऑन द 7th नंबर हमारे टॉप 10 की लिस्ट में। ओके, नाउ एट नंबर 6, 7 के बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं, असीम अजहर फिर से आ गए। देखो मैं एक और बात कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं, कोई अगर ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचा सके, कोई रिश्तेदार, कोई कजन, चाचा फूफा का लड़का हो जो जानता हो असीम अजहर को, इनको कोई बताए कि एल्बम निकालें, असीम अजहर साहब जो है अपने टैलेंट को, मैं नहीं कह रहा वेस्ट कर रहे हैं, बट ही नीड्स टू मेक एन एल्बम अर्जेंटली। इस बंदे में बात है, ये EP एल्बम या LP कुछ भी निकाल सकते हैं, एंड मैं बता रहा हूँ आते ही वो जरूर चलेगी। ऐसे आर्टिस्ट के साथ क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, पर वो वेट करते हैं कि जब मेरा बजट हो जाएगा, जब मैं 1-2 साल तक बिना किसी के पास काम के कमा पाऊंगा, तब मैं अपने एल्बम बनाऊंगा। एंड आई थिंक असीम अजहर उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। असीम अजहर कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एक एल्बम वो बना ही सकते हैं। जब वो बनाएंगे, मैं सबसे पहला बंदा हूं जो आपको ये कहता है, वो सुनाई दे रहा है कि वी नीड एन एल्बम फ्रॉम असीम अजहर, बिकॉज जब वो अकेले अपने पेज पे डाल रहे होते हैं गाने, तो गानों में भाई कुछ खास ही होता है। दैट क्रिएटिव फ्रीडम इन हिज हेड रियली रियली वर्क्स। तो नंबर 6 पे भी असीम अजहर है, गाना है तू है वही।
1: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।
0: एंड इस गाने की बहुत सारी लाइंस हैं जो वायरल हुई हैं, इसका जो कवर आर्ट है वो भी वायरल हुआ है, पर बेसिकली जो गाने की लाइंस हैं वो बहुत वायरल हुई हैं, जो वो आएंगे तो आप समझ जाएंगे खुद ही। तो ये है नंबर 6 पे, तू है वही बाय असीम अजहर। एंड प्लीज अगेन, दैट एल्बम थिंग, आई रियली वांट कि असीम अजहर साहब जो है वो एक एल्बम निकाले, भले उसमें कोलैबोरेशन हो, मगर ही शुड बी देयर, हैं ये बात है। अब बढ़ते हैं आगे, गाना नंबर 5, कुंवर साहब का गाना। मैंने ये 2 मरतबा शिकायत करी, 3री मरतबा भी कर देता हूँ, गाना यार बहुत प्यारा है, और जब प्यारा गाना हो जल्दी खत्म हो जाए बड़ा दुख होता है, 2 मिनट के आसपास ये गाना खत्म हो जाता है। बट गाने के अंदर बात, गाने के अंदर पोटेंशियल है कि गाना आगे जाए। ये गाना जो है एक ईजी पंजाबी और हिंदी को मिक्स करता है, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, वाइब भी है गाने की, पर एक और मुखड़ा होता, अंतरा होता तो मजा आ जाता। मतलब गाना भी 2 मिनट समथिंग का है, इट शुड हैव बीन क्लोज टू 3 मिनट से 3 मिनट से थोड़ा सा ऊपर, बढ़िया जाता, अभी भी बढ़िया है, तभी लिस्ट पर शामिल है। तो नंबर 5 पे है पीछे तेरे बाय कुंवर साहब, एंड आई लव्ड इट। अगर आपने गाना नहीं सुना है अभी तक, या आपकी फीड में नहीं आया है अभी तक, तो लिसन टू दिस ट्रैक FM 107 पर, उसके बाद एक काम कीजिए, जब आप हमारे पास सुन लेंगे उसके बाद जाके इसका वीडियो देखिएगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि गाने में वो बात है जो वीडियो को उतारी है। कई बार क्या होता है, लिरिक्स और वीडियोस मैच नहीं करते, बट इन दिस केस एवरीथिंग इज मैचिंग, वाइब भी मैच हो रही है, बहुत ही बढ़िया गाना है पीछे तेरे कुंवर। अब जरा जो है मैं लिस्ट को एक बार बता देता हूं, तो नंबर 10 पे है सादगी स्टीवन बैन, नंबर 9 पे उछलम बकत, नंबर 8 पे कहर धमाल से, नंबर 7 पे आरजू असीम अजहर साहब, नंबर 6 पे तू है वही अगेन असीम अजहर, एंड नंबर 5 पे पीछे तेरे कुंवर साहब का गाना, साहब मैंने लगा दिया, कुंवर का गाना है। बाकी अब जो हम आगे बढ़ेंगे 432 की तरफ, एंड 1 भी बता दूंगा आपको। तो ये जो आने वाले गाने हैं, इनमें से हो सकता है आपको कोई पसंदीदा गाना हो, और अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया है कि नंबर 1 पे कौन सा गाना है, तो बताइएगा 666-22-107 पर, जाना आपने यानी बेस्ट जगह पर है। FM 107 टॉप

0: FM 107 Top 10.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: FM 107 Top 10।
2: वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहावाला कबीर FM 107 पे एंड दिस इज टॉप 10 दिस वीक। अब बारी है गाना नंबर 4, 3 और 2। एक काम कर रहे, चारों तीन बताता हूं या सारी बता देता हूं। चलो नंबर 4, 3, 2, 1 सबसे टॉप के गाना। तो नंबर 4 पे जो गाना है, ये गाना मैंने अभी रिसेंटली सुना। गाने के अंदर जो स्टोरी है मुझे गाने की याद दिला दी है। बापू जिम्मेदार कितों लेके दे विकार। आई नो उसकी वाइफ थोड़ी ज्यादा सादी है, इसकी इतनी भी सादा नहीं है, बट ब्यूटीफुल ट्रैक मुझे बड़ा पसंद आया। एल्विश यादव, सिमरत कौर, रंधावा और हर्ष, ये ऐसे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जिनमें गानों में कुछ होता है देखने के लिए। वरना आजकल फ्लैशी वीडियोस बना दो, डाल दो किसे पड़ी है, मगर इसमें वो सब कुछ है जो अगर आप तलाशेंगे तो आपको पता लगेगा। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक। प्योर पंजाबी वाइब है, पंजाबी पटियाला सूट भी है जी इसमें, और मौज आ जाएगी अगर आप वीडियो देखेंगे इसकी ना। तो हो सकता है आपके अंदर का जो एक कॉलेज का लड़का है वो जाग जाए इस वीडियो को देख के, बिकॉज इसके जो लिरिक्स हैं, इसकी जो वाइब है वो आपको वहाँ पे लेके जाएगी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लोग एक दूसरे को नहीं ढूंढा करते थे, ये उस दौर की बात है जब लोग एक्चुअली में एक दूसरे को ढूंढा करते थे, तलाशते थे और फिर समझ नहीं आ पाते थे कि देखते कैसे रहे। वो बेचैनी को ये गाना बहुत अच्छे से उतारता है और गाने का नाम है साडी सुन। भाई बहुत हैप्पी फेसेस हैं गाने में, ब्यूटीफुली सॉन्ग एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक। आजकल मेरे गाड़ी में यही बजा करे भाई, बड़ी अच्छी वाइब देता है गाना। तो नंबर 5 पे साडी सुन, सॉरी नंबर 4 पे है साडी सुन, एल्विश यादव और सिमरत कौर रंधावा, साथ में हर्ष एंड अंशुल गर्ग और नस्सी। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नंबर 3 पे अपनी जगह पे बना हुआ, अभी तक इसकी रील्स बन रही है, अभी तक ये वायरल हो रहा है, अभी तक ये टिकटॉक पर है और अभी तक इसके हुक स्टेप सिखाए जा रहे हैं। मैंने छोड़ो, इस गाने के सिंगर ने भी सोचा नहीं होगा कि गाना इतना उधम मचा देगा। चरणप्रीत साहब का नाम इससे पहले, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना है, मैंने बहुत पहले सुना था एंड उनके गाने वायरल हो जाएंगे, नेवर थॉट ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड आर्टिस्ट, आई एम जस्ट सेइंग चरणप्रीत भाई, मुझे लगा था ये हार मान चुके होंगे, चले गए होंगे क्योंकि ये ज्यादा गाने बना नहीं रहे थे। पर चरणप्रीत और बादशाह का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है इस गाने में, बन जा तू मेरी, आए हाय हाय क्या हुक है भाई। बन जा तू मेरी, बन जा, बन। आधी जान तो भाई इस गाने के हुक ने ले ली थी, हमने तो बेरा, अगर हुक बढ़िया चल ले ना भाई तो फिर गाना भी बढ़िया चल ले। इस गाने में तुमने एक और चीज नोटिस की होगी, इसका जो डांस स्टेप है ना, वाह बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया हुक लाइन है, बहुत बढ़िया हुक स्टेप्स हैं। एंड दिव्या अग्रवाल जिन्होंने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है, उनका करियर बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है भाई। और आसी जिन्होंने इस गाने परफॉर्म किया है, जो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं, अपेरेंटली दैट इज द यूएसपी शी इज कैरिंग। तो

उन्होंने इस गाने पर डांस किया है, उनके खुद के वीडियोज हैं बादशाह को चरणप्रीत को ये गाना सिखाते हुए. बट मैन आई लव दिस ट्रैक. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस साल या पिछले साल आने वाले सालों में ऐसा हुक गानों में मिलेगा. मैं तो इमरान हाशमी की अवारापन 2 से उम्मीद कर रहा था. लोग कह रहे होंगे आ गया ना अवारापन पे, भाई आ गया, मुझे उसी से उम्मीद है. पर इस गाने ने मेरी उम्मीद से ज्यादा दिया है. इस गाने में जो हुक लाइन है एब्सोल्युटली किलर. बहुत कम गानों में आजकल ये सुनने को और देखने को मिलता है जहाँ पे हुक लाइन आप गाते चले जाते हैं साथ साथ. वो जो क्या कहते हैं उसको, जो मेलोडीज होती हैं गाने की, वो आजकल मिलती नहीं है, वो नहीं मिलता है. तो इस गाने में वो मिलेगा आपको. तो बन जा तू मेरी, बन जा वैसे गाने का नाम है, और चरणप्रीत और बादशाह ने इस गाने को परफॉर्म किया है. वंडरफुल रैप एंड अमेजिंग इलेक्ट्रिफाइंग लिरिक्स, आई लव्ड इट. तो बन जा है एट, बन जा तू मेरी एट नंबर 3 ऑन द लिस्ट. अब ये नंबर 2 पे आते हैं. नंबर 2 पे जो गाना है ये भी एक फैन सर्विस है, लेकिन अच्छी वाली फैन सर्विस. आई एम नॉट सेइंग कि पिछले वाली फैन सर्विस अच्छी नहीं है. ऊंचा लंबा कद भी अपनी जगह बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें एक्चुअली में कुछ किया गया है. क्योंकि ये गाना फिट करना कहने को बड़ा आसान है कि ठीक है ये गाना ऐसा है कि दो तीन चार दोस्त मिले हुए बैठे हुए और बात कर रहे हैं, बंधु हो तुम ही, सका तुम ही, और गाना खत्म हो जाएगा. नो, दे डिड अ वेरी गुड जॉब विद द ट्रैक. एंड इस गाने को जिस तरीके से रिप्रोड्यूस किया गया है, इस गाने को वापस रीमेक किया गया है, और फिर उसका जो जो उसको वीडियो में उतारा गया है, इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. बहुत ही सटल वे में, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं किया कि गाना खराब ही हो जाए, आपकी मेमोरी से इरेज ही करना चाहें आप. एंड कॉकटेल 2 का ये गाना भी बहुत बहुत बढ़िया है. आई नो कृति सैनन, रश्मिका, शाहिद कपूर है इसमें, वो आपको याद आएंगे वापस, दीपिका पादुकोण और डायना और साथ में सैफ अली खान. बट ये फैन सर्विस बहुत बढ़िया है. ऐसी फैन सर्विस का मैं कायल हूँ. ऐसी फैन सर्विस होनी चाहिए जहाँ पर आपको गाना कुछ याद भी कराए, जहाँ पर गाना खुद भी बढ़िया हो, और जहाँ पे गाने पे फिल्माया गया जो वीडियो है वो भी आपको लगे हाँ यार यहाँ इन्होंने काम किया. I will not comment on the movie because I don't think movie इतनी कोई खास है. पता नहीं क्यों बनाई, क्यों शायद कपूर को कोई अच्छी स्क्रिप्ट दे दो यार. ठीक है, I will not rant about it क्योंकि मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ. बट गाना जो है, गाना बहुत बढ़िया है. बंधु इज एट नंबर 2 ऑन द लिस्ट. ऑल राइट, तो नंबर 1 टॉप गाने से पहले जरा रवा कर लेते हैं पूरी लिस्ट को. तो नंबर 10 पे है सादगी, स्टीवन बेन का गाया हुआ गाना. एंड बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा गाना है. मैं सोच रहा हूँ ये गाना आएगा जरूर आने वाली किसी मूवी में, या तो उसका कोई कोक स्टूडियो टाइप का वर्जन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा. फिर आते हैं नंबर 9 पे जिसपे था ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू जंगल से. सीक्वल पे सीक्वल, मगर चलो गाना एज अ फैन सर्विस, इट रियली वर्क्ड इन द फेवर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो ठीक है. ऊंचा लंबा कद एट नंबर 9. अब नंबर 8 पर जाते हैं जो कि है कहर, गुरु रंधावा. ही नोज हिज थिंग, उन्हें पता है गाना बनाऊंगा, रील पर डलेगा और सबके सब नाचेंगे. वही हुआ है एग्जैक्टली इस गाने के साथ. उन्होंने अपने ही गाने की ट्यून निकाल के उसे यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ा सा सटल वे में चेंज किया है, कत्ल का कहर कर दिया है, और गाना बहुत बढ़िया है. इज एट नंबर 8. भाई साहब नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है. इसके बाद है नंबर 7 पे और 6 पे, दोनों पे असीम असर है. नंबर 7 पे है आरजू, मैं स्टोरी लाइन का खायल हूँ इस गाने की. एंड नंबर 6 पे है तू है वही, अगेन असीम अजहर, फैन ऑफ हिज वर्क. एंड आई थिंक एल्बम जल्दी लाएंगे, ये लानी भी चाहिए इनको. फिर आते हैं नंबर 5 पे पीछे तेरे, कुंवर भाई साहब का गाना है ये. नंबर 4 पे है साडी सुन, एल्विश यादव एंड सिमरत कौर रंधावा, साथ में हर्ष नुस्से और अंशुल गर्ग. ये गाना आजकल मेरी गाड़ी में चलता है भाई. एक तो ये मुझे चीज़ा चंडीगढ़ ले जाता है, फिर दूसरी चीज़ मुझे कॉलेज में ले जाता है, तीसरी चीज़ वो जो इनोसेंस होती है या हुआ करती थी बिना व्हाट्सएप और बिना सोशल मीडिया की, उस एरा में कहीं ना कहीं आपको ले जाता है. एंड इट इज़ ब्यूटीफुली संग, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे जब आप वीडियो में देखेंगे तो आपको खुद वाइब आने लग जाएगी कि हाँ यार बात तो है गाने में. एंड इसके बाद जो गाना है वो अपने हुक स्टेप्स की वजह से और अपनी हुक लाइन की वजह से, दोनों की वजह से फेमस है. बादशाह का रैप एक नंबर है, चरणप्रीत के लिरिक्स, चरणप्रीत का गाया हुआ गाना एक नंबर है. आसी जिन्होंने डांस किया इस पे, ऐसी आसी क्या कहते हैं उनको, AHSI, मैं उनका भी फैन हो गया इस गाने के चक्कर में. क्या तो उन्होंने किया है. कोरियोग्राफ्ड बाय दिव्या गोयल, मैं उन्हें भी क्रेडिट दूंगा क्योंकि अगर वो इस गाने का हुक लाइन ना देती तो गाना तो हिट होता, लेकिन ये डबल ट्रिपल हिट कराना जो है वो हुक स्टेप की वजह से हुआ है. एवरीबडी इज ट्राइंग वो हुक स्टेप करना.

0: बढ़ जा
1: पर नंबर तीन पे, ठीक है, माइंड माय सिंगिंग जोश जोश में निकल जाता है, ठीक है। एंड नंबर टू पे, नंबर टू पे है कॉकटेल टू का गाना, गाना है बंधु 2.0, तुम ही हो बंधु सगा तुम्हें, याद है ना। तो गाने को बर्बाद नहीं किया गया है, जबरदस्ती का रिमिक्स, जबरदस्ती का EDM नहीं डाला गया है, गाना काम करता है और गाना आपको नॉस्टैल्जिक भी करता है, गाना आपको पर्दे पर भी अच्छा लगता है जब आप इसे स्क्रीन पे देखते हैं, मतलब फिल्माया भी उतना ही बेहतरीन तरीके से गया है। सो नंबर टू पे है बंधु 2.0 कॉकटेल टू से। नाउ एट नंबर वन द अनडिस्प्यूटेड सॉन्ग ऑफ द वीक एंड द अदर वीक, ये सॉन्ग अपनी थ्रोन छोड़ने को तैयार नहीं है जब तक कोई बहुत ही बोम्बास्टिक गाना नहीं आ जाता। गाना एट नंबर वन ऑन आर लिस्ट टॉप टेन में है माशूका कॉकटेल टू से। गाना जो है इतना लेड बैक है कि अच्छा लगता है, कुछ गाने गाए जाते हैं ना वो, ये जो लेड बैक एटीट्यूड है गाने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाना जो है ओरिजिनल है, थैंकफुली इसमें कोई भी रीमेक रीमेड ऐसा कोई वर्जन नहीं है। ओरिजिनलिटी के 10/10 नंबर दूंगा। स्पेनिश सिंगर से जो गवाया है उसको भी भाई साहब मैं 10/10 नंबर दूंगा। फिल्म आया बहुत बढ़िया गया है, शायद कपूर बहुत बढ़िया लग रहे हैं। माशूका ओरिजिनलिटी के चक्कर में पूरे नंबर ले जाती है एंड माशूका का गाना हैज द रिकॉल वैल्यू ऑन यूट्यूब ऑन स्ट्रीम्स ऑन रेडियो एवरीवेयर। सो माशूका कॉकटेल टू से एट नंबर वन ऑन आर लिस्ट, बेहतरीन गाना। तो ये थी हमारी लिस्ट टॉप 10 की एंड आप इससे अग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, ऑफ कोर्स डिसएग्री भी करेंगे अग्री भी करेंगे बिकॉज समटाइम्स गाने आ जाते हैं बीच में। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सकता कोई नया गाना बीच में आ गया हो जो हमने ऐड ना किया हो, बट आप बताते रहिएगा सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, आपके मैसेजेस के मैं इंतजार में रहूंगा। आई रियली वांट टू नो कि कौन सा गाना आपके दिल में जगह बना चुका है, हो सकता है कोई जैसे हमारे कतर के इन्फ्लुएंसर कहते हैं कोई हिडन जेम है आपके पास, भेज दीजिएगा। Let us have a look के कौन सा गाना है जिसे आप hidden gem मान रहे हैं आजकल। So 666-22-107 ये नंबर है, let me know कि कौन सा गाना जो है according to you is a gem और हमारी लिस्ट में अभी तक नहीं है, या कौन सा गाना आपको लगता है कि लिस्ट से बाहर हो सकता है। 666-22-107 is the number and it's time for me to sign off। बड़ा मजा आया सस्पेंस बना के लिस्ट बता के। अब इंशाल्लाह अगले टॉप 10 में मिलूंगा आपसे। आई रियली होप कि आवारा पंटू के गाने आ जाएं, और जब आ जाएंगे तो फिर लिस्ट तो फिर पूरा का पूरा रिफाइन करना ही पड़ेगा। बट फॉर नाउ दिस इज दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ, आपसे ज्यादा चाहूंगा अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मां सलाम। FM 107

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ओनली ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन लाइफस्टाइल हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट को बेटर बनाती हैं। साथियों, आज का टॉपिक है इको स्विच इन रमदान, यानी कि फूड वेस्ट कंट्रोल। रमदान साथियों एक ऐसा मुबारक महीना है जहां रूहानियत, जेनरोसिटी और शेयरिंग इज केयरिंग पर फोकस किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी महीने में ग्लोबली फूड वेस्ट भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली इफ्तार बुफेज और मैं कह लूं कि ओवर प्रिपरेशन की वजह से ये मसला होता ही होता है। साथियों, रिसर्च के मुताबिक रमदान के दौरान कई मुसलमान कंट्रीज में, कई मुसलमान ममालिक में फूड वेस्ट 20-50% तक बढ़ जाता है, जो बिल्कुल इस महीने की इंटेंशन के ऑपोजिट है, क्योंकि रमदान का असली मैसेज है मॉडरेशन और ग्रेटिट्यूड। जरा सोचिए ना साथियों, एक अफ्तार टेबल है जहां जो है खजूरें, समोसे, पकोड़े, जूस, चावल, डेजर्ट्स, बहुत कुछ पड़ा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। सब लोग पहले थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, लेकिन एंड में कई डिशेस अनटच्ड रह जाती हैं। और क्या होता है, वो सीधा या तो फिर फ्रिज में चली जाती हैं, या तो फिर कभी कभी डस्टबिन में भी जाती हैं। साथियों, इको स्विच पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम हॉस्पिटैलिटी को ओवर कंजम्पशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है ना, एक फैमिली अगर सिर्फ 2-3 एक्स्ट्रा डिशेस कम बना ले तो वो इजीली 30% खाने का वेस्ट रिड्यूस कर सकती है विदाउट अफेक्टिंग इफ्तार प्राइसेस। अच्छा, मजे की बात ये है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट होता है, और रमदान के महीने में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में वेस्ट स्पाइक नोटिस किया जाता है। साथियों, एक एवरेज इफ्तार बुफे में प्लेट वेस्ट 30% तक होता है, स्पेशली व्हेन वैरायटी इज टू मच। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर सिर्फ 25% हाउसहोल्ड्स रमदान में फूड वेस्ट कंट्रोल कर लें तो हम कह सकते हैं कि भाई मिलियंस ऑफ मील्स सेव किए जा सकते हैं, वो भी ग्लोबली। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक रोटी या ब्रेड को वेस्ट करना सिर्फ फूड वेस्ट नहीं, बल्कि उस प्रोडक्शन में यूज होने वाली जो पानी, एनर्जी और लेबर है उसे भी वेस्ट करना है। अब आप कहेंगे सफा, हाउ इको स्विच हेल्प्स? तो भाई, रमदान इज इक्वल्स टू माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस। साथियों, इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, रमदान को सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी बनाएं। जब हम फूड प्लानिंग और पोषण कंट्रोल अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ वेस्ट नहीं कम करते साथियों, बल्कि ग्रेटिट्यूड भी इंक्रीज करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जब लोग प्लेट साइज कम कर देते हैं तो उनका फूड वेस्ट ऑटोमेटिकली 20-25% तक रिड्यूस हो जाता है। मतलब सिर्फ प्लेट का साइज चेंज करने से बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। जरा सोचिए, रमदान के स्टार्ट में आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई पूरे महीने का स्टॉक ले लेना है। रिजल्ट क्या होता है, फ्रिज फुल हो जाता है लेकिन आधे ही आइटम्स यूज हो पाते हैं, या इफ्तार के लिए 6-5 डिशेस आप प्लान कर लेते हैं लेकिन फैमिली तो आपकी सिर्फ 3-2 डिशेस में ही पूरी हो जाती है, वो खाना ही पूरा खा नहीं पाती। देखिए, इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि रमदान में प्लानिंग और सिंप्लिसिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कम डिशेस लेकिन प्रॉपरली कंज्यूम होना ज्यादा सस्टेनेबल और मीनिंगफुल होता है। इसी के साथ अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं रमदान को लेकर। साथियों, पहली बात तो ये कि भाई देखें, अफ्तार प्लानिंग सिंपल रखें, 2-3 मेन डिशेस इनफ होती हैं। दूसरा, छोटी प्लेट्स यूज करें ताकि ओवर सर्विंग अवॉइड हो सके। जितनी बड़ी प्लेट होती है हमारा बस चले तो हम तो भाई पूरी पूरी प्लेट ही भर लें और फिर होता ही है कि बाकी का खाना बच जाता है। तीसरी चीज ये कि जो बचा हुआ खाना होता है उसी से अगले दिन की जो थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएं और अगले दिन के मील्स उसी को रीयूज करके प्रिपेयर करने की कोशिश करें। जैसे आपने खाली प्लेन चावलों से कोई आपने चाइनीज राइस बना लिए, या उन्हीं राइस के साथ आपने कोई साथ में करी कर दी, या आपने कोई रैप कर लिया। चौथी चीज ये कि बुफे स्टाइल सर्विंग अवॉइड करें, घर पर इंडिविजुअल सर्विंग्स प्रेफर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड डोनेशन या शेयरिंग कल्चर अडॉप्ट करें, बचे हुए खाने को वेस्ट करने के बजाय डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि रमदान का कोर प्रिंसिपल मॉडरेशन है और वही सस्टेनेबिलिटी का भी कोर है। जब हम कम लेकिन इनफ माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो हम एनवायरमेंट और अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज दोनों को अलाइन कर देते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हाउसहोल्ड्स रमदान में ना, जो घर रमदान में अपने खाने की प्लानिंग कर लेते हैं ना पहले से, उनका खाने का जो वेस्टेज है वो बाकी महीनों से और भी ज्यादा कम हो जाता है। मतलब ये हैबिट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करती है। साथियों, आखिर में इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि रमादान का असल मकसद ज्यादा बनाना नहीं होता, बल्कि बेहतर समझना है। हर प्लेट जो वेस्ट होती है वो सिर्फ खाना नहीं होती, बल्कि रिसोर्सेज और नेमतों का भी लॉस होता है। तो इस रमादान एक छोटा सा इको स्विच जरूर करें। क्या मैं इतना ही बना सकता हूँ जितना मैं एक्चुअली में कंज्यूम करूंगा? इसी के साथ साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर इफ्तार सिर्फ मील नहीं बल्कि एक माइंडफुल चॉइस होती है। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे सलाह ज़करिया के बारे में। सलाह कतर के उभरते हुए फुटबॉल गोलकीपर्स में शुमार किए जाते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कतरी फुटबॉल में अच्छी पहचान बनाई है। उनकी रिफ्लेक्सेस, शॉट स्टॉपिंग और पेनल्टी एरिया में कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें मुस्तकबिल का अहम गोलकीपर माना जाता है। सलाह ज़करिया ने कतर स्टार्स लीग के मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और मुश्किल लम्हों में टीम के लिए अहम बचाव किए। उनका ताल्लुक कतरी क्लब से रहा है जहां उन्होंने डोमेस्टिक फुटबॉल के सख्त मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी परफॉर्मेंस से कोचेस और फैंस का भरोसा हासिल किया। ट्रेनिंग और डिसिप्लिन उनकी कामयाबी के बुनियादी असबाब हैं और QSL में खेलते हुए उन्होंने तजुर्बा हासिल किया जो उनकी टेक्निकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। सलाह ज़करिया को कतर के फुटबॉल निज़ाम का एक ऐसा हिस्सा समझा जाता है जो नए गोलकीपर्स के लिए मिसाल बन सकता है। पिछले दिनों फुटबॉल वर्ल्ड कप में सलाह ज़करिया कतर के स्क्वाड में थे, ये उनके लिए एक अहम तजुर्बा साबित हुआ। अगर वो इसी तरह मेहनत और मुसलसल बेहतरी परफॉर्मेंसेस का सफ़र जारी रखें तो मुस्तकबिल में क्लब और कौमी सतह पर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन ऑगमेंटेशन एंड बायो एनहांसमेंट की। ह्यूमन ऑगमेंटेशन और बायो एनहांसमेंट एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ इंसान अपनी नेचुरल एबिलिटीज को टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव करता है। इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ अपनी नेचुरल लिमिट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और हेल्थ को अपग्रेड कर सकेगा। आज के दौर में, हाँ, आज के दौर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आज के दौर में ना इस कॉन्सेप्ट को समझना हल्का सा चैलेंजिंग जरूर लगता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। आज के दौर में भी स्पीड में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन फ्यूचर में ये और एडवांस्ड होकर इंसान और जो मशीन है उसके बीच डिफरेंसेस को और कम कर देगा। ह्यूमन ऑगमेंटेशन ये है क्या, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ह्यूमन ऑगमेंटेशन का मतलब है इंसानी बॉडी को टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हांस करना। ये इन्हांसमेंट फिजिकली, मेंटली और सेंसेस को भी करना है। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल लिम्स, ब्रेन इम्प्लांट्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, ये सब चीजें इंसान को स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर बनाती हैं। अब मैं बात करूंगी इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी वो डिवाइस है जो इंसानी बॉडी के अंदर लगाई जाती है। ब्रेन इम्प्लांट्स, शायद आपने वर्ड सुना है पहले से, या BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दिमाग को डायरेक्टली मशीन्स के साथ कनेक्ट कर देती है। इंसान सिर्फ सोचे कि कंप्यूटर या फिर रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट जो है वो पैरालिटिक है या उसको पैरालिस हो चुका है, पैरालाइज्ड है, ऐसा पेशेंट अगर रोबोटिक हैंड मूव करता है तो इसको हम कह सकते हैं BCI, या इसको हम कह सकते हैं इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी के थ्रू होना। लोग बिना बोले कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज ये सुनकर थोड़ा सा हम शायद उसे उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, बट फ्यूचर में ऐसा ही होगा। जैसे पेसमेकर या फिर और भी इम्प्लांट्स हैं जो हियरिंग और हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, फ्यूचर में ये इम्प्लांट्स और ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, मेमोरी इम्प्रूव करेंगे, लर्निंग को फास्ट कर देंगे, डिजीजेस को पहले ही डिटेक्ट कर देंगे। वहीं पर कुछ और भी चीजें ऐसी सामने आएंगी, वो उस तरह के जैसे बायोनिक ऑर्गन्स, वो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होंगे जो नेचुरल ऑर्गन्स की जगह ले सकते हैं। जैसे बायोनिक लिम्स, आजकल एडवांस प्रोस्थेटिक आर्म्स और लेग्स अवेलेबल है मार्केट में, जो मसल्स या फिर ब्रेन सिग्नल से कंट्रोल्ड होते हैं। बायोनिक लिम्स जो है वो कहीं ना कहीं नेचुरल लिम्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इंसान सुपर स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है, डिसेबल्ड लोग नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पे फिलहाल मेंशन करना नहीं चाहती हूँ। और हाँ, एक और चीज, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, बायो हाइब्रिड ऑर्गन्स जो है

0: आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन हैं ये ऑर्गन फ्यूचर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल हार्ट या फिर लैब ग्रोन किडनीज इससे लोगों की जिंदगी लंबी और हेल्दी हो सकती है वहीं अगर मैं बात करूं तो एक्सोस्केलेटन्स एक रोबोटिक सूट है ये बेसिकली आने वाले टाइम में बड़ा कॉमन होगा ये सूट जो इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा वर्कर्स हैवी वेट आसानी से उठा सकेंगे सोल्जर्स स्ट्रॉन्गर और फास्टर हो सकेंगे पेशेंट्स जो है वो रिहैब में बेहतर वॉक कर सकेंगे फ्यूचर में ये सूट हर जगह हर एक को सूट करेगा और अवेलेबल भी होगा वहीं एक और चीज जो हमें और आपको चौंकाएगी वो है कॉग्निटिव एनहांसमेंट्स कॉग्निटिव ऑगमेंटेशन का मतलब है सोचने की आपकी जो ताकत है जो एबिलिटी है जो क्षमता है उसे भी इम्प्रूव करना ये टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव की जाए फोकस और लर्निंग स्पीडी बनाया जाए डिसीशंस बेहतर आप ले सकें और फ्यूचर में शायद इंसान इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन में डाउनलोड करेगा इधर उधर डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है लैंग्वेजेस इंस्टेंटली सीख जाएगा आज की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुपर इंटेलिजेंस अचीव कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट जिसका थॉट आज हम सबके जहन में होता है और हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो पाएगा वहीं पर ह्यूमन ऑगमेंटेशन के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं जैसे हेल्थ इम्प्रूवमेंट डिजीजेस का इलाज इंसान को समझ में आएगा आसानी से होगा जिससे आपकी लाइफस्टाइल जो है या लाइफ स्पैन जो है वो इम्प्रूव करेगा वहीं डिसेबिलिटी का एक सलूशन निकल आएगा डिसेबल्ड लोग नॉर्मल जिंदगी से भी बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे स्ट्रॉन्गर स्मार्टर ह्यूमंस ह्यूमन अपनी नेचुरल लिमिट से आगे बढ़ सकते हैं ज्यादा लाइफ होगी बायो एनहांसमेंट एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है लेकिन इसके फिर अपने कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी हैं क्या इंसान एथिकल इश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो क्या वाकई इंसान अपनी बॉडी मॉडिफाई करना चाहेगा क्या ये नेचुरल है या फिर नेचर के साथ छेड़छाड़ आई मीन इनइक्वालिटी अगर सिर्फ अमीर लोग एनहांसमेंट अफोर्ड कर सकेंगे तो सोसाइटी में कितना बड़ा गैप आ जाएगा फिर आपकी अपनी आइडेंटिटी आई मीन जब इंसान मशीन से मर्ज हो जाए तो सवाल उठता है कि वो अब प्योर ह्यूमन है कि नहीं है पता नहीं इम्प्लांट्स या फिर टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है जो डेंजरस भी हो सकती है तो सेफ्टी का रिस्क तो बना ही हुआ है ना देखिए फ्यूचर में हमें ऑगमेंटेशन एवरीडे लाइफ का हिस्सा तो बनाना ही पड़ेगा स्मार्ट इम्प्लांट्स जो बॉडी को मॉनिटर करेंगे बायोनिक आईज जो आपकी नाइट विजन्स देंगी जाए फिर ब्रेन चिप्स जो एआई के साथ काम करेंगे और इस पे तो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो भी चुका है बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस भी होने वाला है और हो भी चुका है किसी के साथ ये सब चीजें इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकती है पर क्या इन्हें गुलाम बनाएंगी पता नहीं ह्यूमन ऑगमेंटेशन और बायो एनहांसमेंट एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो इंसान की जिंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है इम्प्लांटेबल टेक बायोनिक ऑर्गन्स जेनेटिक अपग्रेड्स के जरिए इंसान अपने नेचुरल लिमिट अपनी एज से आगे बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ एथिकल और सोशल चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे अगर इस टेक्नोलॉजी को केयरफुली यूज किया जाए तो फ्यूचर में इंसान इससे फायदा उठा सकता है हेल्दी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट हो सकता है और अगर इसे केयरफुली यूज ना किया गया तो फिलहाल दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर इजाजत दूंगी मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों की इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2030.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी
2: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: दोस्तों ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के

0: क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। इस्तकबाल एक बार फिर से आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। और कहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाए और उससे अच्छा रिटर्न आ जाए तो मजा आ जाए। वेल दोस्तों, इस तरह के स्कैम के बारे में हमने कई बार बात करी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे मैं हूं फजील और एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। वेल आज फ्रॉड अवेयरनेस में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्लासेस की। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हमने कई बार बात की है, लेकिन ये है इन्वेस्टमेंट क्लासेस। क्या है ये? तो लोग ना पैसे को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कैसे

0: से वो अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अपने फैमिली की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं बाय अर्निंग मनी। और ऐसे में आजकल इन्वेस्टमेंट क्लासेस भी चलती हैं, और ये क्लासेस कैसे फ्रॉड तक पहुंचती हैं, कैसे आपको स्कैम करने तक पहुंचती हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो आप कहीं सोशल मीडिया पे हैं अगेन, या फिर कहीं से आपको पता चलता है किस तरह की इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करने के तरीकों पर बताया जाएगा, वहां पर बात की जाएगी और अलग अलग कंपनीज में या फिर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कैसे करना है इसके बारे में बताया जाएगा, और आप वहां से अच्छे पैसे भी बना सकते हैं। वेल, ये इन्वेस्टमेंट क्लास शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसको देखकर लगेगा कि इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत पता है। वो आपके साथ वीडियो कॉल पर रहेगा, कुछ 5-7 दिन आपको क्लासेस देगा। वीडियो कॉल पर जब वो बैठेगा तो अच्छे और ऐसे लोगों के साथ बैठेगा जो कोट पहना है, जिन्होंने टाई पहना, चश्मा लगा के ऐसे लग रहे हैं कि कितने बड़े इन्वेस्टर हैं ये। लेकिन होता यह है कि वो आपको 5-7 दिन कोशिश करते हैं कि कैसे आपका भरोसा जीत सके, आप उन पर यकीन करने लगते हैं, वो ऐसी बातें आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट के मुतालिक कि आप यकीन करने लगते हैं, और फिर 7वें दिन 8वें दिन 10वें दिन और फिर इन्वेस्टमेंट क्लासेस के फाइनल डेज में वो एक ऐसे शख्स को बुलाते हैं जो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इनके साथ कर चुका होता है, और वो ये भी दिखाते हैं कि ये इन्वेस्टर हमारा दूसरे मुल्क से है। ये एक और बात है कि खुद बैठे हैं मिसाल के तौर पे किसी और कंट्री में, और दूसरा जो इन्वेस्टर आया जिसने पैसे कमाए हैं इसके साथ, वो किसी और कंट्री में बैठा है, और जानबूझ के ऐसा दिखाया जाता है कि ये दो अलग कंट्री है। उनका बैकग्राउंड, उनकी बात करने का तरीका, उनका लहजा, उनका एक्सेंट जो है वो पूरी तरह से दूसरे कंट्री का साफ दिख रहा होता है, बैकग्राउंड तक साफ दिख रहा होता है कि ये दो लोग अलग अलग कंट्री में बैठे हैं। और ये बात सच है कि दो अलग कंट्री के लोग इस स्कैम को चला रहे हैं आपको स्कैम में या आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। बात आगे बढ़ती है, वो बंदा जो इन्वेस्टर है इस कंपनी में, वो कहता कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैंने इस तरह से इन्वेस्ट किया था, मैंने उस दिन 15 दिन की क्लासेस ली थी, फिर मुझे इस सर ने बताया कि आप ऐसे और इस जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने वो किया और फिर मेरे पास पैसे आ गए। और ये इन्वेस्टर आपसे दो तरीके से इन्वेस्ट करवाना चाहता है, या कहें स्कैम करवाना चाहता है। पहला तरीका कि आप इसी के साथ जुड़कर स्कैम करें, या दूसरा तरीका कि इस कंपनी में, फला कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा और अच्छा रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट का। लेकिन ये एक सबसे बड़ा स्कैम होता है। तो इस तरह के स्कैमर्स का काम यह है कि आपको दो ऑप्शन दिए जाए, दो ऑप्शन देके फंसाने में आसानी ये होता है कि आप दोनों में से किसी एक पर चूज कर सकते हैं, और दोनों इन्हीं के तरीके हैं स्कैम करने के। पहला, आप सोचेंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा डायरेक्ट, मैं इससे क्यों इन्वेस्ट करूं, हो सकता है ये स्कैमर हो। लेकिन जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या पैसा लगाते हैं, वो कंपनी फेक रजिस्टर्ड होती है, उसके रजिस्ट्रेशन आपको फेक दिखाए जाते हैं, उसकी डिटेल्स आपको फेक दी जाती है, उसके लाइसेंस आपको फेक दी जाती है, जबकि वो दूसरे मुल्क में रजिस्टर है भी नहीं। लेकिन फिर दूसरा तरीका यह है कि आप ये सोचते हैं कि 7 या 8 दिन 10 दिन मैंने इससे क्लासेस ली हैं, तो क्यों ना इसी को मैं इस्तेमाल करूं। वो आपको ऑप्शन देता है कि ठीक है, आप एक काम करें, आप मुझे इतने पैसे दे दें और मैं जो हूं आपको रिटर्न करूंगा। सबसे पहले आप छोटा इन्वेस्टमेंट लगाएं, आप 1000 कतरी रियाल या 1000 रुपए इंडियन लगाएं, या 1000 या 2000 पाकिस्तानी रुपीज लगाएं, या बांग्लादेशी टका लगाएं, और आपको लगता है कि इतना छोटा अमाउंट चलेगा। आप छोटा अमाउंट लगाते हैं, आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। आप दोबारा तिबारा जब आप बड़े अमाउंट पे आते हैं, उस वक्त वो बंदा, वो क्लासेस पूरी तरह से बंद हो गई होती हैं, वो जो बंदा है उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, तीसरे शख्स का तो पता ही नहीं जो दूसरे मुल्क से आपसे बात कर रहा था। तो ऐसे में आपके साथ होता है सबसे बड़ा स्कैम। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है, अगेन, लाइसेंस और जो ऑथराइज्ड लोग हैं उन्हीं से इन्वेस्टमेंट की टिप्स लें, उन्हीं से इन्वेस्टमेंट की क्लासेस लें, और इन्वेस्टमेंट हमेशा आप मुल्क के रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्ट करें, या फिर उन एजेंट से बात करें जो लाइसेंस्ड हैं और ऑथराइज्ड हैं। यही तरीका है आजकल के जमाने में नए तरह के स्कैम से बचने का। और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक और मजेदार और नए तरह के स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक सी बात करेंगे सेहत के हवाले से, कि जहां बहुत सी जो मालूमात हैं वो सेहत के हवाले से आप तक पहुंचाते हैं, तो आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही अहम है कि फूड लेबल्स को समझना, यानी खुराक के पैकेट पर तो गजाई अज्जा दर्ज होते हैं या उनकी मालूमात हैं, उनको सही तरीके से पढ़ना और समझना। लिसनर्स, आजकल हम में से अक्सर अफराद जो पैक शुदा जो खुराक है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिस्किट हैं, जूस हैं, सीरियल्स हैं, दही है, चिप्स हैं और इस तरह से और बहुत सारी अशिया, लेकिन क्या हम उनके पैकेट्स पर लिखी मालूमात को पढ़ते हैं? अगर पढ़ते भी हैं तो क्या इन्हें सही तौर पर समझते हैं? फूड लेबल दरअसल हमें ये बताता है कि हम जो चीज़ खाने

0: जा रहे हैं उसमें कितनी तवानाई है, कितनी चिकनाई है, नमक कितना है, शुगर कितनी है, और इसके अलावा जो और गजाई अज्जा हैं वो मौजूद हैं या नहीं हैं, इन मालूमात को समझकर हम ज़्यादा सेहतमंद इंतखाब कर सकते हैं। सबसे पहले लेबल पर मौजूद सर्विंग साइज जो है वो देखना ज़रूरी है कि जो एक बार खाने की मकदार है। बहुत सारे अफराद गजाई मालूमात तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो मालूमात कितनी मकदार के लिए दी गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पैकेट में दो सर्विंग हैं तो अब हम पूरा पैकेट खा लेते हैं तो दरअसल दुगनी कैलोरीज और गजाई अज्जा जो हैं वो हम हासिल कर रहे होते हैं। इसके बाद कैलोरीज पर नज़र डालिए तो कैलोरीज जिस्म की तवानाई जो फराहम करती हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज वज़न बढ़ने का सबब भी बन सकती हैं। और अगर आप वज़न को बैलेंस या मतवाजन रखना चाहते हैं तो कैलोरीज की मकदार पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं फैट्स की। लेबल पर कुल चिकनाई के साथ साथ तो सैचुरेटेड फैट्स या फिर ट्रांस फैट्स भी दर्ज होती है। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं और ट्रांस फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल दिल की बीमारियों के ख़तरे को बढ़ा सकता है, इसलिए उनकी मकदार कम वाली जो अशियाँ हैं उनका इंतखाब कीजिए। इसी तरह शुगर की मकदार भी ज़रूर चेक कीजिए। बहुत सी जो अशियाँ हैं खसूसन मशरूबात हैं, सीरियल्स हैं, स्नैक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है और फिर ज़्यादा शुगर के इस्तेमाल से दांतों की खराबी, ओबेसिटी और डायबिटीज़ के ख़तरे का इजाफा हो जाता है। अब हम आते हैं जो पॉजिटिव जो गजाई अज्जा हैं जैसे कि फूड लेबल्स पर फाइबर, प्रोटीन, विटामिंस और मादनियात की मकदार भी दर्ज होती है। फाइबर हाजमे को बेहतर बनाता है जबकि प्रोटीन जिस्म की नशोनुमा और हमारे मसल्स को मजबूत करती है, इसलिए खरीदारी करते वक्त एक ही किस्म की दो मसनूआत का लेबल आपस में जो है मुवाजना कीजिए। मिसाल के तौर पर दो मुख्तलिफ बिस्किट या दो मुख्तलिफ जूस के पैकेट देखिए तो उसमें कम शक्कर, कम नमक और ज्यादा फाइबर वाली चीज का इंतखाब कीजिए। याद रखिए कि फूड लेबल्स को पढ़ने की आदत आपको बेहतर और सेहतमंद फैसले करने में मदद देती है। चंद मिनट लेबल पढ़ने में सर्फ करना मुस्तकबिल में आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड तक मतवाजन गजा खाइए, लेबल जरूर पढ़िए और सेहतमंद जिंदगी अपनाइए।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
4: ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: एम मंडे

आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

किसी की नहीं सुनी। मज़ीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ज़य्यनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज़ों से कुरान को मुज़य्यन करो। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान गाने के अंदाज में कुरान पढ़े, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी इस्तेताअत के मुताबिक मोहब्बत, खुशू और हुस्न अदा के साथ कुरान की तिलावत करे। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? जेनरेशन टॉक दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज जो मेहमान है मेरे बड़े खासी भाई, इनके बारे में जानेंगे तो पता लगेगा कितने ज़्यादा खास हैं। और पहले भी हमारी मुलाकात होती रहती है, और जैसा हम लोगों का बैकग्राउंड लगता है कि सभी एक ही घर से आते हैं, तो ये बड़ी खास बात है। आज जो मेरे सामने है, आज माँ बेटी की जोड़ी है, बड़ी कमाल की जोड़ी है, क्योंकि पता लगता है बात करने से कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: तो मम्मी जी अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्लेजर कमिंग हियर एंड इंटरेक्टिंग। ओके,
2: थैंक यू सो मच।
3: एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरा नाम डॉक्टर आना सिद्दीकी है। आई वर्क फॉर हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन एज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एडवाइजर।
2: क्या बात है।
3: एंड आई हैव माय डॉटर हियर, मेरी बेटी साथ में आज।
2: डॉटर भी बताइए, अपना नाम बताइए।
4: अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आफिया, आई एम अ मेड स्टूडेंट
2: And I'm 19 years old.
4: Yeah.
2: इतनी सी उम्र में तुम अभी बहुत कुछ करने जा रही हो माशाल्लाह, and I wish you all the best for that. लेकिन कमाल की बात है, तुमने बताया मुझे, जो मुझे शौक लगा, ये बताओ कहाँ पढ़ाई कर रही हो, लोगों को पता होना चाहिए।
4: So, मैं dual degree कर रही हूँ from University of Manchester and University of Alexandria. So it's like a collaboration between two universities and it's good. It's like exposure दो अलग अलग countries का।
2: तुम्हारी वजह से मुझे पता लगा है, पता ही मुझे, I had no idea कि ऐसे भी collaboration होते हैं।
4: बहुत लोग नहीं अवेयर होते हैं।
2: हाँ वही।
4: But it's a really good thing. I'm really enjoying it.
2: Of course. और एक तो है जगह का नाम भी लेने में मजा आता है ना, Alexandria लगता है। नहीं, वेरी गुड। अच्छा तो अब आप पे आ जाते हैं,
4: जी,
2: आप
4: जी,
2: खुद पेशे से डॉक्टर हैं।
4: जी।
2: आपने बचपन से कितना इन्फ्लुएंस किया इसको डॉक्टर बनने के लिए?
3: बिल्कुल नहीं, मैं
2: क्या बात कर रही हूं,
3: मैं नहीं चाहती थी कि डॉक्टर बनूं।
4: She tried her best कि मैं डॉक्टर ना बनूं।
2: अरे क्या बात है।
4: Till I was in 11th,
2: हाँ?
4: 11th में भी मेरा आधा 11th कंप्लीट हो गया था, और तब भी मम्मी कहती थी तुम्हारे पास अभी भी टाइम है,

0: करो, आर्ट्स ले लो.
1: अच्छा
0: जी, आर्ट्स.
2: एक्चुअली आफिया वाज आल्सो कंफ्यूज्ड. ठीक है, मैडम मुझे तो देखते हुए आ रही है, तो इसलिए दैट वाज वन ऑफ द रीजन. लेकिन इसका इंटरेस्ट और इसकी जो पर्सनालिटी थी, तो मुझे लगा ये लॉ एज अ लॉयर या फिर जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन में ज्यादा अच्छा करेगी.
1: तो इसका मतलब तुमने बहुत बहस करी है मम्मी से.
0: इन शॉर्ट यही बोलने का मतलब है, बहस करती है.
2: फिर इनको पायलट बनना था.
1: अच्छा.
2: बीच में पायलट बनने का शौक हुआ था, लेकिन फिर उसको स्टडी किया, फिर सब कुछ सब एंगल से देखा, तो देन शी डिसाइडेड कि नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं जाना और मुझे सर्जन बनना इन फ्यूचर.
1: अच्छा, कितनी इंफ्लुएंस थी तुम मम्मी से, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, वर यू लाइक इन्फ्लुएंस्ड कि लग रहा था कि आप मम्मी कर ही रही हैं?
0: नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत छोटी थी जब मैं मम्मा को डॉक्टर्स अलग एंड
1: आई फेल दैट मैं फिट होती हूँ
0: जी.
1: Inshallah, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि डॉक्टर इतने सब कुछ याद कैसे रखते हैं, you know, tons of things.
0: मैं भी ये सोचती हूँ.
1: अभी भी सोचती हूँ? अरे अब तो मत सोचो, अब टाइम नहीं सोचने का. पर मुझे अब तुम बताओ, अम्मी भी बताएंगी, पर सबसे पहले तुमसे पूछ लेता हूँ, डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी क्यों कहते हैं लोग?
0: It's just
1: कैसे समझ लेता है कोई, मतलब कमाल की बात है ये.
0: हाँ, मतलब we have like short forms and everything.
1: अच्छा, वो short forms बोलते
0: हैं. जी, and बहुत fast fast लिखने की आदत हो जाती है, because you have to like write and memorize.
1: बस वो pharmacist को समझ में आता है वो letter.
0: जी, वो
2: करिकुलम इतना वास्ट हो जाता है, इतनी सारी चीजें हो जाती है कि यू नीड टू स्टडी दिस दैट, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ लिखना है, एग्जाम में सब कुछ जल्दी जल्दी लिखना है, तो आई थिंक वो
1: और दवाइयों के नाम में भी तीन चार सिलेबल्स होते हैं, मतलब वो अपने आप में ही डिफिकल्ट काम है. हाँ, उनको भी बेचारे को उल्टी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना. बड़े बड़े भैया, एक आम इंसान का नजरिया है, क्योंकि हम तो यही मान के चलते है ना. एक और नजरिया मैं रखना चाहूंगा तुम्हारे भी सामने और मैम के सामने भी. अक्सर लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा ने गाड़ी चलाई है तो सेकंड हैंड बहुत बढ़िया बिकती है. सुना है तुमने? आपने सुना होगा.
2: मैंने सुना है क्योंकि आई थिंक डॉक्टर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसीलिए
0: डिसिप्लिन होता है, केयरफुल होता है.
1: मैं सिर्फ बता रहा हूं, लोग ये कहते हैं ये गाड़ी जो है डॉक्टर साहब चलाते हैं, डॉक्टर साहिबा चलाती है, फट से बिकती है. लोग सोचते भी नहीं है.
2: बिल्कुल सही सुना
1: है ना. आई थिंक उसमें किलोमीटर शायद कम चले हुए होते हैं इसलिए भी, क्योंकि
2: हाँ ये

0: मंजिल से घर तो इतना टाइम नहीं होता है कि कहीं और जाए और इतनी ड्राइविंग नहीं होती मुझे लगता है.
1: ओके अब ये तो जनरेशन गैप है, आपने ये जनरेशन गैप दिखाई है, आपका टाइम अलग रहा है, इनका बहुत ही अलग रहा है. How difficult it was initially इनको हैंडल करना, क्या नए जमाने की सबसे दिक्कत आई आपको?
0: आई थिंक हाँ जनरेशन गैप तो है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मेरी और आफिया की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इतना नहीं है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि एक तो शी चोज सेम प्रोफेशन तो वो डिस्कशन ज़्यादा वैसा होता है.
1: Right.
0: और मुझे नहीं लगता कि शी गेव मी सो मच ट्रबल जो मैं सुनती हूँ कि दूसरे टीनेज बच्चे देते हैं. तो आई थिंक इट वॉज नॉट दैट चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि I'm a kind of the person जो मैं बच्चों के से बहुत सारा discussion करती हूँ. I mean, I take their opinion, उनका opinion, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि I didn't wanted her to become a doctor क्योंकि बहुत stressful life होती है based from my experience.
1: ये पहले बार सुन रहा हूँ, I never heard a mom saying this, but ये बहुत commendable चीज़ है, very nice.
0: तो मैं नहीं चाहती थी कि वो इतने stressful environment में जाए, but then she was very much focused और
1: ढीठ भी है मतलब.
0: कि नहीं मुझे इन फ्यूचर मुझे सर्जन ही बनना है, सर ठीक है गो फॉर इट.
1: ओह वेरी नाइस. तो आप तो अपनी जनरेशन अब देख रही हो ऑफ कोर्स. जैसे अगर मैं अपने ही बात करूँ, आई एम अ 90s बॉर्न, आपके टाइम की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी डिडंट एग्जिस्ट राइट, पर तुम्हारे टाइम पे हाउ प्रेशराइजिंग इट इज, आर यू ऑन सोशल मीडिया बाय द वे?
2: या आई एम, बट आई एम नॉट दैट एक्टिव.
1: यू आर नॉट दैट एक्टिव, बट आसपास दिखते हो कि लोग काफी एकदम एक्टिव रहते हैं.
2: जी जी.
1: कभी उठा के अपनी फीलिंग पोस्ट करी तुमने सोशल मीडिया पर?
2: नहीं, बहुत रेयरली. आई फील लाइक सोशल मीडिया इज समवेयर यू नो कि आप अपना आपको एक्सप्रेस तो कर सकते हो. यू डू गेट जज्ड अ लॉट बाय यू नो फ्रेंड्स.
1: तो तुम जजमेंट चाहती नहीं हो कोई?
2: नहीं मैं नहीं चाहती.
1: तो मम्मी को किसी चीज के लिए तुमने प्रेशर्स के मम्मी सीखी है आजकल ये चल रहा है ऐसा कुछ सिखाया जो मम्मी वाज नॉट अवेयर अबाउट?
2: नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. उल्टा मम्मा मुझे प्रेशराइज करती है यू नो कि तुम्हें ये सीखना चाहिए वो. मम्मा इज लाइक वेरी टेक्नोलॉजी,
1: वेरी नाइस. क्या बात है,
2: वो मुझसे ज्यादा यू नो AI यूज करती है.
1: हर बॉल स्टेडियम के बाहर जा रही है यहाँ पे ट्रेन करके ले
0: जाएगा. यहाँ आई थिंक
2: वो मुझे सिखाती है कि मैं कैसे AI यूज करूँ फॉर स्टडीज एंड एवरीथिंग. या
1: ये बड़ा ही रिवर्स उनो घाट चल रहा है. कमाल है. अच्छा तो अभी मम्मी से क्या क्वालिटी आपने सीख ली और क्या सीखनी बाकी, क्या क्वालिटी पसंद है मम्मी की जो?
2: मम्मा एंड आई हैव एज गैप ऑफ 26 इयर्स आई थिंक. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है लाइक पेरेंट और बच्चे के बीच में.
1: 20 साल दुनिया इधर की उधर हो गई है वैसे तो.
2: या बट आई थिंक के यू नो हम दोनों में देयर इज लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स बट इट्स हाउ कैन आई पुट इट.
1: क्या क्या क्वालिटीज मम्मी की तुम्हें पसंद है बहुत की?
2: दोस्तों के पेरेंट्स दे आर वेरी मतलब वो लोग बैठ के बात नहीं करते हैं. आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चे से बात करो यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर फीलिंग्स. एंड पहले मम्मा के साथ मेरा ये होता था यू नो कॉन्फ्लिक्ट कि मैं बोलती थी उन्हें यू नो कि यू हैव टू लाइक टॉक टू मी एंड ऑल. और तब वो इतना नहीं बात करते थे हम लोग. बट देन व्हेन आई एक्सप्रेस्ड यू नो मुझे ये चाहिए
1: और तुम बाहर भी चली गई
2: जी मुझे ये चाहिए मेरे से बात करो एंड ऑल दैट. सो शी लाइक understood that and okay. after that you know we spoke about our feelings, humne boundaries set ki and we respected those boundaries and it's good now.
1: kya kamaal ka combination hai dono ka, aap beti lag rahi hai maa lag rahi hai, bahut hi gazab ka combination hai ye. but mashallah kudos to you ki jis hisab se aapne maturity di hai वो कमाल की है. बहुत कम, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए. बट आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? अब आपकी इंटरव्यू लेना पड़ेगा मुझे.
0: नॉट दैट मच. आई मीन आई एम देयर ऑन सोशल मीडिया बट नॉट वेरी एक्टिव.
1: अच्छा.
0: I'm there on Facebook, Instagram, but then Instagram मुझे use करना नहीं आता था तो आफिया ने मुझे सिखाया. एक वो चीज जो मुझे नहीं आई and I didn't feel the interest in that initially. तो वो मैंने आफिया से सीखा.
1: देखिए आजकल ना एक चीज है कि बच्चे अक्सर माँ बाप को सोशल मीडिया पे एड नहीं करना चाहते because of a fear of like CCTV बन जाएंगे पूछ तरेंगे ये क्या हो क्या गया. तो अगर ऐसा होता if she would have been active on social media, ऐड करती हैं आप इसको प्रोफाइल पे?
0: हाँ बिल्कुल ऐड करती. और अभी भी हम लोग it's a very much transparent thing. बहुत transparency
1: है. आप दोनों में transparent है but usually क्या होता है ना कि बच्चे भी डरते हैं ये नहीं मम्मी मेरे को ऐड नहीं कर सकते
2: भाई. ब्लॉक कर देता है पहले.
1: हाँ मम्मी प्रोफाइल पर है भाई मत बोला करो ये सब समझ रहे हैं आप.
0: बट मैं वॉच रखती जरूर.
1: देखा अब बात निकल

0: उतना तो आई थिंक पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए एक एक एज तक बच्चों की एक्टिविटीज वो तो जरूरी है बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ हाउ यू हैव ब्रॉट अप योर किड्स एंड हाउ इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड द Child.
1: And when she was growing up, शुरुआत में जैसे आजकल भी हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं बच्चे खाना नहीं खाते तो उनके सामने टैब न रखा जाए. Was it the case? क्या कैसे मैनेज किया आपने वो पीरियड when she was
0: आफिया के साथ तो नहीं बट जो मेरा छोटा बेटा है टेन ईयर्स ओल्ड उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है लेकिन अब पहले था लेकिन नाउ आई फील दैट एज ही इज ग्रोइंग वो थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि मैं उसे मतलब बार बार रिमाइंड करती हूँ कि नहीं इतना स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए बट देन आई डोंट प्रेशराइज हिम कि नहीं तुम्हें लेना नहीं है तुम्हें टैब नहीं देखना है तुम्हें फोन आई गिव हिम सम टाइम आई गिव हिम टाइम टू प्ले आल्सो वो बाहर आउटडोर भी खेलने जाता है फुटबॉल खेलता है एंड ही स्पेंड्स टाइम ऑन प्लेइंग गेम्स. अच्छा बहुत से पेरेंट्स को ये होता है ना कि बच्चे टैब पे या फोन पे गेम्स खेल रहे हैं तो दे डोंट फील गुड अबाउट इट बट माई पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट. आई फील कि अगर बच्चा गेम खेलता है मतलब ये तो आपको मॉनिटर करना है कि वो किस तरह के गेम्स खेलते हैं बच्चे लेकिन उससे मुझे लगता है कि फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बच्चे का बढ़ता है एंड आई एनकरेज समटाइम्स आई एनकरेज हिम आल्सो माय हस्बैंड मेरे हस्बैंड लाइक तुम क्यों देती हो उसे फोन क्यों खेलने देती हो गेम उनका नहीं कुछ कुछ चीजों के लिए
1: मगर मुझे भी फील होता है कि बच्चों में कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो बहुत डेवलप होती है फोकस आता है पजल सॉल्विंग होती है बहुत अच्छे गेम्स भी होते हैं और प्रॉब्लम क्या है ना वो एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि इसमें मारधाड़ी होती है दैट इज द प्रॉब्लम.
0: यू नीड टू मॉनिटर कि वो किस तरह किस कौन से गेम्स खेल रहे हैं क्या एक्टिविटीज हैं कि तो इफ यू मॉनिटर दैट आई थिंक इट्स ओके.
1: ओके
2: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर ओनली ऑन एफएम 107.
1: मम्मी से कभी नाराज होती हो तो मम्मी से नाराजगी के टाइम पे क्या करती हो लाइक वो बातचीत बंद हो जाती है बहसबाजी होती है हाउ हैव यू मैनेज्ड ऑल दीस थिंग्स क्या करती हो तुम ताने मारती हो
3: फ्रेम मैं बात नहीं मैं बंद कर देती हूँ बात करना थोड़ी देर के बाद मैं ही खुद जाती हूँ सॉरी मम्मा
1: एटीट्यूड है पूरा बरकरार है माशाल्लाह
0: इस जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को एज ए फ्रेंड एक एक एज के बाद दे शुड ट्रीट देम लाइक फ्रेंड्स और वो एक डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपका बच्चा क्या एक्टिविटीज़ है पढ़ाई का क्या टाइम है वो फ्रेंड्स कौन है आपके बच्चे के वो किस माहौल में क्योंकि घर में तो यू हैव अ कंट्रोल एनवायरनमेंट कि आप जो है जैसा चाहते हैं वैसे आप अपब्रिंगिंग करते हैं बाहर दोस्तों में वो किससे मिल रहे हैं कैसे दोस्त हैं उनके कैसे सर्कल है हाउ आर दे गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड तो ये बहुत ज़रूरी है आई थिंक और ये जब होगा जब कम्युनिकेशन आपका और आपके बच्चे का जो है बहुत ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा तो एक रिस्पेक्ट भी होता है बच्चे रिस्पेक्ट करना और बच्चे चीज़ें छुपाते नहीं है. फॉर मी आई हैव लाइक टू टीनेज किड्स आफिया इज देयर एंड आई हैव अ यंग एल्डर सन आल्सो जो आफिया से एक साल बड़ा है बट देन आई नो एवरीथिंग अबाउट हु देयर फ्रेंड्स आर वो कब बाहर जाते हैं इवन आफिया शी डजंट स्टे हियर शी इज नॉट इन कतर वो अलेक्जेंड्रिया में लेकिन अगर वो कहीं जाती है तो वो मुझे टेक्स्ट करती है कि मां आई एम गोइंग हियर आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स सो दैट ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर और वो तभी आएगा जब आप अपने बच्चे से एक ओपन कम्युनिकेशन
1: रखोगे
0: ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर.
1: इनके बारे में क्या चीज लगती है आपको जो आप आगे ये थोड़ा सा मतलब देख लो
0: किस बारे में
1: कोई भी इनसे कुछ हल्की पुल्की चीज है जो उनके बारे में आपको लगता है चेंज हो जानी चाहिए टिल द टाइम शी इज ग्रोइंग अप अभी तो इनका सफर जारी है कुछ ऐसा जो आप इन्हें हिदायत के तौर पे आज बता देना चाहें
0: थिंक डिसिप्लिन थोड़ा और
1: अरे और कितनी डिसिप्लिन होगी बेचारी तारीफ कर रही बैठी बैठी

0: Kendisi bir waistcoat.
1: थोड़ा सा मुझे लगता है कि शी इज अ बिट क्योंकि एज वैसी है तो थोड़ा केयरलेसनेस तो होता ही है. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एकदम लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो जाए अभी से.
0: वो टाइम मैनेजमेंट है
1: किसी. हां टाइम मैनेजमेंट एब्सोल्युटली.
2: दैट्स ट्रू.
0: ओके
2: वर्किंग ऑन इट
0: आई डोंट सी दैट हैपनिंग बिकॉज़ ये रहता है इस एज में तो रहता ही है. हां बड़ा मुश्किल है.
1: मैं उसको फोर्स नहीं करती उस बारे में. आई काउंसिल हर फॉर दैट लेकिन
0: क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पर भी आ रहा
1: है. क्योंकि मुझे पता है कि एक ये एज ही ऐसी है मतलब इतना यू कैन नॉट एक्सपेक्ट किड्स टू बी मैच्योर एट दिस एज.
0: और ये इस बात से एग्री करेंगे आपकी कई मर्तबा वो पकड़ के रखने के चक्कर में ना वो बिल्कुल ही एकदम सीधा बच्चा भी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है.
1: एग्जैक्टली. और आई डोंट बिलीव क्योंकि बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हमारे भी फ्रेंड्स थे जिनके बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे एंड फिर वो चीजें छुपाने लगते थे पेरेंट्स
0: से. हां
1: और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि दे प्रेशराइज किड्स टू सिलेक्ट द प्रोफेशन व्हिच दे वांट द पेरेंट्स वांट. और बच्चे नहीं कोप अप कर पाते हैं. कितने देखते हैं सुसाइड और डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे. तो आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन. एक और अभी तो ऐसी एज है कि आई मीन द जनरेशन दैट वी आर सीइंग एंड द टाइम वी आर सीइंग कि इट्स नॉट लाइक आपका बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या लॉयर बने तो ही सक्सेसफुल है. ये हमारे वक्त हुआ करता
0: था. ऑफ कोर्स.
1: बट नाउ देयर आर सो मेनी फील्ड्स ओपन.
0: फिर भी सब इंजीनियर डॉक्टर ही आए मेरे पास. फिर भी बट डू यू सी एनी अदर प्रोफेशन. जैसे मम्मी ने बात करी तुमसे इतनी सारी बातें करी जर्नलिज्म भी उन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करी बात और तुम हमेशा ठीक रहे उनके आगे. मगर मम्मी के साथ क्योंकि डिस्कशन तुम्हारा सेम टॉपिक है ना यू शेयर द सेम फील्ड सॉर्ट ऑफ सो उसमें मम्मी की कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी ये मदद मिली तुम्हें स्पेसिफिकली समझाने का तरीका या कुछ नया बताने का तरीका या जो होता है ना एक ऑर्थोडॉक्स तरीका पढ़ाने का व्हाट वाज हेल्पफुल फ्रॉम हर.
2: बाद
0: में हॉस्पिटल खोल लेना अपना उसमें क्या दिक्कत है. अच्छा पुरानी चीजें तुम्हें कितनी सारी मम्मी ने बताई होगी टर्मिनोलॉजी जैसे की VCR से लेकर केबल कनेक्शन ये सब के बारे में सुना.
2: दूरदर्शन के बारे में
0: क्या बात है दिखाया ने कुछ दूर कुछ
1: DD1 and DD2
0: कुछ दिखाया वैसे पुरानी चीज देखी तुमने कभी कोई रेट्रो शोज और नहीं थे.
2: नहीं
0: देखी. अरे दूरदर्शन तक पहुंचा दे मम्मी ने बहुत अच्छी चीज बताई
1: है. रिसेंटली आई शोड हर दिस क्लिप वो मिले सर मेरा तुम
0: क्या बात है वाह वाह वाह वाह
2: पुराने गाने.
0: हाँ?
2: गाड़ी में तो पुराने गाने ही चलते हैं.
0: अच्छा
2: जी.
0: और कुछ मूवीज वगैरह देखी तुमने रेट्रो मूवीज उस दौर की.
2: नहीं आई ट्राइड बट आई एम नॉट इनटू रेट्रो.
0: मम्मी को कुछ दिखाया तुमने कुछ जो तुम्हारे.
2: मम्मा को तो मैं दिखाते रहती हूँ सीरीज और ऑल. मम्मा इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है.
0: ये गलत है.
1: टाइम
0: आप दूरदर्शन दे रही है और फिर उसको दिख नहीं रही है तो गलत है.
1: आई थिंक टाइम नहीं है सब चीजों के लिए मेरे पास. आई थिंक
0: नहीं आपने आपने जिस हिसाब से अपना बिजी शेड्यूल रख के भी चीजों का ख्याल रखा है वो समझ में आता है. I'm really really blessed to have this interview because आपका जो perspective मैं चाह रहा था कि कोई पेरेंट आके रखे the way you have thoughtfully put everything in place ना वो बड़े कमाल की चीज है. तो आपके पास टाइम नहीं भी है तो आपके लिए माफ है. तो बहुत कमाल की चीज है. तुम्हारा अपनी जनरेशन को क्या मैसेज है जो तुम देखती हो अपने आसपास. Do you have anything to tell them?
2: Yeah, I think my generation मतलब
0: आसपास देखती हूँ कि थोड़ा सा overly emotional okay they do stuff.
2: To be honest, I think के नो बच्चों को कहते हैं you know कि तुम बहुत emotional ये generation बहुत emotional है ये generation ऐसी ये generation वैसी. Most of the cases जो मैंने देखे हैं जो you know the term के you know rebel kid एक बच्चा you know why is he behaving the way he is.
0: Right.
2: It's mostly because of parents, to be honest.
0: Oh, absolutely.
2: Communicate nahi karna, unnecessary strictness rakhna, unnecessary boundaries create karna.
0: Yeah.
2: I think ye sab cheeze bahut affect karti hai.
0: No doubt.
2: In every sense. A profession kisi pe you know force karna, matlab apne bachcho pe force karna, that's like the last straw na. Uske baad to ekdam hi
0: khatam
2: hai kahani. It yeah, I think it's really hard. Matlab, even mere aur mama ke beech mein, starting it was very hard to communicate.
0: Yeah.
2: Kyunki pehle itna wo nahi tha, itna awareness nahi tha. But then we did try, we did talk about it. Hum dono ne koshish ki. So meri generation ko, I think that's the advice, kid, you know, try. मतलब तुम्हारे पेरेंट्स स्टार्टिंग में नहीं मानेंगे बट बोलते जाओ ट्राई करते जाओ उन्हें अपना पर्सपेक्टिव यू नो समझाते जाओ कि यू नो लिसन टू मी ये आई एम गोइंग टू दिस ये इंटरेस्ट है या हैव कॉन्वर्सेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करनी होती है यू नो बट समटाइम्स इट्स नॉट सेफ समटाइम्स दैट फील्ड इज नॉट सेफ वो मना क्यों कर लाइक आई थिंक यू शुड ट्राई मतलब बच्चों को ये भी नो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पेरेंट्स क्यों नहीं बोल रहे हैं लाइक व्हाट्स देयर रीजन इज इट लाइक इज इट अ वैलिड रीजन इज इट नॉट अ वैलिड रीजन इसका कोई सलूशन है
0: क्योंकि जल्दबाजी में वो समझ नहीं पाते कि उसके बैकग्राउंड क्या है
2: मतलब पहले मुझे भी ऐसा लगता था बट देन जब मैंने सोचा मम्मा के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है शी हैज सीन अ लॉट मोर एंड वो ट्राई करती है कि वो मुझे बताए ना कि उन्होंने अपनी लाइफ से ये सिखाया था कि मैं वो गलतियाँ ना कर सकूँ एंड मुझे पहले बहुत वियर्ड लगता था यू नो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लगता था But then I was like, you know, I tried to understand, you know, what's the scenario and what's going on.
0: But definitely,
2: I think communication, setting boundaries, and understanding each other, it's these three are the most important.
0: Of course. नहीं ये तो बात है और आप जैसे सबसे पहले तो मैं तालियां बजाता मेरे हाथ में पेन है और यहाँ पे माइक पे ज्यादा आवाज आ रही है बट वेल डन टू योर पेरेंटिंग आई मीन दिस जस्ट शोज कि आपने जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी को सही जगह पे रखते हो ना बेंड करना सही टाइम पे आई एम प्राउड ऑफ हर आई मीन यू आर 10 टाइम्स मोर प्राउड ऑफ हर एट दिस पॉइंट टाइम
1: थैंक यू सो मच
0: मुझे बहुत मजा आया बात करके क्योंकि जो मैं पर्सपेक्टिव रखना चाह रहा था इतने टाइम से आपने सब बोले विच इज जस्ट अमेजिंग क्योंकि बच्चों एक तो बच्चे रहने देना चाहिए और साथ में उनके साथ साथ उस एज को समझना इज अगेन वो पेरेंटिंग स्किल है बाकी जो तुम्हारी शिकायत है सोशलाइज करिए लेकिन करने दीजिए जज Let it happen, no problem.
1: I think I also learned from her. Because मेरे जो दोनों बच्चे हैं बड़े बच्चे, it's like ज़्यादा gap नहीं है दोनों में. They are like 1 year. बेटा जो है 1 year elder to Afia, 1.5. I mean less than 1.5 year. But then मैंने भी I think I this was a process of learning for me also. क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि बच्चे हैं इनको इनको नहीं समझ में आ रहा है सो एज अ पेरेंट यू नीड टू गाइड देम यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद देम तो ऐसा होता था जैसा दूसरे माँ बाप भी करते बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैंने इनमें चेंजेस देखे हैं ना व्हेन दे पास थ्रू यू नो दे वेंट इनटू टीनेज ग्रुप और वो सब तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं आई नीड टू चेंज माई सेल्फ कि नहीं अब दे आर इनटू डिफरेंट एज नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड देम क्योंकि वो बच्चे नहीं रहे वो बड़े हो रहे हैं तो और इफ आई इम्पोज समथिंग ऑन देम इट विल नॉट बी गुड
0: ऑफ कोर्स वो एक टाइम के बाद फिर रोकना ही पड़ जाता है
1: तो यू नीड टू आई थिंक यू नीड टू लर्न From,
0: and earn learn also a lot of stuff मगर एक तो यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग क्योंकि जब शिफ्ट शाम के होते तो लगता है अरे अभी पता नहीं कैसा जाएगा सब कुछ बट इट इज सो रिफ्रेशिंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद बोथ ऑफ यू मुझे बहुत बहुत मजा आया तुम्हारे बारे में बताने वाला मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से एंड वेन एवर यू गेट अ चांस एंड जब भी आपको इस पर्सपेक्टिव मिले एंड आई थिंक आपको तो खुद का पॉडकास्ट करना चाहिए जिस हिसाब से आप पेरेंटिंग के बारे में बात करी है बाकी हेल्प इनसे ले लीजिएगा कोई टेंशन नहीं है बट आई विश यू ऑल द बेस्ट जब सर्जन बन जाओ तो थोड़ा ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल चैरिटी करना शुरू कर देना पर डिस्काउंट रखना थोड़ा सा और आई होप आपको मजा आया यहाँ पे स्टूडियो में आके एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस स्टूडियो देख के आई थिंक पहली बार तो तुमने स्टूडियो देखा
2: जी इट वाज फर्स्ट टाइम आई वाज बिट नर्वस स्टार्टिंग
0: अभी ठीक है चल
2: हां अभी बहुत चिल है
0: वेरी नाइस
2: आई एम फीलिंग वेरी नाइस
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी
0: क्वालिटी का आपको शुरू से देना है क्या कहना चाहेंगे आप
1: It's good. It's very it's it looks a very closed and tidy space.
2: it's very cozy.
1: It's a cozy space. I mean my perspective was different. जब मैं Facebook पे अपना studio वगैरह देखा है, लेकिन हाँ इतना ही part देखा, but I thought कि बहुत बहुत बड़ा होगा. But it's a good cozy space.
0: हाँ क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो नर्वस होती है. जितनी पिछली दीवारें हैं उतना ही मजा आता है बट थैंक यू सो मच
1: बहुत मजा आया हमें भी
0: जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप आप जो भी चाहती हैं वो जिंदगियां पूरा हो
1: इंशाल्लाह
0: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अपना ख्याल रखिए बेहद बेहद जरूरी है मां सलाम
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान, और शो लेकर एक दफा फिर हाजिर हो गई हूं आपके लिए हदीस टू हैबिट। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। तो हदीस टू हैबिट एक ऐसा शो जहां हम हदीस मुबारका की रोशनी में अपने रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज भी हम आपके लिए कुछ अहदीस लेकर आए हैं, और उनकी रोशनी में एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और अपनी जिंदगी को इंशाल्लाह ताला बदलने की कोशिशें करेंगे, अपनी जो आदतें हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिशें करेंगे। दुनिया में बहुत सी चीजें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं, अच्छा लिबास, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी तालीम, अच्छी नौकरी, ये सब अपनी जगह अहम है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इंसान की असल पहचान बन जाती है, और वो क्या है? वो है उसका किरदार। और किरदार की सबसे बड़ी निशानियों में से एक चीज है अपने वादे पूरे करना। जी जरा सोचिए, अगर कोई शख्स बार बार वादा करे लेकिन पूरा ना करे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर एतमाद करना छोड़ देते हैं, उसकी बात की अहमियत खत्म होने लगती है, लोग उसके लफ्जों पर यकीन नहीं करते, और सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि उस शख्स के दिल और शख्सियत को होता है। इस्लाम ने हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाई बल्कि इखलाक भी सिखाए हैं। नमाज, रोजा, ज़कात अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि इंसान सच्चा हो, दयानतदार हो, अपने वादे का पक्का हो। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले भी लोग अल सादिक और अल अमीन कहते थे, यानी सच्चा और अमानतदार। सोचिए, अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ था लेकिन पूरा मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई

और वादा पूरा करने की आदत को जानता था। लोग अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी धोखा नहीं देंगे। आज के दौर में एक अजीब मसला पैदा हो गया है, लोग वादे बहुत जल्दी कर लेते हैं। कल आ जाऊंगा, कल कर दूंगा ये काम, हाँ हाँ हो जाएगा, मैं जरूर मदद करूंगा, वक्त पे काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन फिर या तो वो भूल जाते हैं या टाल देते हैं या फिर संजीदगी से लेते ही नहीं। और कभी कभी हम सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए हाँ कह देते हैं, हालांकि दिल में हमें मालूम होता है कि शायद ये काम हम ना कर सके। क्या आदत आहिस्ता आहिस्ता हमारी शख्सियत को कमजोर कर देती है। लिस्टर्स, वादा सिर्फ बड़ी चीजों का नहीं होता, बच्चे से किया हुआ वादा भी वादा है, दोस्त से किया हुआ वादा भी वादा है, अपने वालदेन से किया गया वादा भी वादा है, हत्ता कि अल्लाह से किया हुआ वादा वादा है। कभी हम कहते हैं मैं रोज कुरान पढ़ूंगा, मैं गुस्सा कम करूंगा, मैं फजर वक्त पे पढ़ूंगा, लेकिन चंद ही दिन बाद हम खुद ही अपने वादे भूल जाते हैं। इसलिए आज का टॉपिक सिर्फ दूसरों के साथ वादों का नहीं, बल्कि खुद अपने नफ्स के साथ किए गए वादों का भी है। लिस्टर्स, एतमाद एक ऐसा खजाना है जो एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए वक्त लगता है, लेकिन एक झूठ, एक धोखा या एक टूटा हुआ वादा इस एतमाद को बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं। एक घर में अगर वादे पूरे ना हो तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। वालदेन अगर बच्चों से वादा करें और पूरा ना करें तो बच्चे दिल से मायूस होने लगते हैं। दोस्त अगर एक दूसरे पर एतमाद ना करें तो दोस्ती कमजोर होने जाती है। कारोबार में वादा खिलाफी हो तो बरकत खत्म हो जाती है। इसीलिए इस्लाम में वादा पूरा करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि ईमान की निशानी है। और याद रखिए, वादा पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी मुश्किल में नहीं आएगा। कभी हालात वाकई मुश्किल होते हैं, कभी इंसान बीमार हो जाता है, कभी कोई मजबूरी आपको अचानक से पेश आ जाती है। इस्लाम हरगिज हमें ये नहीं कहता कि आप नामुमकिन चीजों का बोझ उठाएं, लेकिन इस्लाम ये जरूर सिखाता है कि अगर आप वादा पूरा ना कर सकें तो सच्चाई और अदब के साथ माजरत कर लें, वक्त पर इतला दें और सामने वाले के जज्बात का ख्याल रखें। आजकल एक और बड़ा मसला आम है, डिजिटल वादे। हम मैसेज देखकर जवाब नहीं देते, किसी को कहते हैं मैं अभी भेजता हूं लेकिन फिर भूल जाते हैं, ऑनलाइन काम वक्त पर मुकम्मल नहीं करते, मीटिंग्स में देर से पहुंचते हैं। हमें लगता है कि ये छोटी चीजें, लेकिन यही छोटी चीजें इंसान की शख्सियत बनाती हैं। एक सच्चा मुसलमान वो होता है जिसकी जबान और अमल में फर्क ना हो। अगर वो इंशाल्लाह कहे तो वाकई कोशिश करे कि काम पूरा हो, क्योंकि इंशाल्लाह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा और अपनी नियत की सच्चाई का इजहार है। इस हफ्ते हम सब एक छोटी सी कोशिश करेंगे, हम वादे कम करेंगे लेकिन जो करेंगे उन्हें पूरा करेंगे। हम सोच समझ कर हाँ कहेंगे, हम अपनी जबान की हिफाजत करेंगे और अपने किरदार को मजबूत बनाएंगे। याद रखिए, बड़े किरदार बड़ी बातों से नहीं बनते, वो छोटे छोटे सच्चे अमल से बनते हैं। जब आप वक्त पर पहुंचते हैं आप किरदार बना रहे होते हैं, जब आप किसी को इंतजार में नहीं छोड़ते आप अपना किरदार बना रहे होते हैं, जब आप जिम्मेदारी पूरी करते हैं आप ईमान को मजबूत कर रहे होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद फरमाते हैं जो सच्चे, अमानतदार और वादा पूरा करने वाले हों। तो आइए आज नियत करते हैं कि हम ऐसे मुसलमान बनेंगे जिन पर लोग एतमाद करें, जिनकी जबान

सच्ची हो, जिनका दिल साफ हो और जिनका वादा मजबूत हो, क्योंकि एक मजबूत माशरा मजबूत किरदार वाले लोगों से बनता है। आज के शो में यकीनन हम अहदीस की रोशनी में भी जानेंगे कि वादा पूरा करना क्यों जरूरी है, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस आदत को कैसे अपना सकते हैं और किस तरह छोटे छोटे अमाल हमारी जिंदगी को, हमारे ताल्लुकात और ईमान को बेहतर बना सकते हैं। आज की पहली हदीस बहुत मशहूर और निहायत अहम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की तीन निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। लिस्टर्स जरा गौर कीजिए, इस हदीस में वादा तोड़ने को कितनी सख्त बात के साथ बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुनाफिक की निशानियों में शामिल फरमाया। इसका मतलब ये नहीं कि जो शख्स एक बार वादा पूरा ना कर सके वो लाजमन मुनाफिक हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि वादा खिलाफी ऐसी बुरी आदत है जो इंसान को मुनाफकत के करीब ले जाती है। इस्लाम सिर्फ जाहिरी इबादत का नाम नहीं, अगर कोई शख्स कुरान भी पढ़ता हो, नमाज भी पढ़ता हो, लेकिन लोगों के साथ झूठ बोलता हो, धोखा देता हो, वादे तोड़ता हो, तो उसके अखलाक में बड़ी कमी है। दीन हमें सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं करता, बल्कि हमारे मामलात, गुफ्तगू और किरदार को भी बेहतर बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी वादा पूरा करने की बेहतरीन मिसाल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, हत्ता के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के मुतारिफ थे। एक वाकया बहुत मशहूर है, नबूवत से पहले भी लोग अपनी अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो बहुत से लोग मुखालफत करने लगे, लेकिन फिर भी वो अपनी कीमती चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खयानत नहीं करेंगे। यही असल मुसलमान का किरदार है, लोग उसकी इबादत से पहले उसकी सच्चाई और दयानत को देखते हैं। रिसर्च आज के दौर में वादा खिलाफी बहुत आम हो गई है, लोग समझते हैं कि छोटी बात है, कोई मसला नहीं, बाद में देख लेंगे, लेकिन इस्लाम छोटी बात को भी अहम समझता है, क्योंकि यही छोटी आदतें मिलकर इंसान की शख्सियत बनाती है। फर्ज करें एक बाप अपने बच्चे से वादा करता है कि मैं शाम को तुम्हें पार्क लेके जाऊंगा, लेकिन फिर बगैर किसी वजह के नहीं लेके जाता। शायद बाप के नजदीक ये मामूली बात हो, लेकिन बच्चे के दिल में इसका असर रह जाता है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये सीखता है कि वादा करना और तोड़ देना आम सी बात है। इसी तरह अगर उस्ताद तालबा से, स्टूडेंट से वादा करे और पूरा ना करे, अगर दोस्त दोस्त से वादा करे और भूल जाए, अगर कारोबारी शख्स वक्त पे काम ना दे, तो माशरे में एतमाद कमजोर होने लगता है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान ऐसा हो जिसकी जबान और जिसके अमल एक जैसे हों। एक और खूबसूरत हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसे अदा करो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे तुम उसके साथ खयानत ना करो। यह हदीस हमें एक बहुत बड़ा इखलाकी सबक देती है। अगर कोई शख्स हमारे साथ गलती करे, फिर भी हमें अपना किरदार खराब नहीं करना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं, उसने मेरे साथ वादा नहीं निभाया तो मैं क्यों निभाऊं, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं क्यों अच्छा करूं। लेकिन इस्लाम हमें लोगों के रवैयों के मुताबिक नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के मुताबिक जीना सिखाता है। एक सच्चा मुसलमान

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही

0: फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें। गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
0: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107. Dil se, desi.

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरी

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं।

0: इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।

0: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था, तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। हमने उसको और उसके घर वालों को कर्बे आजीम से बचा लिया और उसी की नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी तारीफ और तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं। दरहकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था। फिर दूसरे ग्रोह को हमने गर्क कर दिया और नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था। जब वो अपने रब के हुजूर कल्बे सलीम लेकर आया, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ घड़े हुए माबूद चाहते हो, आखिर रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। फिर उसने तारों पर एक निगाह डाली और कहा, मेरी तबीयत खराब है। चुनांचे वो लोग उसे छोड़कर चले गए। उनके पीछे वो चुपके से उनके माबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला, आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? क्या हो गया, आप लोग बोलते भी नहीं? इसके बाद वो उन पर पिल पड़ा और सीधे हाथ से खूब जरबे लगाई। वापस आकर वो लोग भागे भागे उसके पास आए। उसने कहा, क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूजते हो, हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा कि इसके लिए एक अलाव तैयार करो और उसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने उसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाही थी, मगर हमने उन्हीं को नीचा कर दिखाया।